सुप्रभात। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 जुलाई 2026। इसमें प्रातः के 5:58:40 में हैं। अब हमारी आज की प्रथम सभा आरंभ होती है। मंगल कामना के साथ हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी।

0: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वोक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे।

भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जय।

हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपसी राजा तिनके काज सके।

त्रैलोकपति सर्वशक्तिमान भगवान ही जड़ चेतन के मालिक हैं। संसार की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु और यह पूरी सृष्टि उन्हीं प्रभु के द्वारा संचालित है। इस बात को जिस दिन प्राणी समझ जाएगा, उस दिन उसके जीवन की सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी।

आज की वंदना कार्यक्रम में आपने जो आवाजें सुनी वो थी हरिओम शरण, जगजीत सिंह और अनूप जलोटा की। और आइए अब आपको सुनवाते हैं संवेत स्वरों में ये देशगान।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु। विषय है मनुष्यता। आलेख और वाचन है डॉक्टर प्रेमलता पालीवाल का।
1: जो चिंता मनुष्य को विक्षिप्त करती है और भगवान से दूर रखती है वही दुश्चिंता है। मन में स्थान न पाने से उनके द्वारा तुम्हें शांति प्राप्त नहीं होगी। यही कोशिश करना कि मन में भगवान का राज्य हो, भगवान का स्मरण हो, भगवान की ही भावना हो। तुम्हारा सारा भार भगवान के ऊपर है। इस विश्वास को लेकर सरलता और मन की स्फूर्ति में रहने की कोशिश करना, यही वही मनुष्य है। दूसरे प्राणियों से मनुष्य का पार्थक्य यही है कि मनुष्य में एक विशेष प्रकार की शक्ति है जिसके द्वारा वो पूर्णता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के लिए

0: यह शरीर कहता है कि जैसे मन का होश हुआ है, जिसे मन का होश हुआ है वही मनुष्य है, जिसे मन का होश नहीं विषय वासना में तन्मय रहता है उसे क्या मनुष्य कह सकते हैं। दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, एक मुहूर्त वृथा न जाए, हरि कथा ही कथा और सब व्यर्थ व्यथा। वृक्ष लता पशु पक्षी भी कुछ दिन संसार में रहकर पुनः नदी वृक्ष लता पशु पक्षी की सृष्टि करके संसार से विदा लेते हैं। तुम लोग भी यदि वही करो तो और प्रभेद क्या हुआ, जिससे रिटर्न टिकट काटना न पड़े उसकी कोशिश करना। जन्म जन्मांतर के सैकड़ों कर्म मनुष्य के अज्ञात अगम्य हैं। मनुष्य जन्म भाग्य के जन्म की सफलता है, मनुष्य जन्म भाग्य के जन्म की सफलता है। उनकी कृपा से ही मनुष्य जन्म सुकृति के फल से ही यह जन्म प्राप्त हुआ है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसीलिए मनुष्य जन्म में मनुष्यत्व जागृत की दिशा ग्रहण करनी चाहिए। मनुष्य स्वाधीन गति के अभाव से कर्म क्षेत्र में पंगु हो जाता है, धर्म क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है। अपनी अपनी चिंताओं का प्रसार न मिलने से साधक की साधन चेष्टा संकुचित हो जाती है। अतएव जो जिस मार्ग पर अग्रसर हो रहा है, जो जहाँ जिस क्रिया को कर रहा है, उसी मार्ग में उसी क्रिया में उसी कर्म में शुद्ध भाव की परिपुष्टि लाभ करने के लिए अपने अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करें। जब लक्ष्य प्राणमय हो जाएगा तब जिसको जो आवश्यक हो आप ही आप हो जाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु कार्यक्रम, जिसमें आज का विषय था मनुष्यता। आलेख और वाचन था डॉक्टर प्रेम लता पालीवाल का।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री राम चरित मानस गान। स्वर है अनुराधा पौडवाल का और संगीत है सतीश भाटिया का।

श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी पूजा के लिए फूल लेने बाग में गए। वसंत ऋतु के प्रभाव से सब ओर वहां प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखते ही बनती थी। नए नए पत्तों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष लहला रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी अपनी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच निर्मल जल भरा सुहावना सरोवर बहुरंगी कमल पुष्पों से शोभित है और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं। मालियों से अनुमति लेकर दोनों भाई पुष्प एकत्रित करने लगे। उसी समय पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी भी वहां आईं। उनके साथ सुंदरी और सयानी सखियां थीं। सीता जी ने बड़ी श्रद्धा से मां पार्वती गिरिजा की पूजा की और योग्य तथा सुंदर वर की कामना की। इसी बीच एक सखी को राम लक्ष्मण पुष्प एकत्रित करते दिखे। दर्शन मात्र से उस सखी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। अन्य सभी सखियों ने उस सखी से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। दोनों भाइयों के अमित सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बोली, वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अतः मैं उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं। यह सुनकर दूसरी सखी बोली कि संभवतः ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन दोनों राजकुमारों ने अपने रूप की

मोहिनी फैलाकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। सीता जी को ये वर्णन अत्यंत प्रिय लगा और वे उन राजकुमारों के दर्शन के लिए अपनी सखी को साथ ले आगे चलीं।

अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस गान, स्वर था अनुराधा पौडवाल का, संगीत था सतीश भाटिया का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से, प्रस्तुत है संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

अब से थोड़ी ही देर बाद कार्यक्रम होगा खेती की बातें। विषय होगा नीडअप कंपोस्ट बनाने की विधि एवं लाभ। वार्ताकार होंगे विजय सिंह नौलखा और समय सुबह 6:50 यानी अब से थोड़ी ही देर बाद। 6:55 पर संस्कृत समाचार और 7 बजे सुनिएगा पुराने फिल्मी गाने भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में।

सुबह 7:31 पर कार्यक्रम होगा ब्रज माधुरी, जिसमें आज आप सुनेंगे श्रृंखला ब्रज यात्रा 84 कोस की, और आज आप जानेंगे शेरगढ़ के बारे में। आलेख और प्रस्तुति सहयोग होगा रश्मि शर्मा का। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि सुनिएगा सुबह 8:30 पर। 9 बजे काव्यात्मक संवाद, जिसमें जानिएगा जीवन में संबंधों की कसक, इस विषय पर वार्ता होगी। वार्ता करेंगे रवि कुमार शर्मा और इनसे बातचीत करेंगे ओपी सिंह। कार्यक्रम आबोहवा का प्रसारण समय सुबह 9:25 पर। विषय वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। आलेख और वाचन होगा हिमांशु नामा का। 9:30 पर स्वास्थ्य कार्यक्रम में भेंटवार्ता सुनिएगा। विषय होगा सर्जरी में लेजर का प्रयोग। वार्ता करेंगे डॉक्टर ब्रजेंद्र तिवारी और इनसे बातचीत करेंगे ओपी सिंह। फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, दिन 11 बजे।

मध्याह्न 12 बजे गीत बात और SMS ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। 12:30 पर ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे पूनम के गाए लोकगीत। वनिता लोक ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:15 पर, जिसमें आज चर्चा के विषय होंगे कुपोषण मुक्त परिवार बनाने में महिलाओं की भूमिका, और दूसरा विषय होगा गर्भवती महिलाओं में एनीमिया। साथ ही वार्ता सुनिएगा आशियाना इको फ्रेंडली होम, वार्ताकार होंगी अल्पना प्रधान। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय 2:30 पर। शाम 5:30 पर युवावाणी कार्यक्रम में आज की बात में बात होगी AI के दौर में युवाओं के लिए नए अवसर, और दूसरा विषय होगा करियर चुनने से पहले किन बातों का रखें ध्यान। साथ ही सुनिएगा युवा वार्ता समाज सेवा की भावना और युवा मानसिकता, वार्ताकार होंगी वीना शर्मा। हेलो किसान वाणी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:15 पर। विषय होगा बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग, बचाव एवं उपचार, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर शंकर कुमार सिंह। संध्या वंदन कार्यक्रम शाम 6:45 पर।

ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम होगा शाम 6:05 पर। सुनिएगा भक्त कथा, भक्त कौमुदी देवी की। कथाकार होंगी नीरू अग्रवाल। शाम सुहानी ये कार्यक्रम सुनेगा शाम 7:31 पर। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने रात 9:15 पर। मनी टॉक और 9:45 पर मंथन खेल दर्पण ये कार्यक्रम आप सुनिएगा रात 10:30 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा जिसमें आज आप सुनेंगे रुद्र वीणा वादन। कलाकार होंगे श्री गजाधर पाठक।

0: ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। विषय है निर्डप कंपोस्ट बनाने की विधि एवं लाभ। वार्ताकार हैं विजय सिंह नौलखा।
1: किसान भाइयों, आज हम नेडप कंपोस्ट बनाने की विधि तथा उससे होने वाले लाभों के बारे में चर्चा करेंगे। ये विधि श्री नारायण राव पांडरी पांडे यानी नाडेप काका निवासी ग्राम पुसाद जिला यावतमल महाराष्ट्र द्वारा यह विधि विकसित की गई है। इसमें ईंटों का एक ढांचा बनाते हैं जिसका आकार 10 फीट लंबा 6 फीट चौड़ा तथा 3 फीट ऊंचा होता है। ढांचे की जुड़ाई पक्के गारे से की जाती है ताकि ढांचे का प्रयोग लंबे समय तक किया जा सके। इसकी दीवारों में कुछ छेद छोड़े जाते हैं ताकि समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर पानी का छिड़काव किया जा सके तथा वायु संचार भी अच्छा होता रहे। इस ढांचे के अंदर खेत खलियान घर एवं रसोई से प्राप्त फसल अवशेष जिसमें गोबर पानी एवं मिट्टी की मात्रा के साथ इसे सड़ाया जाता है। इस विधि में सड़ी खाद बहुत उच्च एक छेद बनाते हैं। 11वीं 12वीं 13वीं पंक्ति में पुनः छेद नहीं छोड़े जाते। ढांचे के अंदर की जमीन को ईंट बिछाकर पक्का कर दिया जाता है। अब बात आती है ढांचा भरने की विधि और उसकी क्या सामग्री होनी चाहिए। तो सामग्री नोट करें, कचरा लगभग 20 से 25 क्विंटल, मिट्टी 5 से 10 क्विंटल, गोबर 3 से 4 क्विंटल, पानी की आवश्यकता पड़ेगी 800 से 1200 लीटर, पीएसबी कल्चर के 4 पैकेट, एजोटोबैक्टर कल्चर के 4 पैकेट, गौमूत्र लगभग 10 लीटर, गुड़ की मात्रा रहेगी 2 किलोग्राम और राख करीब करीब 100 ग्राम। इसकी विधि बनाने की विधि इस प्रकार है, 40-50 किलोग्राम गोबर 100 से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर ढांचे की तह पर डालें। इसके बाद 8 इंच मोटी कचरे की तह दबा दबा कर बिछाते रहें, फिर 30 से 40 किलोग्राम गोबर 100 से 125 लीटर पानी का घोल बनाकर इस कचरे के ऊपर डालें। इसके पश्चात लगभग 100 किलोग्राम मिट्टी को ऊपर से बिछा दें। यह क्रिया ढांचे की ऊंचाई से लगभग 10 से 12 इंच ऊपर भरने तक दोहराते रहें। बाद में गोबर और मिट्टी की मोटी परत लगाकर ढांचे को ऊपर से बंद कर देते हैं। 70 से 80 दिनों बाद गड्ढे के ऊपर 15 से 20 छेद

0: योः विरुद्धं विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय श्रृङ्खलासु पराजयानन्तरं भारतं पुनरागमनं कर्तुमिच्छति। शुभमन गिलेत्यस्य नेतृत्वे दलं गुरुवासरे कार्डिफ नगरे द्वितीया एकदिवसीया स्पर्धा क्रीडिष्यति। श्रृङ्खलायाः तृतीयान्तिमा च क्रीडा अस्मिन् मासे एकोनविंशति दिनाङ्के लॉर्ड्स इत्यत्र भविष्यति। इति वार्ताः।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। अगला कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

अनमोल घड़ी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना जोहराबाई अंबाले वाली और शमशाद बेगम की मिली जुली आवाजों में। गीत को लिखा था तनवीर नकवी ने और धुन बनाई थी नौशाद ने। अगला गीत आपको सुना रहे हैं पतिता फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और हेमंत कुमार ने।

पतिता फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना है हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, बोलते हसरत जयपुरी के, और संगीत था शंकर जयकिशन का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं बावरे नैन से, गाया है मुकेश और राजकुमारी ने।

रोशन के संगीत निर्देशन में ये आवाजें थीं राजकुमारी और मुकेश की। गीत को रचा था केदार शर्मा ने, फिल्म का नाम था बावरे नैन। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सुजाता फिल्म से, जिसे गाया है तलत महमूद ने।

एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे तलत महमूद को फिल्म सुजाता में। गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। इस गाने के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम।

0: नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का किया उद्घाटन। आज से की जा सकेगी यात्रा। रक्षा मंत्री ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी से मांगी जांच की स्टेटस। और बढ़ी। और आज लखनऊ में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ बैठक करेगी एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे एक्सप्रेस वे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को चार लेन बनाने के कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।
3: राज्य आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे का नेतृत्व कर रहा है, और आज हम लोग प्रदेश की दो मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे एससीआर को स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद हैं लखनऊ के इर्द गिर्द, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है।
2: इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से प्रदेश में उद्योगों का और तेजी से विकास होगा।
4: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
2: केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
5: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड थ्री लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
2: हमारे संवाददाता ने बताया कि एक्सप्रेस वे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा।
6: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर

0: मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क अवसंरचना से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाना भी है।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का लक्ष्य केवल इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं है, बल्कि एसेसिबल, एफोर्डेबल, एफोर्डेबल और क्वालिटी ड्रिवन हेल्थ केयर सिस्टम बनाना भी रहा है। आज भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने SIT की संरचना का विवरण भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इस बीच श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावे में अनियमितता मामले में सुनवाई के दौरान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रतिभा नारायण ने 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन तक बढ़ा दी है। अब आरोपियों की पेशी 27 जुलाई को होगी। वहीं SIT ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए धर्मसेना के अध्यक्ष संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। समाचार कक्ष से अरुण।
1: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर शाही ईदगाह मस्जिद और संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद से जुड़े विवादों को विशेष लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने के निर्देश दिए हैं। यह विशेष अदालत 21 से 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित होगी। कार्यवाही से पहले इन मामलों से जुड़े पक्षों को लोक अदालत से पहले होने वाली सुलह वार्ता में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर योगी की पाती साझा करते हुए लोगों से वृक्षारोपण को अपने जीवन के संस्कारों और उत्सवों से जोड़ने की अपील की।
4: अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम अभियान में प्रदेश ने 40 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य पूरा कर नए इतिहास रचा है। यह नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के 9 सामर्थ्य का जय घोष है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, आने वाली पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायित्व और जीवन संरक्षण का संदेश समेटे अभियान सनातन चेतना का महोत्सव है। श्री योगी ने लोगों से अपील की है कि परिवार के शुभ अवसरों, मांगलिक आयोजनों और विशेष दिनों को वृक्षारोपण से जोड़कर हमें प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभाना चाहिए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC आज लखनऊ में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर उनके विचार जानेगी। लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि कल समिति ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बैंकर्स और वकीलों से विचार विमर्श किया। राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश का क्रम जारी है। गोरखपुर और इसके आसपास के कई जिलों में कल दिन में उमस भरी गर्मी महसूस की गई, हालांकि रात में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी 19 जुलाई तक वर्षा जारी रहने की

0: संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। आज से की जा सकेगी यात्रा। रक्षा मंत्री ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने SIT से मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी। और आज लखनऊ में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ बैठक करेगी एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अब आरंभ हुए है आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम।

भैया यह कार्यक्रम में आज आपको सुनवाए रहे हैं श्रृंखला यात्रा ब्रज 84 कोस की, यह में आज आप जानेंगे शेरगढ़ के बारे में। आलेख और प्रस्तुति सहयोग है रश्मि शर्मा को।

जय श्री कृष्णा। यात्रा ब्रज चौरासी कोस के 27वें अंक में हमने गिनी बड़ी बढ़ेन की यात्रा और अब हमारी यात्रा 28वें अंक में आ पहुंची है कोटवन की माऊं।

कोसी और होडल के मध्य दिल्ली मथुरा राजमार्ग के आसपास कोटवन बसो भयो है, या को पूर्व नाम कोटरवन हो। यह स्थान चरण पहाड़ी ते 4 मील उत्तर पूर्व में है। यहाँ शीतल कुंड और सूर्य कुंड दर्शनीय है। यह कृष्ण के गौचारण और क्रीड़ा विलास को स्थान है। कोटवन से आगे अब हमारी यात्रा पहुंची है शेषशायी।

कमला सुख रम्याय शेष शयन हेतवे नमः कमल किंजल कवास से हरिये नमः। हे कमला के सुख से रम्य, हे शेष भगवान के शयन के लिए शेष नामक वन, आपको नमस्कार है। वासोली से 1.5 मील दक्षिण पश्चिम पूर्व दिशा में यह लीला स्थली विराजमान है। पास ही में क्षीर सागर ग्राम है। क्षीर सागर के पश्चिमी तट पे मंदिर में भगवान अनंत शैया पे शयन कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही हैं। एक बार कौतुकी कृष्ण श्री राधा जी और सखियों के संग में यहाँ विलास कर रहे थे। कई प्रसंग में बिनके बीच में अनंत शाही भगवान विष्णु की चर्चा भई। श्री राधा के हृदय में अनंत शाही विष्णु की शयन लीला देखने की प्रबल इच्छा है गई। यही काजे कृष्ण ने स्वयं बिनकु या लीला को दर्शन करायो। अनंत शाही के भाव में अविष्ट हुई के श्री कृष्ण ने क्षीर सागर के मध्य सहस्र दल कमल के ऊपर शयन कीनो और श्री राधिका ने लक्ष्मी के आवेश में उनके चरणन की सेवा कीनी। गोपी मंडली या लीला को दर्शन करके अत्यंत आश्चर्य में पड़ गई। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने ब्रज विलास स्तव में या लीला को इंगित कीनो है। अतिशय कोमलांगी श्री राधा

0: श्री कृष्ण के अतिशय कोमल सुमनोहर चरण कमलन को अपने वक्षस्थल के समीप लाए के भी अपने वक्षस्थल पर या वैसे धारण न कर सकी कि कहीं हमारे कर्कश कुचाग्र के स्पर्श से बिन को कष्ट न होए। यहाँ मनोहर कदम्ब वन है और प्रौढ़नाथ तथा हिंडोली को दर्शन है। पास ही में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक है।
1: यहाँ की बहुत अच्छी लीला है। भगवान जब काली देह में गेंद लेने के लिए कूद गए ना, तो सभी गोकुलवासी यशोदा नंद बाबा श्री रामा सुध सब एक उत्सुक हो गए भगवान ने पाने के लिए। भगवान तो ठाकुर जी हमारा कन्हैया तो गयो। और जब थोड़ी कुछ समय बाद ठाकुर जी फन पे आते हुए देखे, नृत्य करते हुए देखे, तो सब भगवान के स्वरूप के दर्शन करते हुए नृत्य करते हुए सबके मन में एक ही प्रार्थना उठी कि भगवान का स्वरूप क्या है। तो भगवान तो घटघट के वासी है, तो सभी की जान ली। तो जब कालिया नाग भेज दियो, वाके बाद में सब आग्रह करके बोल बाबा कन्हैया तू हमें बता दे तेरा सच्चा स्वरूप क्या है। तो भगवान कन्हैया ने अपने इस स्वरूप में चतुर्भुजी रूप में, तो उस भगवान ने अपना ये असली स्वरूप दिखाया बैकुंठ का। भगवान यहाँ चतुर्भुजी रूप में विराजमान है शेष की सैया पे। माँ लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही हैं, नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी विराजमान है। ब्रह्मा जी के चार पुत्र मानस, माँ सरस्वती, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और जो छोटे छोटे विग्रह ऊपर लाइन में आप देख रहे हो वो 33 कोटि देवता हैं। 33 कोटि देवता हैं। भगवान नारायण के मुखारविंद के नीचे जो मुकुट है, झुमका, वहाँ कुबेर जी महाराज विराजमान है। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप देखिए, आपको ठाकुर जी के हम जहाँ की नज़दीक से दर्शन कराते हैं भगवान के स्वरूप के। ये भगवान के चरण कमल हैं, यहाँ ये चरण कमल हैं और ये लक्ष्मी माता जी के हाथ हैं, हाथ से ऐसे माता जी सेवा कर रही हैं। और ये ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हैं, ब्रह्मा जी, माँ सरस्वती, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और ऊपर जो विग्रह हैं छोटे छोटे ऐसे 33 कोटि देवता हैं, वो 33 कोटि देवता हैं। ठाकुर जी का मुखारविंद है, बड़े सुहानी सूरत है मेरे गोविंद की। और ये कुबेर जी महाराज विराजमान है, इधर कुबेर जी महाराज विराजमान है। भगवान का ये चक्र है, पोशाक के अंदर गदा शंख, और एक हाथ ये ठाकुर जी का है, ऐसे हाथ लगा रखे हैं भगवान ने, और बाकी पोशाक के अंदर है भगवान। इस प्रकार से ठाकुर जी के चतुर्भुजी रूप में दर्शन है। और आप सभी भक्तों से निवेदन है कि यहाँ शेषशायी धाम पधार कर ठाकुर जी के दर्शनों का लाभ लें। ये जो आप कुंड जो देख रहे हैं, इसके 12 कोस का विस्तार है भगवान, इस कुंड का 12 कोस का विस्तार है। और ये पहले बड़े बूढ़े बता में आज से 100-200 वर्ष पहले कि एक बार खीर सागर के दूध से ही यहाँ भगवान को भोग लगे, बड़ी कृपा है यहाँ ठाकुर।
2: बाबा ये द्वापर काल का ही होगा मंदिर?
1: अरे महाराज जी, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इस जगमोहन का निर्माण राजा बल्लू, जो बल्लभगढ़ के राजा बल्लू थे, उन्होंने इस जगमोहन का निर्माण, इस निज मंदिर का निर्माण कराया था। 500-700 वर्ष तो इस निर्माण को ही हो गई। और यहाँ बाजू गांव में खिरवी गांव पड़ता है, वहाँ के 2 भक्त कभी जगन्नाथ जी जा रहे थे, इनका जो प्राकट जो हुआ था, तो ठाकुर जी उस समय दर्शन देखे और ध्यानस्थ हो गए। तो मुगल शासन जब आया तो ये प्रतिमा किसी तरीके से जमीन के अंदर चली गई। तो जो खिरवी के जो 2 भक्त थे वो जगन्नाथ जी जा रहे थे भगवान दंडवती करते हुए, तो जब इस जंगल से वो निकल रहे थे तो भगवान ने उनको रात को स्वप्न दिया कि आप लोग इतने असमर्थ हो गए हो, इतने वृद्ध हो गए हो कि तुम जगन्नाथ जी नहीं पहुँच सकते, तो आप यहीं पर हमारे दर्शन करें। हींस के पेड़ के नीचे श्याम वरण गऊ आती है और हमको यहीं दूध पिला के जाती है। जैसे जैसे सवेरा हुआ, दोनों भक्तों ने आपस में जो स्वप्न बताया तो वो चकित रह गए। वहाँ के जो गोचर थे, ग्वालिया लोग थे, उन लोगों के सानिध्य से उस स्थान को पाया और वहाँ उस समय का इंतजार किया जब वो गाय आती थी। तो गाय आई तो सुते ही भगवान के भगवान को रस दूध पिलाया और पिवाने के बाद में वो चली गई। तो उस जगह से ठाकुर जी की प्रतिमा को निकाला गया और यहाँ विराजमान किया गया। बुजुर्ग लोग

0: तो ये बताते हैं कि ये चौबीसी का मंदिर है कि सबने अपने अपने गांव में ले जाने की जिद ठानी, तो भगवान जिस रथ में ठाकुर जी को रखा गया गाड़ी में, तो कुछ दूरी पर ही वो चली और ऐसे ही उसके रथ के पहिया, गाड़ी के पहिया जमीन के अंदर चले गए। और ऐसा आकाशवाणी हुई कि अब जो आपको विराजमान करना है हमारी यही गद्दी लगनी चाहिए, तो ठाकुर जी को यहीं विराजमान करा दिया भगवान जी। तो जो भगत थे उन्होंने ठाकुर जी का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद में उन्होंने अपना आगे की यात्रा प्रारंभ की। तो उस उन्होंने जो दूसरा पड़ाव लिया तो दूसरे पड़ाव पर भी ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिया कि आप लोग हम तक नहीं पहुँच सकते, आप कृपया करके यहीं हमारे दर्शन कीजिए। तो ठाकुर जी ने जब दर्शन कही तो ठाकुर जी ने तो उनकी बातचीत हुई कि प्रभु हमें तो तुम्हारे दर्शन करने, तो भगवान ने उन्हें स्वप्न में ही बताया कि ठीक है अगर आप हमारे ही दर्शन करना चाहते हो तो भी महा की जया एकादशी को हम जगन्नाथ जी से आपको दर्शन देने के लिए आएंगे। तो अब भी ये परंपरा है कि महा की जया एकादशी को जगन्नाथ जी में सवा पैर के लिए ढाई पैर के लिए वहाँ पटबंद रहते हैं और यहाँ एकादशी को भगवान जगन्नाथ जी भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। और जगन्नाथ जी को दर्शन देने के लिए महा फागुन चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन और भादों में जाके अगस्त में जाके वहाँ जाके रथ यात्रा निकलती है। तो वो पूरा ब्रज भ्रमण करके बिहार करके क्या नाम है कुरुक्षेत्र बिहार करके तब वो जगन्नाथ जी लौटते हैं। तो वहाँ जाके फिर उनकी रथ यात्रा निकलती है
1: तो उन्हीं दो भक्तों के लिए
0: अब तो
1: क्या गांव बताया था उनका
0: खिरवी गांव जी। ये भगवान के हृदय स्वरूपी गांव है, पांच गांव जो खीर सागर में विराजमान है, शेषाई बांसवा खिरवी हताना और खरौट, ये हृदय स्वरूपी गांव है भगवान के खीर सागर के जो अंदर विराजमान है। बिल्कुल जय जय श्री राधे।
2: शेषाई से आगे अब हमारी यात्रा बढ़ चुकी है कोसी की माओ। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत पुण्याय पुण्य रूपाय पावनाय नमो नमः अक्षय फल दायेव नमः कुश वनायते। हे पुण्य स्वरूप अक्षय पवित्र फल देने वाली कोश स्थली आपको प्रणाम है। श्री कृष्ण ने नंद बाबा को यहाँ वैकुंठ के दर्शन कराए। यह नंदराय जी की कोश स्थली है। मथुरा से 40 किलोमीटर दूर दिल्ली की माऊ मथुरा दिल्ली राजमार्ग पर यह स्थित है। आजकल यह को नाम कोसी कला है। यहाँ श्री कृष्ण ने नंद बाबा को कुश स्थली को दर्शन करायो हो। जहाँ द्वारिका धाम को दर्शन करायो वहाँ गोमती कुंड है जो गांव के पश्चिम में विराजमान है। एक बार की मधुर और हास्य रस की लीला करते भई श्री राधा ने विशेष भाव भंगिमा में भर के श्री कृष्ण से पूछी, कोसी तुम कौन हो? यही लिया या स्थान को नाम कोसी से कोसी पड़ गयो। या को एक बड़ो ही रोचक प्रसंग है। एक बार श्री कृष्ण राधा जी से मिलने के काज बड़े उत्कंठित हुए के बिनके निकुंज भवन में पधारे। तब द्वार से ही बिन ने श्री राधा जी को पुकारो। अंदर से ही श्री राधा जी ने पूछी, को असी? श्री कृष्ण ने उत्तर दिनो, मैं कृष्ण हूँ। तब श्री राधा जी ने कही, क्योंकि कृष्ण शब्द को एक अर्थ कालो नाग भी हुए है, तो यदि तुम कृष्ण अर्थात काले नाग हो तो तुम्हारी यहाँ कहाँ आवश्यकता है? का तुम मुझे दसनो चाहो हो? तुम वन में जाओ। तब श्री कृष्ण ने कही, नहीं प्रियतमे, मैं घनश्याम हूँ। या के प्रत्युत्तर में श्री राधा ने कही, यदि तुम घनश्याम हो तो तुम्हारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ बरस के मेरे आंगन में कीचड़ मत करो, तुम वन और खेतन में जाके बरसो। तब श्री कृष्ण ने कही, अहो प्रियतमे, मैं चक्री हूँ। चक्री शब्द को अर्थ कुलाल और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार से हुए है। तो यही कारण श्री राधा ने कही, यदि तुम चक्री हो तो बाकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे घर में कोई विवाह उत्सव नहीं है। जहाँ विवाह उत्सव इत्यादि हो वहाँ तुम अपनी मिट्टी के बर्तन को लेके जाओ। तब श्री कृष्ण ने कही, अरे प्रियतमे, मैं मधुसूदन हूँ। तब श्री राधा ने कही, यदि तुम मधुसूदन हो तो शीघ्र ही यहाँ से दूर कहीं पुष्पोद्यान में

0: पुष्पन के ऊपर बैठ के बिन को रसपान करो ना, यहाँ पे तो पुष्पोध्याय है ही ना। तब श्री कृष्ण ने कही, अरे मैं तुम्हारो प्रियतम हरि हूँ। हरि शब्द को अर्थ बंदर या सिंह से हुई है। तब श्री राधा ने हर्ष के कही, यहाँ बंदरन और सिंहन की कोई आवश्यकता नहीं है, कहा तुम मुझे काटना चाहो हो, तुम शीघ्र काउ घने वन में जाओ, हमें बंदर और सिंहन से डर लगे है। यह प्रकार श्री राधा प्रियतम हरीसों नाना प्रकार हास परिहास करे हैं। कोसी कला में गोमती कुंड, कुंड तट पर श्री मन महाप्रभु जी की बैठक श्री भगवती देवी मंदिर स्थित है। या के अलावा यहाँ विशाखा कुंड, माया कुंड, श्री राधा माधव मंदिर, श्री राधा कांत, श्री लक्ष्मी नारायण, राधा वल्लभ, श्री दाऊ जी, श्री जैन मंदिर, मावई कुंड, रत्न सागर, श्री सत्यनारायण मंदिर, श्री तोताराम, श्री पंचमुखी हनुमान एवं श्री राम मंदिर इत्यादि दर्शनीय हैं। करहारी से 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में पैगाम स्थित है। गांव में श्री चतुर्भुज नारायण, श्री राधा रानी और श्री दाऊजी मंदिर दर्शनीय हैं।
1: यहाँ पे ये गोपाल कुंड जो आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे नागाजी महाराज ने तप किया था और चतुर्भुजनाथ यहीं से प्रकट हुए थे, जो कि आज बड़े मंदिर में वहाँ स्थापित हैं। यहाँ नागा बाबा ने, ये उनकी तपस्थली है, यहाँ पर उन्होंने तप किया था काफ़ी समय तक। यहाँ हैं, इनको कुछ गुजर लोग यहाँ से ले जा रहे थे तो उनकी गाड़ी में जो रखे थे, तो यहाँ गाड़ी फंस गई थी, यहाँ से गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, इसलिए चतुर्भुजनाथ को यहीं स्थापित किया गया। उन्होंने अपने भक्त को दर्शन दिया कि मेरा छोटा भाई इस गोपाल कुंड में है, तो गोपाल कुंड से उनके दाऊ भाई प्रकट हुए।
0: पैगाम के संबंध में एक बार गौचारण करते समय प्यास से कातर हुए के सखीर ने श्री कृष्ण सो पानी पीवे की मांग रखी। बस में एक ग्वालिन माथे पे दही मटकी रखे यहाँ से गुजर रही, तो सखान ने पानी की मटकी समझ के ग्वालिन सो पानी पिवाए की प्रार्थना की नहीं। मटकी में दही होने की बात जान के भी सखान ने पानी प्यास मिटाने हेतु दही पीनो शुरू कर दिनो। दही हो क्या समाप्त ही नहीं है रहे हो, या को देख के सभी सखान ने श्री कृष्ण की चालाकी को जान लियो। यही काजे यह स्थान पैगाम नाम से प्रसिद्ध है। शहजादपुर गढ़ी वड़ा से 1.5 किलोमीटर उत्तर दिशा में शहजादपुर गांव स्थित है और गांव में श्री राधा कृष्ण मंदिर, श्री महादेव मंदिर दर्शनीय है। पैगाम के संबंध में एक कथा और प्रचलित है कि जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ गौचारण के काजे आयो करते, तब यशोदा मैया कृष्ण बलराम के काजे घर से छाछ भेज दियो करती। एक बार छाछ में विलम्ब हुए के कारण श्री कृष्ण और उनके सखान को जब बड़ी भूख लगी, तब बिन्ने यह गांव में आए के दुग्ध पान कीनो, यानी ऐ पान कीनो। यही कारण या को नाम पैगाम पड़ो, जाको अपभ्रंश है के अब नाम पैगाम है। गांव के उत्तर में पय सरोवर और कदम और माल वृक्षों से सुसज्जित मनोहर कदम्ब खंडी है। और अब हमारी यात्रा आ पहुंची है शेरगढ़ की माऊ। यह वन को पौराणिक नाम खीलर वन और वर्तमान नाम शेरगढ़ है। श्री कृष्ण बलराम अपने सखान के संग, श्री राधा जी अपने सखी के संग यह खेलवे आयो करती। एक कथा यह प्रचलित है कि एक बार श्री कृष्ण बलराम श्री द्वारका से ब्रज में पधारे। यह आए के बलराम जी को मन रासलीला को भयो, तो यमुना जी को छोड़ के सभी गोपी यहाँ रास में आ गईं। या पे दाऊ दादा क्रोध करते हुए बिन ने श्री यमुना जी को कर्षण कीनो। यही काज ब्रजवासी बिन को ऐंचा दाऊ जी भी कहमे हैं। ऐंचा को अर्थ हुए है खींचवो, और ब्रज में एक ही स्थान है जहाँ यमराज, यमुना जी और श्री दाऊ जी को मंदिर स्थित है। या के अलावा गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी मंदिर और दाऊ जी कुंड उपस्थित हैं। यहाँ गुरु काशनी आश्रम की भी स्थापना भई है। मंदिर में विराजमान ठाकुर श्री खेलन बन रमन बिहारी जी महाराज भक्तन को आनंद प्रदान कर रहे हैं। गौशाला के माध्यम से गौ सेवा और संत सेवा की परंपरा अनवरत चल रही है। यह के पास में पवित्र सरोवर भी है। तो श्रोताओं, आज के

अंक में इतना ही, अगले अंक में हम चीर घाट और नंद घाट दर्शन करते भई पहुँचेंगे माटकी माऊ। हमारे सभी श्रोतान को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।

यात्रा ब्रज 84 कोस की यह श्रृंखला में अब ही आपने जानो शेरगढ़ के बारे में। और भैया आओ अब आपको सुनवावे यह लोकगीत, गायो है अलका राजेश ने।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: की एक कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
2: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में

0: ने नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में नौ मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफपी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
2: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय

0: मुख्यमंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
1: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद फरद। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म। दैनिक जागरण ने यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है।

0: अमेरिका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है। आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है? कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी। वीर अर्जुन की सुर्खी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में 9 दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India officially launches its campaign for election as non-permanent member of UN Security Council for 2028-29 term. Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. US launches strikes on Iran for the 3rd consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India script history at Lord's in London with 270-run win over England in one of women's test. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
3: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
2: Highlighting India's credentials, Dr. Jaishankar said India has contributed nearly 3 lakh personnel to about 50 UN peacekeeping missions since the organization's inception.
3: Peacekeeping has been a crucial element of maintenance of international peace and security since the very inception of the United Nations. And India has always been in the forefront of discharging that responsibility. Our cumulative contribution is nearly 300,000 deployments in about 50 missions worldwide. Currently, we have 4,300 personnel across 10 of the 11 active missions. As we all know, most of these missions are in Africa. Few countries would have our experience in preparing peacekeeping to be future ready.
2: If elected, India will serve a 2-year term beginning in 2028. India has previously served 8 terms as a non-permanent member of the Security Council, most recently in 2021-22. The mortal remains of 15 Indian tourists who lost their lives in a boat tragedy near the Phu Quoc Island in Vietnam arrived in Mumbai last night. The victims were flown from Ho Chi Minh City on a Vietnam Airlines flight after Indian diplomatic missions coordinated the repatriation process with Vietnamese authorities. State governments of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala have been asked to coordinate with the bereaved families for the onward transportation of the bodies to their hometowns. Indian Embassy in

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मिस सीमा
4: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
4: क्यों, लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
4: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
4: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
4: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
6: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आइए अब आपको सुनाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

ब्रह्मास्त्र फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीत को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई थी प्रीतम ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं दबंग 3 फिल्म से। गाया है सलमान अली और मुस्कान ने, गीत को लिखा है समीर अंजान ने और धुन बनाई है साजिद वाजिद ने।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

हंसी तो फंसी, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना श्रीप्रदा और शेखर की आवाज़ों में। गीत को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई थी विशाल शेखर ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं वजीर फिल्म से, गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। शब्द रचना है विधु विनोद की और संगीत रचना है शांतनु मोहित्रा की।

शंकर महादेवन की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे वेकअप स्टेट फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था जावेद अख्तर ने और धुन बनाई थी शंकर एहसान लॉय ने। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब समाप्त होता है।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है.
2: आराम से मैडम.
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है. नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
4: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है. आइए अब आपको सुनवाते हैं काव्यात्मक संवाद. विषय है जीवन में संबंधों की कसक. वार्ताकार हैं रवि कुमार शर्मा और इनसे बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह.
5: श्रोताओं, एक साहित्यकार जब लिखता है, बोलता है, तो निश्चित तौर पर समाज की उन चीज़ों को देखता है जिनको एक सामान्य व्यक्ति नज़रअंदाज कर देता है, या कहें कि उसकी सोच और समझ वहाँ तक नहीं पहुँचती जहाँ एक साहित्यकार जा पाता है. इसीलिए शायद कहा है कि जहाँ रवि नहीं पहुँचता वहाँ कभी पहुँच जाता है. तो आज ऐसे ही एक साहित्यकार हमारे साथ हैं, रवि कुमार शर्मा जी. आप व्यावहारिक जीवन को जीते हैं, उन्हीं बिंदुओं और मुद्दों को हमारे और आपके बीच में कविता के माध्यम से लेकर के आते हैं. सहज सरल इनका लिखना है, जीवन भी सहज और सरल है. तो रवि कुमार जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत.
6: नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद.
5: क्या कुछ समाज की ऐसी जो चीज़ है, कई बार हम संबंधों में देखते हैं, कई बार पीढ़ियों में देखते हैं, कई बार घटता हुआ देखते हैं
6: जी,
5: लेकिन कई बार हम देख भी नहीं पाते, तो आप उन चीज़ों को देखते हैं, तो आजकल के समाज के संदर्भ में आपने कुछ जो लिखा हुआ हो हमारे श्रोताओं के साथ बांटिए आप.
6: आजकल हमारे समाज की जो रीढ़ होती है, रिश्ते, वही एकदम खोखले और कमजोर हो गए हैं.
5: बिल्कुल.
6: तो उन रिश्तों की जो संवेदनाएं हैं उसको उजागर करने के लिए
5: जी,
6: मैंने अपने शब्दों के माध्यम से एक संदेश.
5: स्वागत है आपको.
6: जी जी. सबसे ज्यादा हम आज सोशल मीडिया के गुलाम हो चुके हैं, तो सोशल मीडिया में भी ऐसा नहीं है कि हमारे रिश्तों का जो भाव है, जो उनका रस है, वो नहीं मिलता है. मिलता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि सामने वाला हमारे इस डीपी से, हमारे फोटो से, हमारे ब्लॉग से, हमारे अकाउंट से क्या कर रहा है, देख रहा है, नहीं देख रहा है, फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, लाइक कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये तो पता चल जाता है. लेकिन
5: कई बार लाइक नहीं होता तो उसमें भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं. हाँ. संवेदनाएं आहत हो जाती है
6: जी,
5: कि हमने इतना कुछ किया लेकिन सामने वाले ने उसे.
6: और सबसे बड़ी बात कि घर का ताला बाद में खोलता है आदमी, सबसे पहले फोन का ताला खोलता है. तो इसीलिए
5: डीपी प्रमुख हो गई है जीवन.
6: हाँ, डीपी प्रमुख हो गई है आज के.
5: लेकिन डीपी तो बदलती रहती है, जीवन इतना शायद आसानी से नहीं बदलता है चीजें. तो साझा करिए हमारे श्रोताओं के साथ कि क्या कुछ ऐसा
6: जी. तो डीपी के लिए मेरी ये कविता सभी श्रोताओं के लिए समर्पित है.

0: बोला, उसके बाद ही हमने घर का और कोई ताला खोला।
1: क्या कहूँ,
0: रोज सुबह उठ कर तेरी डीपी को गुड मॉर्निंग बोला, बात

0: हम आजकल जो चल रहा है
1: जी
0: ये हमारे संस्कार नहीं है। आज ब्रेकअप हो गया, कल प्यार हो गया,
1: जी
0: ये हमारे संस्कार नहीं है। हम किस
1: भारतीय संस्कृति लंबा
0: जी
1: जीने की बात
0: जी जी
1: करती है,
0: जी
1: लंबे बंधे रहने की
0: जी
1: बात
0: जी जी
1: करती है।
0: जी
1: जी
0: तो यही
1: स्वागत,
0: मैंने कहा है
1: जी
0: कि हम
1: स्वागत,
0: वही हैं जो पहले कहते थे कि 7 जन्म तक आपका साथ देंगे।
1: स्वागत है,
0: तो
1: स्वागत
0: आज अगर
1: है।
0: हम उस चीज को भूलते हैं कि तो हमारी हमारे संस्कारों में कमी है, हमारे भावों में कमी है, इसीलिए मैंने बोला है

0: आपने रवि कुमार
1: जी
0: जी संबंधों की बात को उठाया, जीवन में जो वास्तविकता सोशल मीडिया की चल रही है उसको
1: जी
0: उठाया, लेकिन एक समय था परिवार में कई पीढ़ियां एक साथ रहती थी, और जब साथ रहते थे तो कुछ संबंधों की मिठास और खटास भी कुछ अलग होती थी।
1: जी इसमें कोई दो राय
0: तो
1: नहीं।
0: आप क्या मानते हैं कि हम चूंकि सामाजिक प्राणी हैं, परिवार में रहते हैं, भारतीय संस्कृति भी परिवार की बात करती है, उसके महत्व की बात करती है, तो परिवार में हम एक दूसरे से सीखते भी हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, समझते हैं, और सीखने का क्रम ऐसे ही चलता है। लेकिन
1: जी
0: कभी इस तरह भी सोचा हो कि एक माँ बाप का बच्चों के साथ संबंध, उनकी को दी जाने वाली हिदायतें, क्योंकि आपका जो मन है थोड़ा सा बागी भी है और स्वतंत्र और आज़ादी की बात भी आप करते
1: जी
0: हैं, लिखते
1: जी
0: हैं, तो कुछ ऐसा संबंधों पे लिखा हो जो स्वच्छंदता में भी हम एक अनुशासन के साथ जी सकें, रह सकें, एक दूसरे से सीख सकें, जहाँ एक दूसरे का, जैसे नदी बहती है तो दो किनारे होते हैं,
1: जी
0: अगर किनारे ना हो तो शायद नदी का अस्तित्व तो नहीं होता,
1: नहीं
0: तो
1: होता,
0: बिना अनुशासन के आज़ादी का भी कोई महत्व तो नहीं
1: नहीं
0: होता,
1: है,
0: अनुशासन और प्रेम में ही आज़ादी पनपती है।
1: बिल्कुल इसमें कोई दो राय।
0: तो कुछ ऐसा कुछ लिखा हो संबंधों पे
1: जी
0: आपने
1: मैंने
0: तो
1: बिल्कुल
0: मैं
1: लिखा
0: स्वागत
1: है।
0: करता हूँ आपका।
1: दरअसल जब हम बड़े हो जाते हैं, यानी जब
0: जी
1: हम खुद पिता हो जाते हैं, तो हम अपने बचपन की उन भावनाओं को भूल जाते हैं जो हम अपने माता पिता से चाहते थे।
0: जी जी
1: इसीलिए मैंने माता पिता, अभिभावक और बच्चों के बीच का एक पुल बांधने का प्रयास किया
0: मैं
1: है अपनी
0: स्वागत
1: कविता के माध्यम
0: स्वागत
1: से।
0: करता हूँ आपका, स्वागत करता हूँ जी।

0: समझो कि हमसे दर्द क्या क्या है। अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं
1: जी,
0: और कुछ माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता ऐसा होता है कि उसमें इतना संवाद नहीं हो पाता कि वो एक दूसरे को इतनी गहनता से समझ सके कि बच्चा हमारा क्या सोच रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मानसिक समस्या है।
1: जी,
0: तो इसीलिए कहा है बच्चे की सोच ने

0: मतलब जीवन में समझ होनी चाहिए। जो पुरानी चीजें हैं, कहते हैं कि जब बच्चे का जूता इतना बड़ा हो जाए, नंबर बड़ा हो जाए
1: जी,
0: तो, या बराबर का हो जाए, तो फिर अधिकार बराबर का दे देना
1: दे देना
0: चाहिए। और
1: चाहिए।
0: इतनी आज़ादी और इतनी स्वच्छंदता जीवन में आनी चाहिए कि कम से कम हम ये विश्वास कर सकें।

0: कि हमारा अगर जो
1: बच्चा है।
0: बच्चा है उसको हमने अगर अपने संस्कार दिए हैं, उसको समझ दी है, तो वो भी बेहतर और अच्छा ही करेगा, ये हमें आना चाहिए। लेकिन कई बार सोच इतनी अलग हो जाती है
1: संकीर्ण
0: कि
1: हो
0: हम
1: जाती
0: बागी
1: है।
0: भी हो जाते हैं,
1: हाँ,
0: हम अलग हो जाते हैं। तो
1: इसीलिए इसमें दो लाइनें मैंने इस
0: जी
1: चीज के
0: जी
1: लिए दी
0: जी
1: हैं।
0: जी मैं स्वागत करता हूँ जी।
1: हम

0: को सब।
1: अभी आप सुन रहे थे काव्यात्मक संवाद में जीवन में संबंधों की कसक, इस विषय पर वार्ता करते रवि कुमार शर्मा, बातचीत कर रहे थे ओपी सिंह। कृपया अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
2: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है जौनपुर व हरदोई जिले की हलचल।
3: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए जौनपुर और हरदोई जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का।
4: मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत जौनपुर के करीब 27,000 शिक्षकों और शिक्षक विभाग से जुड़े कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। योजना के दायरे में शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया शामिल हैं। अब तक जिले में 8,000 स्वास्थ्य कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। जिले भर में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान लाभार्थियों को प्रतीकात्मक कार्ड वितरित किए गए। साथ ही साथ दीनदयाल हस्तकला शुक्ल वाराणसी में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कलेक्टर सभागार में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार की शिक्षा जगत से जुड़े प्रत्येक कर्मियों के हित के लगातार कार्य करें। मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना से शिक्षक और कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, जिससे निश्चित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
5: शिक्षक राजेश पांडे ने कहा,
6: यह योजना शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी समस्याओं और उनकी चिंताओं का समाधान करेगा और इसी अपेक्षा के साथ सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का सभी शिक्षक स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरी सरकार को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं।
4: जौनपुर में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शैक्षिक सत्र 2026-27 के तहत स्कूल चलो अभियान एवं निपुण भारत मिशन के अंतर्गत एक विशाल जनपद स्तरीय जागरूकता रैली निकालेगी। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराना, शिक्षा के प्रति समाज को जागरूक करना। टाउन हॉल मैदान नगरपालिका परिसर से शुरू हुई इस रैली के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समीर, बेसिक शिक्षा अधिकारी, ने कहा कि जिन बच्चों के नामांकन और उनकी शिक्षा को संवारने के गुरुजनों की भूमिका सर्वोपरि होती, उन्होंने बताया कि विद्यालय चलो अभियान के प्रथम और द्वितीय चरण में मिलाकर जनपद में अब तक कुल 60,000 नए विद्यार्थियों का नामांकन किया जा चुका है। 15 जुलाई तक इस संख्या को वृद्धि होने की संभावना। सरकार का संकल्प और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। जिले के मुगरा बादशाहपुर डिपो से जुड़े यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। करीब 38 वर्ष पुराने इस डिपो को अब तक पूरी तरह से कायाकल्प होगा। शासन ने डिपो को पुनर्निर्माण एवं आधुनिक के लिए 53 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। बरसात समाप्त होते निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वर्ष 1988 में निर्मित मुगरा बादशाहपुर रोडवेज डिपो का भवन अब जर्जर एवं खंडर में तब्दील हो चुका है। यहां से प्रतिदिन जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, सुल्तानपुर, लखनऊ के लिए 200 से अधिक बसों का संचालन होता है। इन बसों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 50,000 यात्री सफर करते हैं। शशि शुक्ला, डिपो इंचार्ज मुगरा बादशाहपुर, ने बताया कि डिपो का कायाकल्प किया जा रहा है। इसके तहत शासन की ओर से 53 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। बारिश खत्म होते निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। डिपो का आधुनिकरण सुविधा से लैस किया जाएगा। कार्य की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। जौनपुर जिले के निवड़िया थाना क्षेत्र के गोपालापुर में 33/11 केवी क्षमता विद्युत उपकरण का निर्माण कराया जाएगा। इस परियोजना के लिए कुल 7,92 लाख रुपए की स्वीकृति शासन की ओर से प्रदान की गई। बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि निगम के कार्य शुरू कर दिया गया है। लगभग 5 से 6 माह के काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। नए उपकेंद्र के निर्माण में 35 गांव से 8,000 से अधिक उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलेगी। वर्तमान में गोपालापुर और आसपास के क्षेत्रों में निवड़िया तथा रामपुर पावर हाउस से बिजली आपूर्ति की जाती है। इन उपकेंद्रों पर लोड अधिक होने के कारण से उपभोक्ताओं को बिजली टिपिंग और फॉल्ट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए अपना दल से मड़ियाहों विधायक डॉक्टर आर के पटेल ने उपकेंद्र का निर्माण का प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजा था। इसमें अब स्वीकृति मिल गई। निवड़िया गोपालापुर उपकेंद्र निर्माण के लिए भूमि भी चिन्हित कर ली गई है। जौनपुर कलेक्टर सभागार में डीएम सेमुअल पाल की अध्यक्षता में पौधारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। इसमें वृद्ध स्तर पर पौधारोपण अभियान की रूपरेखा की तैयारी पर गहन चर्चा की गई। इस वर्ष जनपद में कुल 60,73,400 पौधे लगाने का विशाल लक्ष्य आवंटित किया गया है। इस महाअभियान की सफलता के लिए डीएम विभागवार निर्धारित लक्ष्यों का पौधारोपण स्थलों, पौधों की उपलब्धता, गड्ढों की खुदाई

0: पौधों के उठान जियो टैगिंग तथा उनके संरक्षण संबंधित व्यवस्थाओं को विस्तृत समीक्षा की। जौनपुर के रोहित यादव ने 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलीट चैंपियन में 87.5 मीटर का भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। 14 साल की उम्र में बांस के डंडे से अभ्यास करने वाले जिले के गांव के अदारी डबिया के रोहित यादव ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भुवनेश्वर के कालिंगा स्टेडियम के आयोजित 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलीट चैंपियन के अंतिम दिन 87.5 मीटर भाला फेंककर हासिल की। रोहित ने 2 बार ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को पीछा छोड़ा। इस क्रम के साथ 20वें एशियाई खेल 2026 के लिए क्वालिफाई भी कर दिया।
1: जौनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आकाश शुक्ला का।
2: हरदोई में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना और डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। योजना के तहत राजकीय एडेड माध्यमिक विद्यालयों और परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस मौके पर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि शिक्षकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब अपने पास से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। उन्हें सीधे पैनल में शामिल अस्पतालों में मुफ्त उपचार की सुविधा मिलेगी। उन्होंने डीबीटी योजना पर भी प्रकाश डाला। कहा कि इस योजना के माध्यम से बच्चों की यूनिफॉर्म, किताबों और अन्य व्यवस्थाओं के लिए धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने हरदोई में स्वर्गीय ठाकुर धर्मराज सिंह सोमवंशी की प्रतिमा अनावरण एवं अपना घर वृद्धावस्था आश्रम का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। हरदोई में जनसामान्य को संचारी रोगों से बचाने और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हरदोई के 100 शैया संयुक्त चिकित्सालय में विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्षा प्रेमावती पी के वर्मा ने अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर दस्तक देंगे। इसका मुख्य उद्देश्य डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की रोकथाम करना है, मरीजों की पहचान करना और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना रहेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्षा प्रेमावती पी के वर्मा ने स्वास्थ्य कर्मियों से इस अभियान को जन सहभागिता के साथ सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा संचारी रोगों की रोकथाम केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि जन जागरूकता, साफ सफाई और सामूहिक सहभागिता से ही संभव है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपने आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखें और स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन करें। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भवनाथ पांडे, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद सचान, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल शुक्ला, नोडल अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर प्रदीप गौतम, डॉक्टर सीबी सिंह और डॉक्टर सुजीत सिंह सहित वरिष्ठ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। हरदोई की आवास विकास कॉलोनी में भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी मुख्य अतिथि रही। भाजपा व क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री मरेंद्र पांडे ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में सहभागिता की। जिला महामंत्री ओम वर्मा ने सम्मेलन का संचालन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण कर किया गया। राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और जनसेवा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करने का आह्वान किया। क्षेत्रीय मंत्री मणिन्द्र पांडे ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने तथा समाज के सभी वर्गों से संवाद बढ़ाने का आह्वान किया। पांडे ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही। हरदोई में स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक मिशन सेफ फ्यूचर अभियान चला रहा है। परिवहन विभाग शासन के निर्देशों पर यह प्रदेशव्यापी अभियान संचालित करेगा, जिसमें प्रशासन और प्रवर्तन शाखाएं संयुक्त रूप से व्यापक जांच करेंगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एआरटीओ अरविंद कुमार सिंह ने सभी स्कूली वाहनों के स्वामियों से अपील की है कि जिन वाहनों की फिटनेस परमिट, बीमा या प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है, उनका तत्काल नवीनीकरण करा लिया जाए। ऐसा न करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्र छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्हें अनफिट या दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो चुके वाहनों का संचालन स्कूल में न होने दें और इस बात का खास ख्याल रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही वाहन स्वामियों को सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर नवीनीकृत कराने के निर्देश देने को भी कहा गया, ताकि किसी भी दुर्घटना या असुविधा से बचा जा सके। परिवहन विभाग 8 जुलाई से 15 जुलाई तक पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त रूप से विशेष प्रवर्तन अभियान चला रहा है। इस अवधि में बिना फिटनेस, बिना परमिट, बिना बीमा, बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र वाले या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ

0: चालान सीज करने और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत पिछले 5 महीनों में 167 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन फोनों की अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में इन मोबाइलों को उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया गया। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देश पर चलाए गए इस रिकवरी अभियान में सर्विलांस सेल और CIR यानी कि सीर पोर्टल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन तकनीकी माध्यमों का उपयोग कर पुलिस ने विभिन्न स्थानों से इन गुमशुदा मोबाइलों का पता लगाया और उन्हें बरामद किया। इस अभियान को सफल बनाने में जनपद की सर्विलांस टीम की तकनीकी दक्षता और कड़ी मेहनत शामिल रही। टीम का नेतृत्व सर्विलांस प्रभारी अब्दुल जब्बार ने किया। इसमें मुख्य रूप से हेड कांस्टेबल आकाश कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर राजकुमार वर्मा, कांस्टेबल ओमवीर सिंह, कांस्टेबल नितिन कुमार गुप्ता और कांस्टेबल यादवेंद्र सिंह शामिल थे।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आबो हवा, जिसमें आज का विषय है वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। आलेख और वाचन है हिमांशु नामा का।
3: हर दिन हमारा प्रदूषण के अनेक रूपों से सामना होता है। आज हम चर्चा करेंगे वायु प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में। वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों में साधारण खांसी जुकाम से फेफड़ों के कैंसर जैसे रोग तक शामिल हैं। प्रदूषित वायु आंखों में जलन पैदा करती है। कुछ पदार्थ जैसे सीसा शरीर में जमा हो जाते हैं। बड़े शहरों में फेफड़ों के कैंसर की दर ग्रामीण क्षेत्रों से दुगनी है। इसका प्रमुख कारण प्रदूषित वायु है। वायु प्रदूषण का प्रभाव बड़ों की तुलना में बच्चों पर ज्यादा होता है। वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, धूल, सिलिका और एस्बेस्टोस जैसे पदार्थ और गैसें प्रदूषण का कारण बनते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक दम घोटू गैस है। ये सांस के साथ शरीर में प्रवेश कर रक्त में मिल जाती है। इससे हमारे रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ढोने की क्षमता कम हो जाती है और कई अंगों को गंभीर क्षति पहुंचती है। कई बार सर्दियों के दिनों में बंद कमरों में चिमनियों का प्रयोग किया जाता है। इन चिमनियों में जलने वाले ईंधन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और बंद कमरे में सोने वाले मनुष्यों की मृत्यु का कारण बनती है। इसलिए चिमनी का प्रयोग करते समय खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। अगर शरीर में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की सांद्रता अधिक हो तो फेफड़ों से रक्त स्त्राव हो सकता है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कैंसर का कारण बनता है। इसमें मौजूद शीशे की मात्रा के कारण बच्चों के मस्तिष्क को क्षति पहुंचती है। धूम्रपान करना भी एक तरह का वायु प्रदूषण है। जी हाँ, धूम्रपान करने वालों को तो नुकसान होता ही है, बल्कि उनके साथ रहने वालों को भी धुएं से कैंसर का खतरा होता है। इसलिए धूम्रपान से सदैव दूर रहना चाहिए। धूल के कणों से प्रदूषण की बात की जाए तो एस्बेस्टोस का नाम सबसे पहले सामने आता है। एस्बेस्टोस मकानों की छतें बनाने में, गाड़ियों के ब्रेक क्लच के किनारों को ऊष्मारोधी बनाने के काम में आता है। एस्बेस्टोस से एस्बेस्टोसिस जैसी बीमारी होती है। सिलिका युक्त चट्टानों से निकले धूल के कण शरीर में पहुंचकर सिलिकोसिस जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं। खनन, पॉटरी उद्योगों, ग्रेनाइट की कटाई और बालू की खुदाई जैसे उद्योगों से जुड़े श्रमिकों को यह बीमारी होने का खतरा सर्वाधिक होता है। श्रमिकों में खांसी और सांस उखड़ने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। सिलिकोसिस के साथ अक्सर क्षय रोग भी हो जाता है। धूल के कणों से कई अन्य बीमारियां जैसे बेरेलियोसिस, बायसिनोसिस मनुष्य की मृत्यु तक का कारण बनती हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अगर दृढ़ निश्चय कर लिया जाए तो ये बीमारियां तो रुकेंगी ही, साथ ही पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। मनुष्य को अपने छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़कर वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपनाते हुए पर्यावरण प्रदूषण को कम करने पर ध्यान देना होगा। जब हम प्रदूषण से इतने त्रस्त हैं तो आने वाली पीढ़ियों की क्या हालत होगी, इसकी कल्पना करना ही भयावह लगता है। हमें अपने साथ अन्य जीव जंतुओं का भी ध्यान रखना होगा, तभी प्रकृति का संतुलन बना रहेगा और हम स्वस्थ और खुशहाल वातावरण अपनी भावी पीढ़ियों को सौंप सकेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबो हवा, विषय था वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, आलेख और वाचन था हिमांशु नामा का।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। सुबह के 9:30 हुए हैं और आइए अब आपको स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सुनवाते हैं भेंट वार्ता। विषय है सर्जरी में लेजर का प्रयोग। वार्ताकार हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र तिवारी और इनसे भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।
5: स्वास्थ्य कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, ऐसा कहते हैं कि स्वास्थ्य है तो सबसे बड़ा धन है। हम स्वस्थ हैं तो जीवन की कोई भी जो हमारी ख्वाहिश है उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जीवन में स्वास्थ्य को बड़ी नियामत यानी ईश्वर की कृपा के रूप में हम स्वीकार करते हैं, मानते हैं और ये हमारी सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा भी है। लेकिन कई बार जीवन शैली की अनियमितता, भागदौड़ का जीवन, स्ट्रेस, तो बहुत सारी समस्याएँ जीवन में स्वास्थ्य को परेशान करती हैं। और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसमें सर्जरी की भी आवश्यकता होती है। तो आजकल चूंकि विज्ञान काफ़ी आगे बढ़ गया है, मेडिकल साइंस में भी बहुत सारे इनोवेशन हुए हैं, तो एक सामान्य सर्जरी में लेज़र का जो प्रयोग है वो आजकल हमारे दिन प्रतिदिन के उसमें काफ़ी हो गया है। ये क्यों आवश्यक है, इसके क्या फायदे हैं और इससे क्या सुविधाएं और क्या आसानी हमारे जीवन में हो सकती है, ये कुछ आज मिले जुले से प्रश्न हम रखेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार तिवारी साहब। आप वरिष्ठ सर्जन हैं मथुरा के बीएल तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल के आप कर्ता धरता हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार।
6: थैंक यू। नमस्कार सर
5: जी। तो जब भी सर्जरी की बात आती है तो थोड़ा सा सेहरन सी अभी भी होती है कि भाई अरे सर्जरी कैसे कराएंगे। तो पहले तो यही बताइए कि जो ये सर्जरी है, कई बार हालांकि डॉक्टर बताते हैं तो ही करानी पड़ती है, डॉक्टर ही करते हैं, लेकिन फिर भी एक आम आदमी के उसमें रहता है कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है। क्या सर्जरी आज भी मुश्किल है?
6: सर पहले तो मैं ये बताऊं कि बहुत प्राचीनतम समय से जो मेडिसिन फैकल्टी है उसकी नींव ही सर्जरी रही है
5: जी।
6: चाहे वो आयुर्वेद के समय से रही हो, सुश्रुता जी के टाइम से, चाहे वो कल रही हो, चाहे वो आज हो या वो कल होगी
5: आने वाले समय में
6: जी। आने वाले समय में सर्जरी एक ऐसा मोड है जो कंप्लीट क्योर देता है कि उसके बाद फिर यूजली वो चीज दोबारा नहीं होती और करनी तब पड़ती है जबकि उसका कोई और इलाज होता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी ब्रांच है जो शायद सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो तब यूज होती है जब कोई और इलाज काम नहीं करता, प्लस इसके बाद में वो बीमारी 90% केसेस में दोबारा नहीं होती है। तो आज की डेट में पहले थोड़ा सा डर होता था कि दर्द का दर्द होता था, बेहोशी के कुछ खतरे होते थे, सर्जरी में खून बहने के यानी रक्त स्राव के खतरे होते थे, बाद में दर्द के पट्टी ड्रेसिंग करने के कुछ इन्फेक्शन के खतरे होते थे। पर आज के ज़माने में चीज़ें इतनी एडवांस्ड हो गई हैं कि ना तो दर्द होता है लगभग, ना ही ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि खून के रोकने के लिए जो मशीन्स हैं, जो नए अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, वो सभी आज की डेट में लगभग हर जगह अवेलेबल हैं। तीसरा, एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की रिस्क आजकल लगभग ना के बराबर है। सर्जरी में रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आने लगे हैं।

0: सर्जरी डे बाई डे एडवांस्ड होती चली जा रही है, जैसे कि लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन सर्जरी इवॉल्व हुई, जो लगभग पिछले 20 साल से बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हुई है। इसे हम की होल सर्जरी भी कह सकते हैं। मकसद ये था कि भाई छोटा चीरा लगेगा तो जख्म जल्दी भरेगा, दर्द कम होगा, इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे, मरीज को निशान कम दिखेगा, उसे बेहतर फील होगा। उसी सिलसिले में कुछ फील्ड में अब लेजर आई है
1: जी। मेरा प्रश्न भी यही था कि जो लेजर आजकल हम बहुत प्रयोग सुन रहे हैं उसका, तो ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी आई है इसको हम किस तरह से अपने श्रोताओं को बता सकते हैं कि ये जो प्रणाली है ये है और इसके ये फायदे हो सकते हैं इस पे?
0: सर, लेजर एक तरह से लाइट बीम है, एम्प्लीफाइड, जो बहुत ही प्रिसाइज या पिन पॉइंट या पर्टिकुलर पॉइंट पर ही काम करती है, और ये ही इसका सबसे बड़ा वरदान है। अगर आपने इसको प्रॉपरली यूज किया तो सिर्फ ये उसी जगह पर काम करेगी और उतना ही काम करेगी जितना आप चाहते हैं, आसपास उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए वॉर में भी आजकल लेजर चल रहा है, मशीनों में भी लेजर चल रहा है, सेम इसमें आया है
1: जी जी।
0: और कुछ फील्ड में लेजर, जैसे कि आईस में पहले था, ऑप्थेल्मोलॉजी में, अब जो हमारा सर्जिकल ब्रांच है इसमें बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट एक कॉमन प्रॉब्लम को मैं बताना चाहूंगा
1: जी, एड्रेस करें जी,
0: जो आम पब्लिक के लिए है, वो है फिसर, फिस्टुला यानी भगंदर, पाइल्स यानी हीमरॉइड्स यानी कि जैसे बवासीर भी कहते हैं हिंदी भाषा में, पाइलोनाइडल साइनस जिसमें रीढ़ की हड्डी के नीचे से लैटिंग रास्ते के ऊपर तक एक जख्म सा बन जाता है, कभी कभी पस निकलता है, बाल जिनके ज्यादा होते हैं उनमें ज्यादा होता है। कोइंसिडेंटली मेरा अनुभव यह है कि कोरोना के बाद में इसके इंसिडेंसेस बढ़े हैं, हो सकता है वर्क फ्रॉम होम इसका एक कारण हो सकता है कुछ और हो, और मेल्स के साथ साथ फीमेल्स में भी इसकी इंसिडेंसेस यानी इनकी संख्याएं बढ़ी हैं
1: जी। तो अब आपने खुद ही एड्रेस किया कि आजकल जो बवासीर कहते हैं, फिसर, फिस्टुला, आपने चारों चीज़ों का कहा, तो ये बड़ा कॉमन सी बीमारी है और इसको लोग आज भी बड़ी हेजिटेट करके देखते हैं, शर्म के उससे देखते हैं और चीज़ों को साल दर साल बहुत लंबे समय तक दर्द भी सहन करते हैं और छुपाते भी रहते हैं। तो ये जो थोड़ा सा हम इस पे आए कि ये होता है, लेकिन इसके कारण थोड़ा सा हम जान लेते तब विस्तार से इस पे बात करेंगे कि लेज़र का इसमें प्रयोग कैसे हो सकता है। तो क्या हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान या हमारी आदतें इसको बढ़ा रही हैं? क्योंकि आजकल ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, घर में से अगर चार लोग हैं तो उसमें दो से तीन लोगों में भी ये देखने को आ रहा है कि फिसर, फिस्टुला और इसकी बवासीर की जो प्रॉब्लम है वो हो रही है उसमें। तो इसके कारणों पर थोड़ा सा बताएं
0: सर। कारण बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कारणों से पहले मैं एक थोड़े से टाइम में ये बताना चाहूंगा कि ये अलग अलग हैं क्या,
1: जिससे
0: आम पब्लिक समझ सके
1: जी।
0: फिसर का हिंदी में मतलब होता है दरार या चटकना। तो कभी जब हमें कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत होती है या हार्ड स्टूल यानी कि टाइट लैट्रिन आती है तो लैट्रिन का रास्ता कट जाता है, इसे हम फिसर कहते हैं
1: जी।
0: कटने से आप डेली आपको टॉयलेट जाना है, वो जगह बड़ी नाजुक रहती है जो कटी हुई है, वो फिर से कट जाती है नेक्स्ट डे, और ये सिलसिला चलता रहता है। क्योंकि जगह कटी हुई है इसलिए टॉयलेट जाने के बाद और जाते समय पेशेंट को बहुत दर्द और जलन बाद तक होती रहती है, ये खासियत है फिसर
1: की जी।
0: दूसरा आता है हीमरॉइड्स या पाइल्स या बवासीर। बवासीर का खास लक्षण यह है कि बिना दर्द के मरीज को ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना ब्लड निकल गया या बूंद बूंद करके टपकता रहता है, दिस इज हीमरॉइड्स। और तीसरा आता है फिस्टुला या भगंदर। इसमें गुदा द्वार के आसपास एक कोई फोड़ा सा

0: दिखता है, जो कुछ दिनों में फूट जाता है, फिर दर्द बंद हो जाता है, फिर मरीज सोचता है मैं ठीक हो गया, फिर 15-20 दिन, महीने, 2 महीने में फिर वो भरता है, फिर फूटता है। दिस इज फिस्टुला। फिस्टुला में एक इसका दूसरी ओपनिंग जो होती है वो भीतर होती है, एनल कैनाल यानी गुदा द्वार के अंदर, और वो ही सोर्स होता है इन्फेक्शन का। ये ही वजह होती है कि कितनी भी आप मेडिसिन खा लें ये ठीक नहीं होती, और इसीलिए सर्जरी इसमें कंपलसरी है।
1: आवश्यक हो
0: जी,
1: जाती है इसमें।
0: चौथा आता है पाइलोनिडल साइनस, उसमें कुछ बाल भीतर चले जाते हैं खाल के, उसके भी लक्षण फिस्टुला जैसे ही होते हैं कि पस निकलता है कभी कभी, मरीज को समझ में नहीं आता क्या है, उसके लिए भी सर्जरी ही एकमात्र ट्रीटमेंट है। वो कैसे कैसे मैं अभी
1: जी,
0: बताऊंगा।
1: तो अब यहाँ अपन फिर वो आपने बता ही दिया, थोड़े से कारणों पे
0: जी हाँ,
1: अपन
0: सॉरी,
1: डाल लें तो फिर आएंगे कि भाई लेजर का प्रयोग हम कैसे
0: माफी
1: करेंगे, लेकिन
0: चाहूंगा, मैं
1: हाँ
0: भूल गया।
1: कारणों को जान लेते हैं
0: देखिए,
1: इसमें।
0: जैसे कि फिसर मैंने कहा, तो उसमें कट जाता है, कटेगा कब, जब कॉन्स्टिपेशन होगा, यानी कि आपकी लाइफ स्टाइल,
1: जी
0: अगर आप बाहर का खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, टाइमली नहीं खा रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, लिक्विड कम मात्रा में ले रहे हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रेस्ड हैं, ये सारी चीजें बेसिकली फिसर को जन्म
1: हाँ,
0: देती
1: एक तरह
0: हैं।
1: से हम कॉमन भाषा में इसको कब्ज और अनियमित जीवन
0: यस
1: यापन
0: यस
1: इसको कह
0: यस
1: सकते हैं।
0: एग्जैक्टली।
1: जी।
0: जो फिस्टुला है, कहीं भी कोई भी किसी भी कारण से, या इन्फेक्शन हो जाए, या कट लग जाए, या बाल टूट जाए, तो कोई एक फोड़ा बनता है, और इस जगह पे ये फोड़ा दोनों तरफ बढ़ता है, गुदा द्वार के भीतर की तरफ और बाहर खाल की तरफ।
1: अच्छा, दोनों तरफ, मतलब दोनों
0: जी
1: तरफ
0: जी
1: इसका
0: विस्तार होता
1: एक्सपेंशन
0: है,
1: हो, विस्तार होगा। जी
0: और दोनों तरफ ये फूट जाता है, भीतर का हमको दिखता नहीं है, बाहर का हमको दिखता है, ये फिस्टुला होता
1: ये
0: है।
1: फेस्टिवल
0: तो
1: है।
0: इसका मेन कारण वही है कि शुरुआत तो देखिए किसी को भी हो सकती,
1: शायद
0: पर
1: हिंदी नाम से ये
0: भगंदर,
1: ज्यादा,
0: यस,
1: हाँ मतलब स्पष्ट हो रहा है कि जो अंदर गुदा के जा रहा है वो
0: वो
1: ही
0: भगंदर
1: वो
0: है।
1: अंदर है।
0: जी,
1: जी।
0: मतलब अगर मैं बहुत ही हिंदी बोलूं तो फिस्टुला या भगंदर का मतलब सुरंग है जो दोनों तरफ खुलती
1: दोनों
0: है।
1: तरफ खुलती
0: जी
1: है। जी। चलिए ठीक है, तो ये इन्फेक्शन की वजह से हो
0: जी
1: रहा है
0: ये
1: ये।
0: इन्फेक्शन की वजह से होता
1: अब
0: है।
1: इसमें पाइल्स,
0: पाइल्स, जी पाइल्स का भी वही कारण, पाइल्स होता है कि जैसे उसे हम कहते हैं डायलेटेड टॉर्चुअस इलोंगेटेड एनोरेक्टल वीनस प्लेक्सस, यानी कि चौड़ा, बढ़ा हुआ, घुमावदार, छल्लेदार, जो खून की नसें हैं, खास तौर से वेन्स हैं रेक्टल एरिया की, वो हो जाती हैं, वो नीचे आ जाती हैं खाल के साथ या म्यूकोसा के साथ, म्यूकोसा भीतरी सतह को कहते हैं, उसे हम बवासीर या हिमरॉयड कहते
1: जी,
0: हैं।
1: मतलब ये क्या जो हमारा मलद्वार है, जो डे प्रतिदिन यूज होता है उसमें, तो वहां पहले से मौजूद रहती
0: जी
1: हैं।
0: सर, शरीर के हर ऑर्गन की ब्लड सप्लाई होती है, आर्टरी, और वहां से ले जाने के लिए वेन्स होती हैं। जब ये वेन्स में कोई प्रेशर पड़ता है और वेन की सप्लाई धीरे धीरे ऊपर कम हो जाती है, या लगातार प्रेशर से हमने ब्लड भरा रहता है, तो वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम पाइल्स कहते हैं।
1: पाइल्स कहते
0: जी
1: हैं। अब वो बालों वाली समस्या तो आपने बताई कि
0: जी
1: जिनके ज्यादा बाल हैं, परेशानी है, तो वो वहाँ कॉमन हो सकती है।
0: जी
1: अब हम अपने जो आज की बातचीत का मेन मुद्दा था वहाँ आते हैं कि एडवांस हुआ है, हर जगह हुआ है, तो मेडिकल साइंस में भी हुआ है लेजर का प्रयोग, चूंकि लेजर एक आविष्कार है और जो मेडिकल में आ गया तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं इसमें। तो अब ये जो चारों चीजें आपने बताई जिसको आदमी छुपाता है, शर्माता है, सर्जरी में इसका हम कैसे प्रयोग करें लेजर का, तो यहाँ इसके जो फायदे हैं उस पर थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: सर, लेजर एक, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही प्रिसाइज पिन पॉइंट जगह पर काम करता है, अगर हम इसको प्रॉपरली यूज करें तो एक तरह से एक नाइफ का भी काम करता है, यानी कि ब्लेड का भी,
1: जी
0: और जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड सोर्स होता है, उसको बंद करता है, प्लस जो खून की नसें फूली हुई होती हैं इनको सिकोड़ के कोगुलेट कर देता है। अगर मैं फायदे के बारे में जाऊं तो पहली बात तो एक बिल्कुल एक पर्टिकुलर जगह पे काम करता है अगर आपने इसको ढंग से यूज किया
1: जी
0: तो। दूसरा, लगभग दर्द रहित इसकी सर्जरी होती है। तीसरा ब्लड लॉस।

0: ऑलमोस्ट होता ही नहीं है, चीरा या तो लगता ही नहीं है या बहुत ही छोटे की जरूरत पड़ती है। कभी कभी कुछ कॉम्प्लेक्स यानी कठिन या जटिल केसों में चीरा भी लगाना पड़ता है। बाकी अगर आप शुरुआत में या मिडिल दौर पे आते हैं, 90-70-80-90% में बिना इसके काम हो जाता है। क्योंकि ना ब्लड लॉस हो रहा है, ना बड़ा जख्म बन रहा है, ना चीरा बन रहा है, इसलिए बाद में बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग या इन्फेक्शन होने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। ना तो आपको बहुत लंबी ड्रेसिंग करानी है, ना बाद में बहुत पेन होना है, ना उस जगह से ब्लड निकलेगा, ना इन्फेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो इसलिए लेजर आज की डेट की कमिंग डिमांडिंग इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इफेक्टिव
1: प्रोसेस
0: है जी।
1: मतलब आप इसको कहें कि बिना चीड़फाड़ के दर्द रहे तो कम समय में कम रिस्क के साथ
0: बिना खून के रिसाव
1: के
0: जी
1: रिसाव के की जाने वाली सर्जरी
0: जी,
1: ये
0: जी,
1: है
0: जी,
1: जो आजकल मथुरा में भी उपलब्ध है और
0: जी,
1: आप इसको कर रहे हैं। मतलब
0: हाँ, मैं
1: ये आपका अपना
0: कर रहा
1: अनुभव
0: हूं,
1: है।
0: मेरा अपना अनुभव है। मैं लगभग कम से कम अलग अलग मिला के एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ केसेस कर चुका हूँ। किसी में टचवुड कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे केसों के मैं शुरू में अपने पर्सनली टच में भी रहता हूँ जिससे उन्हें कोई दिक्कत हो तो पता चल जाए। मुझे भी अच्छा मिलता है, नेचुरली सुकून मिलता है जब कोई कहता है कि साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
1: आपकी उससे मेरा
0: तो
1: दर्द कम हो गया
0: तो बहुत
1: जीवन
0: अच्छा
1: का।
0: लगता है।
1: अच्छा, स्थिति परिस्थिति स्टेज की हम बात करें तो किन स्टेजेस पे सर्जरी रिकमेंड होती है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लगता है कि यार सिर्फ सर्जरी होगी, लेकिन जब हम एक अच्छी जगह अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो वो कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जिसको हम मान के चलते हैं। तो सर्जरी की जो स्टेजेस है, कई बार हम उस स्टेज में पहुँचते हैं कि जहाँ सर्जरी भी थोड़ा सा नाकाफी सी लगती है उसमें। तो एक आदमी को किस स्टेज में कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दिखाना चाहिए? क्योंकि नीम हकीम के चक्कर में पढ़ के हम बहुत सारी समस्याओं को बढ़ा लेते हैं।
0: सर देखिए, पहला तो यह है कि सवाल कि कब जाना चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर समस्या है तो आंसर है एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके
1: जा सके,
0: बढ़ाना क्यों। अब रहा सवाल कि ग्रेडिंग का, तो कुछ चीज़ों में वाकई इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हीमरॉइड यानी कि पाइल्स यानी कि बवासीर। जब मैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली में रजिस्ट्रार था, तब से मैंने दो चीज़ें एक अपने रिकॉर्ड में रखते हुए की कि किसी को इंजेक्शन दिया, इसे हम स्क्लेरोथेरेपी कहते हैं, किसी को बैंडिंग यानी छल्ले लगाए और किसी को सर्जरी की। उस समय वहाँ पर लेजर नहीं थी। ग्रेड वन और इवन ग्रेड टू में, मतलब मेरा ये उस समय से प्री टॉपिक रहा है क्योंकि लोग बड़े परेशान रहते थे
1: जी।
0: हम लोग इंजेक्शन पाइल्स लगाते हैं और ऐसे ऐसे पेशेंटों को लगाया है लेकिन रिस्क समझा के जिनका 4 ग्राम हीमोग्लोबिन था, कुछ कर भी नहीं सकते थे, उनका ब्लड बंद हो गया, टच वुड। और यूजली किसी को ऐसा लगता है हम लगा देते हैं, उसमें कुछ करना नहीं होता है, ओपीडी में आया 10 मिनट में लगवा के घर चला गया, कोई दिक्कत अभी तक तो हुई नहीं और ईश्वर करे हो भी ना। सभी का ब्लड लगभग बंद हो गया है, बहुत सारे लोग बड़े परेशान होके आते हैं और बड़े सुकून से फिर आके बोलते हैं सर थैंक यू। ग्रेड टू में बैंडिंग है पर आजकल वो भी इंजेक्शन से काम चल जाता है। ग्रेड टू और थ्री में लेजर इज द बेस्ट, जिसके कि चीरा नहीं, वही बताया मैंने, ब्लड लॉस नहीं, पेन नहीं,
1: रिस्क नहीं।
0: ग्रेड थ्री और फोर के बीच में जब पहुंचता है तो एक्सेसिव बड़ी हो जाती है, तब या तो अपन इंटरवल लेजर करते हैं यानी कि एक या दो बार करनी पड़ जाती है, या फिर लेजर प्लस पार्शियल सर्जरी, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि मरीज की स्थिति क्या है,
1: क्या है इसमें।
0: और जहां तक सवाल फिस्टुला यानी भगंदर का है तो इसमें तो ये बहुत ही कारगर है, पाल नोडल साइनस जी बहुत ही कारगर है।
1: अब इसमें जैसे और कहाँ कहाँ इसका लेजर का प्रयोग हम कर सकते हैं इसमें?
0: सर इसके अलावा एक जो अभी इवॉल्विंग ब्रांच है, क्योंकि मैं अभी उसमें एक मास्टर्स कोर्स करके भी आया हूं इसलिए मैं टच में हूं, नाम तो उसका कॉस्मेटिक गाइनी है। इसमें एक जो लेजर है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नया युग बनने

0: जा रहा है, ये एक सुपर स्पेशलिटी बनने जा रही है, एक जेट प्लाज्मा फॉर हर टू करके यूरोपियन डिवाइस है, और एक फोटोना लेजर है जो इसके दो अपर एस्पेक्ट अपर हैंडेड मशीनरीज हैं। तब एक वरदान सा लगती है, हम लोगों ने खुद इसके रिजल्ट देखे हैं। जनरली जो फीमेल्स में कई बार कई डिलीवरी के बाद में या डिलीवरी के बाद टांके टूटने के बाद में कुछ वेजाइनल लैक्सिसिटी रह जाती है, कुछ ढीलापन सा रह जाता है, या थोड़ी उम्र के बाद में सिकुड़न आ जाती है, या लगातार बार बार पेशाब के इन्फेक्शन होते रहते हैं, या लाइकन पेनस एक बीमारी होती वो हो जाती है, या इचिंग परसिस्टेंट रहती है वो ठीक नहीं होती है, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके अलावा स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, खांसते और छींकते में महिलाओं को ये शिकायत होती है कि कभी कभी पेशाब निकल जाता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि 30%, ये एक सर्वे है कि 30% महिलाओं को 35 से 40 साल की उम्र के बाद
1: बाद जी
0: ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है। दिक्कत यह है कि कुछ लोग तो समझते हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एज के साथ हमें हो गया है और ये सबको होता है,
1: उसके साथ जीने की आदत डाल
0: जीने का
1: लेते।
0: डालते हैं, और कुछ लोग समझते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। पर आज की डेट में दोनों गलत हैं, ये समस्या थी, ये समस्या है, और इसका इलाज अब है। वो इलाज भी इसी लेजर से
1: लेजर के
0: काफी
1: माध्यम
0: हद तक, कुछ केसेस को हमने देखा है, तीसरी सिटिंग में उनको 40% तक रिलीफ है, उनके चेहरे की मुस्कान थोड़ी सी बताती है कि उन्हें अब अच्छा लग रहा है,
1: अच्छा लग
0: वरना
1: रहा
0: एक
1: है।
0: डर बैठा रहता है कि हम कहीं डांस करेंगे तो यूरिन निकल जाएगा, हम कहीं जोर से कूदेंगे तो यूरिन निकल जाएगा, ऐसे लोग बहुत परेशान रहते हैं।
1: हाँ, एक बड़ा बोझ और डर लेकर के ही जीवन जी रहे हैं, तो वहां अगर राहत मिलती है तो निश्चित तौर
0: सर
1: पे
0: ये
1: एक
0: एक धीरे धीरे आप देखिएगा 1-2 साल में ये एक नया रिवॉल्यूशन, क्रांति, युग, सिस्टम, मतलब एक फीमेल को फीमेल होने का पूरा एहसास मिलेगा, उसको उसकी मनमाफिक चीजें मिलेंगी, मेंटली फ्री रहेंगी, अपनी जिंदगी को धड़ल्ले से जी सकेंगी, तो ये चेंज तो आएगा
1: आएगा उसमें।
0: जी।
1: और इसका ये विज्ञान के लिए हम इसको धन्यवाद देते हैं कि विकास हो रहा है और लोगों को उसका फायदा हो रहा है, यही एक विज्ञान की देन होती है। अब इसमें डॉक्टर साहब, क्या हर जगह लेजर का प्रयोग हो सकता है, या जहां लेजर का प्रयोग नहीं होता वहां कुछ अभी भी जो पुराने तरीके वहां हम काम कर रहे हैं?
0: सर अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि 80% जगहों पर कुछ पुराने और कुछ पार्शियल नए तरीके हैं, लेजर अभी तक हर जगह नहीं है।
1: जी जी
0: हालांकि ये बहुत तेजी से बढ़ रही है, डॉक्टर्स में इसका क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि उसके फायदे नज़र आते हैं और पब्लिक को भी नज़र आते हैं। हमारे पास ये सारी चीज़ें, जहाँ तक हमारा सवाल है, नॉर्मल डायोड एनोरेक्टल के लिए लेजर, कॉस्मेटिक के लिए जेट प्लाज्मा फॉर हर टू एक यूरोपियन डिवाइस, वो हमारे पास है सब है। इसके साथ साथ एक ऑफ द वे लाइन आपको बोलूंगा, एक रोल आया है PRP, मरीज के ब्लड से ही प्लेटलेट प्लाज्मा बना के उसी को उस जगह पर इंजेक्ट करते हैं जहां उसको प्रॉब्लम होती है, और सर ऐसी ऐसी जगहों पर करते हैं, इवन मतलब यहां तक कि भी अगर फीमेल्स में सेक्सुअल डिजायर कम हो जाए तो उसको बढ़ाती हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन
1: लेकिन
0: ये
1: इस
0: दबी हुई चीजें हैं
1: हाँ
0: और जो कभी ना कभी तो आएंगी।
1: आएंगी आएंगी जी।
0: चेहरे में जब सलवटें पड़ जाती हैं या एज के साथ चेहरे का कुछ चेंज हो जाता है, उसमें इसका यूज करते हैं, इसको और लेजर को। ये कमिंग फ्यूचर स्किन गायनी
1: मतलब
0: लेजर
1: इसका और
0: है,
1: इसको बढ़ना
0: बहुत
1: है
0: बढ़ना
1: और
0: है
1: हर
0: सर, बहुत
1: जगह
0: बढ़ना
1: इसको
0: है।
1: उसमें। अब जैसे अगर हम कहें कि हेयर ट्रांसप्लांट है या कोलेस्ट्रॉल और उसकी वजह से चेहरे पे कुछ चीज़ें निकल आती हैं, क्या जैसे पुरानी हमारी एक समस्या थी अपने ये होते थे अपने मस्से वगैरह का, वहाँ भी उपयोग किया जा
0: सर
1: सकता है?
0: मस्से के लिए तो देखिए ये है कि ये कॉटरी होती जो हम लोग करते हैं, कुछ भी नहीं करना होता, सुन्न की सुई एक होती है, एनेस्थीसिया लोकल बोलते हैं, हम लोग लगा के निकाल देते हैं। बाकी जहां तक काले चीजों का हल्का सा धब्बे का सवाल है, कुछ झुर्रियों का सवाल है, तो PRP प्लस ये लेजर, मतलब एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे

0: कहूंगा कि एक दो लोगों को हमने किया जिनके कुछ स्पॉटिंग थे, एक दो को चिकन पॉक्स होकर जस्ट चुका था, और हमने कहा तुम ले लो ऐसे ही, हमने नहीं कहा कि आपको आराम मिलेगा, उनने ले लिया
1: हाँ,
0: और
1: आराम
0: उन
1: मिला
0: यस रिमार्केबल आराम मिला
1: मतलब
0: है।
1: एक आपने प्रयोग किया और सफल रहा
0: जी
1: उसमें, तो मतलब एक तरह से ये वरदान आने वाले समय में लोगों को बहुत सारी चीज़ों से राहत और बहुत आसानी से और बहुत मतलब एक जीवन आसान करने वाली प्रक्रिया, इसको हम कह सकते हैं लेजर को।
0: सर बिल्कुल कह सकते हैं। और समय के साथ देखिए बदलना तो पड़ता ही है। पहले आप बैलगाड़ी पर चलते थे, फिर साइकिल पर चले, फिर लम्बरेटा आया, हीरो पोक आई, अब बैटरी वाले आ गए,
1: तो
0: तो
1: अब
0: इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, तो समय के साथ तो चलना पड़ता
1: चलना
0: है।
1: पड़ता है, तो इसमें अब चूंकि आपने समय के साथ की बात कही, फिर चलते चलते मैं पूछ लेता हूँ कि जो झिझक है कि भाई हम एक समस्या के साथ जी रहे हैं, उसका समाधान है बहुत आसान समाधान है, तो फिर उसको समस्या को लेकर के जब आप जैसे लोग बैठे हुए हैं जीवन में, तो सुगमता क्यों नहीं हासिल कर लिया? ये जो झिझक है ये सर में, मुझे नहीं लगता बहुत हमारे काम की है।
0: सर इसीलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ और इसीलिए आप भी अपना कीमती समय दे रहे हैं कि हम
1: जी,
0: अपनी बात पहुँचा सकें।
1: लोगों तक।
0: क्योंकि देखिए इंसान कहीं ना कहीं तो जाता ही है, डिस्कस तो किसी ना किसी से करता ही
1: करता
0: है, अब
1: है।
0: उसे ट्रीटमेंट मिले या ना मिले। अगर हम ये कहें कि आप डिस्कस भी करो, आपकी सीक्रेसी यानी आपकी गोपनीयता को आपकी गोपनीयता ही रखा जाएगा और आपको इलाज भी मिलेगा, कहीं आपकी कोई भी बात लीक नहीं होगी, और सेटिस्फेक्शन नए जमाने के हिसाब से आपको पूरा मिलेगा, तो इंसान समझेगा। वही मकसद है सर।
1: तो अब इसमें चलते चलते हम थोड़ा समय चूंकि सीमित रह गया है, तो अब मैं थोड़ी सी इसको आधुनिकता से जोड़ता हूँ कि आपने कहा कि कोरोना के समय कुछ चीज़ें बढ़ी, ये उसका वर्क फ्रॉम होम काम हो सकता है,
0: सर
1: बच्चों की आजकल जो छोटे छोटे बच्चों हैं, ये पहले प्रॉब्लम थोड़ा ओल्ड एज के साथ 40+ के बाद मानी जाती थी क्योंकि भागदौड़, लेकिन आजकल बच्चों की कंप्यूटर के साथ उसके साथ सिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, स्टडी का प्रेशर भी आ गया है, तो कम एज में भी ये प्रॉब्लम फाइल्स और फिस्टुला की आ रही है, और चूंकि सिटिंग उनकी ज़्यादा है तो स्ट्रेस भी है। क्या आपको ऐसा लगता है
0: सर
1: कि बड़े
0: आपने
1: मतलब पेरेंट्स को भी बड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए, बच्चों से पूछना चाहिए कि क्या ऐसी कोई समस्या तो नहीं है इसमें?
0: बिल्कुल सर आपने एक्चुअली जो सवाल पूछा है ना वो इतना गहरा है कि अगर इसकी एक एक तह पे जाऊंगा तो हो सकता है कि 3-4 घंटे डिस्कशन में लग जाएं।
1: जी,
0: कोरोना की वजह से, वर्क फ्रॉम होम की वजह से ये बीमारियां फिस्टुला, फिसर, पाइल्स निश्चित बढ़ी हैं। और एक मेरा ऑब्जर्वेशन है और कई डॉक्टर्स का ऑब्जर्वेशन है, हालांकि अभी ये डॉक्यूमेंटेड नहीं
1: नोक
0: है,
1: जी।
0: कि पाइलोनाइडल साइनस जिसमें कि पीछे रीढ़ की हड्डी के नीचे एक पस का पॉकेट
1: पस
0: बन जाता
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: उसके भीतर बाल चले जाते हैं, वो कोरोना के टाइम से और उसके बाद से काफ़ी बढ़े हैं। और स्पेसिफिकली सरप्राइजिंगली आश्चर्यजनक रूप से फीमेल्स में भी बढ़े हैं, जबकि फीमेल्स में यह कम होता
1: कम
0: था क्योंकि
1: होता।
0: उनके बाल कम होते थे और मुलायम होते हैं। तो इसका फर्क तो सर पड़ता है, और इसीलिए जरूरी है कि हम पहला सुख निरोगी काया तभी होगा जब हम अपने आप पे ध्यान देंगे, और यह
1: ध्यान
0: देना
1: देंगे।
0: पड़ेगा, तभी शायद आपने सवाल पूछा है कि ऐसे चेंज आ रहे हैं, और तभी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा तो अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, कुछ
1: जी,
0: वॉक, कुछ एक्सरसाइज, कुछ डाइट
1: कुछ
0: मैनेजमेंट कुछ
1: व्यायाम,
0: करना चाहिए।
1: मतलब हम सिर्फ फास्ट फूड पर
0: नहीं सर
1: या मार्केट फूड पर नहीं रह सकते, उसमें घर की चीज़ें अंकुरित हैं वो कर ले, मतलब जीवन के लिए मेहनत हम कर रहे हैं तो हम कुछ खाने और अपने शरीर के लिए मेहनत के लिए समय
0: करना
1: रखें,
0: चाहिए सर,
1: करना
0: और जब
1: चाहिए।
0: आप करते हैं ना तो उसमें भी मजा आता है, नहीं तो फिर आपको बैठे बैठे अजीब होता
1: जी
0: है।
1: जी जी बात काफ़ी हो गई, कुछ और चलते चलते कहना चाहें इसमें?
0: सर कहना तो मैं चाहूंगा कि पहला तो यह है कि कोई भी दिक्कत हो, जहां तक आज के संबंधित विषय का सवाल है,
1: हाँ।
0: कि आप संपर्क करें। जो पहले कहीं होता था वो क्षार सूत्र से लेके सिंपल सर्जरी से लेके नॉर्मल सर्जरी से लेके लेप्रोस्कोपी से लेके लेजर तक वो हम सब करते हैं, हमको किसी ने मना नहीं किया और सब कुछ हमने पढ़ा है, तो आप आइए। अल्ट्रा मॉडर्न सीखने का मतलब ही यह है कि वो इम्पॉर्टेंट है।
1: जी जी
0: दूसरा, संकोच से कभी

0: काम नहीं चलते। और सीक्रेसी मेंटेन रखना हमारे प्रोफेशन का नेचर है,
1: हिस्सा है।
0: हमसे तो आके लोग क्या क्या नहीं बोल जाते पर किसी को नहीं पता होता, तो ये हमारे जहन में ईश्वर देता है। और बाकी यह है कि मैं इतना ही कहूँगा कि थोड़े से डाइट, थोड़ी सी लाइफ मॉडिफिकेशन कीजिए, खुश रहिए, समाज में रहिए, एक दूसरे के लिए भी रहिए।
1: जी जी जी

0: फिस्टुला और हिमोरॉइड्स की बात की, तो इनके साथ हम क्यों जिए, दर्द के साथ क्यों जिए, सहूलियतें पैदा करें, और जो विज्ञान के हमारे आविष्कार हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, उनके साथ हम अपना एक मित्रता बढ़ाएं तो हमें फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर साहब, आप आए और जानकारी दी हमारे श्रोताओं के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर, थैंक यू,
0: नमस्कार
1: नमस्कार।
0: सर, ये आपका सर्टिफिकेट।
2: स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सर्जरी में लेजर का प्रयोग, इस विषय पर भेंट वार्ता। वार्ताकार थे डॉक्टर ब्रजेंद्र तिवारी और इनसे बातचीत कर रहे थे ओपी सिंह। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

धरती फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप आए बाहर आई, इस फिल्म का शीर्षक गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज़ में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अलका याग्निक और साथियों को अभी आप सुन रहे थे आदमी खिलौना है फिल्म के लिए। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आंधी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

अंगूर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले के स्वर में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अनपढ़ फिल्म से, स्वर है लता मंगेशकर का।

अनीता फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं रूना लैला की आवाज में। फिल्म का नाम है घरौंदा।

अमर अकबर एंथोनी। इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मुकेश, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत को लिखा था आनंद बख्श ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: मजबूर फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: बीता जैसे उमरिया बीती, तुम बिन एक दिन ऐसे बीता।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजने को है और आइए अब आपको सुनवाते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति है रश्मि शर्मा की।

तो आखिर आप भी आ ही गए। तो जनाब, जब हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ा ही दी हैं, तो फिर सोचना कैसा।

तो आखिर आप भी आ ही गए। तो जनाब, जब हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ा ही दी हैं, तो फिर सोचना कैसा।

0: अरे अरे घबराइए मत, मैं बीमार नहीं आपका इलाज करने आई हूँ, क्योंकि अब आपका इलाज होगा आप ही के पसंदीदा गीतों के साथ और हमारे साथ की गई प्यारी प्यारी बातों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन श्रोता हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हेलो आकाशवाणी,
1: परम माननीय रश्मि दीदी, शादा सप्रेम, प्यार से नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: दीदी मैं अच्छा हूँ, आपका आशीर्वाद है, बाकी बिहारी कृपा है, घर परिवार में सब लोग आनंद से रहते हुए रेडियो सुनता रहता हूँ और आप लोगों से वार्तालाप करने का इच्छुक रहता हूँ। जब फोन लग जाता है आपसे वार्तालाप हो जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुकून महसूस होता और दिन मेरा बन जाता है।
0: जी बिल्कुल, दिन हमारा भी बन जाता है जब हमारे श्रोताओं के हमें फोन कॉल्स मिलते हैं और निश्चित रूप से हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपके फोन कॉल्स का हमेशा से इंतजार रहा है और रहेगा।
1: जी जी जी जिस कार्यक्रम को आप प्रस्तुत करती हैं वो कार्यक्रम इतना सजीव और जीवंत हो जाता है, कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं, बरबस श्रोता इस कार्यक्रम को सुनने के लिए विवश हो जाते हैं, इतना आकर्षक रहता है आपका ऐसी जादू भरी आवाज और जादू भरी प्रस्तुति।
0: बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी, प्रजापति जी, और निश्चित रूप से ये सब जो भी मैं कर पाती हूँ ये सब आप लोगों का ही स्नेह है जो आप मुझे दे रहे हैं। और निश्चित रूप से जब हमारे श्रोता हमसे जुड़ते हैं, चाहे वो फोन इन कार्यक्रम हो या गीत बात SMS हो, तो एक अलग ऊर्जा हमें भी अनुभव होता है उसका। और बस ये जो हमारा और आपका संबंध है ये ऐसे ही चलता रहे, हमारे श्रोता हमसे सदा जुड़े रहे।
1: जी जी जी बिल्कुल, हम तो सदा आपसे जुड़े रहते हैं और ऐसा उम्मीद करते हैं कि हम जो ही आपसे वार्तालाप करते रहें, कार्यक्रम सुनते रहें और अच्छे अच्छे कार्यक्रम जो प्रस्तुत करते हैं उसका आनंद उठाते रहें।
0: बिल्कुल, और आज क्या सुनना चाहेंगे बताइए।
1: आज दीदी जैसा कि आपको श्रोताओं को ज्ञात है कि 11 जुलाई 2026 को बहुत ही प्रसिद्ध गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित एस जानकी अम्मा का निधन हो गया, वो पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। इनका जन्म 23 अप्रैल 1938 को हुआ था और 20 भाषाओं में इन्होंने लगभग 48,000 गीत गाए, जो उनकी आवाज को, उनकी स्वर में इतने अच्छे और मधुर गीत हैं कि जो सुनते जाइए दिल नहीं भरता है। बहुत ही अच्छी गायिका थी, उन्हें मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है नाचे मयूरी।
0: कौन सा गीत सुनेंगे नाचे मयूर का?
1: यस जानकी अम्मा ने इस गीत में स्वर दिया है अपना। पग पगम सुरतालिका संगम, बहुत ही सुरीला मधुर गीत है, एस जानकी अम्मा ने गीत गाया है और इस गीत के माध्यम से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ आकाशवाणी मथुरा वृंदावन के माध्यम से।
0: जी आपने फोन किया है इसके लिए धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: हाँ मैडम
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: जी, सर
0: कहाँ से
1: बोल रहा हूँ, जनूसर
0: जी? तो आपके फोन आते रहते हैं कार्यक्रम में या पहली बार फोन किया है?
1: से। नहीं मैडम जी, पहली बार ही लगा है।
0: तो बताइए क्या करते हैं आप, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: उसमें करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, घरेलू का।
0: अच्छा, तो चलिए, काम काम ही होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। और वैसे भी कहा जाता है वर्क इज वर्शिप, तो बस काम को श्रद्धा के साथ करते जाइए और देखिए उसका फल कितना मीठा होता है। लेकिन कर्म हम सभी को करना जरूर चाहिए। आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: सुना दीजिए कुछ पत्नी पसंद का। जी
0: अच्छा, हमारी पसंद का सुनेंगे।
1: जी
0: चलिए, आपने कॉल किया इसके लिए धन्यवाद। और सुनिए ये गीत।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दीदी, सुभाष घर का बड़ाई माधुर्य माधुर्य स्नेह भरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।
0: बिल्कुल, आपका प्रणाम स्वीकार किया और आपका स्नेह, आपका प्रणाम, आपका प्रेम सब कुछ स्वीकार किया। और इसके साथ ही स्वीकार हम ये भी करना चाहेंगे कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: देखिए, अजीत फूल की जिंदगानी भी क्या है, अभी अभी हंस रहा था अभी रो रहा है। देखिए, फूल कितना सुंदर होता है, जब अपनी डाली पे लहराता है, अपनी खुशबू से सबको मोहित करता रहता है,
0: बिल्कुल
1: और जब जब उसे कोई राहगीर तोड़ के ले जाता है और उसे सूंघ के फेंक देता है और लोग राह चलते उसे कुचलते हुए चले जाते हैं, तो बहुत दुख होता है।
0: जी, बिल्कुल। और ये एक सीख देने वाली भी बात है कि,
1: जी,
0: है ना?
1: देखिए, ऐसे ही इंसान का ये जीवन होता है, ये क्षणभंगुर है, पता नहीं किस समय इंसान के जीवन में क्या लीला हो जाए।
0: बिल्कुल, और लीला तो ईश्वर की देन है, जीवन मरण सब कुछ उन्हीं के हाथ है। जब
1: जी
0: आए
1: हाँ,
0: हैं तो
1: देखिए
0: जाना भी निश्चित है, तो उस
1: देखिए
0: निश्चितता से भी नहीं डरना है। हाँ
1: जी, ईश्वर को जाने की तिथि तो वहां निश्चित हो गई है, हर
0: हाँ
1: इंसान को जाना है, बस
0: जी
1: ये कि या तो तत्काल में यह हो जाए, यह जो है

0: बेटिंग में दे दे।
1: जी जी
0: ये तो कड़वा सच है कि हर इंसान को इस दुनिया से जाना है।
1: बिल्कुल। और फिलहाल आपकी पसंद जानना चाहूंगी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: जी आज आपसे गुजारिश करेंगे, बड़ा ही प्यारा बहुत खूबसूरत गाना है फिल्म है खामोशी।
1: खामोशी फिल्म का कौन सा गीत सुनेंगे?
0: हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू और प्यार से छूके से रिश्तों का इल्जाम न दो।
1: ठीक है, सुनिए अपने पसंद का ये गीत।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो जी, नमस्कार
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: जी। मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरौंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, एमपी से।
0: जी कैसे हैं हारून जी?
1: बस बहुत अच्छे हैं। और आपके मिजाज कैसे हैं?
0: बिल्कुल मिजाज बढ़िया है और हम उम्मीद करते हैं आपके भी आपके परिवार के साथ में मिजाज अच्छे ही होंगे। आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: जी, काफी समय हो गया था, मैं 2-3 हफ्ते से फोन लगा रहा था, लेकिन लिंक जा रही थी। आज पहली बार लिंक में फोन उठ गया, लेकिन 5-5 लिंक चली जाती है, फोन नहीं उठा।
0: जी चलिए, अब आपका फोन लग गया है, आपसे बात भी हो रही है, ठीक है?
1: जी,
0: तो बताइए फरमाइश।
1: फिल्म का नाम है कुली नंबर 1, कम सुनवा देना।

0: हेलो आकाशवाणी
1: आदरणीय दीदी को सादर सुप्रीम प्यार भरा नमस्कार।
0: जी, नमस्कार। और कौन बोल रहे हैं आप, परिचय दे दीजिए।
1: दीदी आपका जाना पहचाना पुराना ब्रिज रेडियो श्रोता मित्र राजू लवानिया कनौली से बोल रहा हूँ। दीदी
0: कैसे हैं राजू जी?
1: बिल्कुल ठीक हैं, और हमारी आकाशवाणी टीम और हमारी दीदी कैसी हैं?
0: बिल्कुल बढ़िया, सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आनंदित हैं। और आपकी आवाज़ सुनकर हमारे जो पुराने श्रोता हमसे हमेशा जो कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं, उनकी आवाज़ें सुनकर तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है। तो
1: ये कार्यक्रम तो वैसे भी बहुत पॉपुलर है, इससे तो बहुत सारे श्रोताओं का जुड़ाव है, लगाव है और जुड़े भी रहते हैं श्रोतागण।
0: जी
1: इस कार्यक्रम के बारे में कुछ सुझाव हमने दिए थे, इसमें जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है अभी नया नया,
0: जी
1: श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ,
0: जी
1: इन किन्हीं परिस्थितियों के कारण हमारे सुझाव अभी एक्सेप्ट नहीं हुए हैं, और उम्मीद करें भविष्य में जब भी संभव होगा तो ये सुझाव भी
0: जी जी
1: एक्सेप्ट।
0: देखिए, वो वाले कार्यक्रम में आप उसकी बात कीजिए, मेरे कार्यक्रम में आप मेरे कार्यक्रम की बात कीजिए।
1: तुम्हारे कार्यक्रम का तो जवाब ही नहीं है दीदी।

0: भी आप आती हैं, मैंने पहले भी कहा और हमेशा कहेंगे कि आपका प्रोग्राम करने का जो अंदाज है बहुत ही मस्त और इंटरेस्टिंग रहता है।
1: जी जी बहुत बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, और उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आपके फ़ोन कॉल्स, आपके संदेश हम तक पहुंचते रहेंगे और हम भी अपने कार्यक्रम को और उम्दा और बेहतर बनाने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे।
0: हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, हमारी दीदी इसी तरह इस प्रोग्राम में आती रहेंगी और बढ़िया से बढ़िया इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करती रहेंगी।
1: जी बिल्कुल, प्रयास जारी है और हमेशा रहेगा। तो आज बता दीजिए क्या सुनना चाहेंगे।
0: आज फिल्म का नाम है दीदी संग्राम।
1: संग्राम फिल्म से कौन सा गीत सुनेंगे?
0: इसमें आवाज है मनोहर की और अलका याग्निक की, बातों से तेरी मुझे ऐसा लगा।
1: जी, बातों से तेरी मुझे ऐसा लगा, कैसा लगा
0: ये गाना सुन के पता चल जाएगा।
1: चलिए, आपने फोन किया इसके लिए धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी रश्मि शर्मा। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत आधारित विशेष कार्यक्रम। आज का शीर्षक है सकारात्मक सोच।

कार्यक्रम को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं मैं यानी दुर्गेश भास्कर। तो सबसे पहले कीजिए मेरा हाथ जोड़कर प्यार भरा नमस्कार स्वीकार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति की जो न दिखाई देती है न छुई जा सकती है लेकिन जीवन की हर दिशा बदल सकती है। वह शक्ति है सकारात्मक सोच। कहते हैं जैसी सोच वैसा जीवन। यदि विचार अच्छे हों तो कठिन परिस्थितियां भी अवसर बन जाती हैं।

कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति उम्मीद नहीं छोड़ता वही आगे बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। हर सुबह अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, रुकिए नहीं, बस आगे बढ़ते जाइए।

सकारात्मक सोच का अर्थ समस्याओं से आंखें मूंद लेना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में समाधान खोजने की कोशिश करना है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी असफलता, निराशा और कठिनाई

श्रोताओं, अब मैं आपको एक सकारात्मक सोच पर छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक किसान के घोड़े के भाग जाने पर लोगों ने कहा, बहुत बुरा हुआ। किसान बोला, देखते हैं। कुछ दिनों बाद कई जंगली घोड़ों के साथ लौट आया वह घोड़ा। लोग बोले, बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर बोला, देखते हैं। किसान का बेटा एक घोड़े से गिरकर घायल हो गया। लोग बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान ने फिर कहा, देखते हैं। कुछ समय बाद युद्ध छिड़ गया और गांव के सभी युवकों को सेना में भेज दिया गया, लेकिन घायल होने के कारण किसान का बेटा बच गया। इस कहानी से सीख मिलती है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई सकारात्मक संभावना छिपी होती है। जरूरत है तो बस हमें उसे समझने की, क्योंकि जिंदगी में रुकने की कोई जरूरत नहीं। हर कदम जिंदगी में बस प्यार ही प्यार होना चाहिए।

श्रोताओ, हर दिन की शुरुआत ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और शुक्राने के साथ करें। अपनी तुलना दूसरों से नहीं, स्वयं से करें। अच्छे लोगों की संगति अपनाएं। प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें। नियमित व्यायाम और योग ध्यान करें। छोटी छोटी सफलताओं का भी आनंद लें। असफलता को सीख माने, हार नहीं। याद रखिए, सूरज हर शाम ढलता

जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होती, लेकिन हमारी सोच हमेशा हमारे हाथ में होती है। सकारात्मक सोच हमें आत्मविश्वास, धैर्य और नई ऊर्जा देती है। इसी धैर्य, ऊर्जा और आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखें और सकारात्मक सोचते रहें।

श्रोताओ, तूफान तो आता है और आके चला भी जाता है, हमें उस तूफान में डगमगाना नहीं है, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ डट के उस तूफान का, उस खराब समय का मुकाबला करना है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उन्हें बेहतरीन तरीके से पार करते हैं और उसे उसको पार करने की क्षमता भी वही बेहतरीन लोग, सकारात्मक सोच वाले लोग रखते हैं। श्रोताओं, जो सकारात्मक सोचते हैं वो अपने जिंदगी के सफर को सुहाना और सुंदर बना लेते हैं। इसलिए मैं तो बस यही कहूंगी कि हमेशा सकारात्मक सोच रखें और अपने जीवन को सुंदर और सकारात्मकता के साथ सुहाना भी बनाएं।

आधारित विशेष कार्यक्रम जिसका शीर्षक था सकारात्मक सोच। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और SMS।

समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और संबंध हमेशा साथ देते हैं। इसी शुभ संदेश के साथ मैं दुर्गेश भास्कर

साथ देते हैं। इसी शुभ संदेश के साथ मैं दुर्गेश भास्कर कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का करती हूँ स्वागत सत्कार अभिनंदन। श्रोताओं, 11:45 का पहला संदेश हमें मिला है। बटिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित लक्की तनिया का, और कार्यक्रम में इसके बाद अगला संदेश हमसे जुड़ रहा है। धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदलाल पटवा, सुनीता हर्ष, विनीत कुमारी कृष्टि। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से, शशिकला सुमेध सहदेव। बुलढाणा बंडसिंगी महाराष्ट्र से अमोल शोभाताई, दीपाली और श्लोक का संदेश मिला। आप हैं भाभी नीमगांव महाराष्ट्र से, राम गोदकी, उषा वैष्णवी, पूनव युवराज। अगले संदेश करता है महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला आरती, गौरी, ओम कुमार मोताला महाराष्ट्र से। अगले संदेश करता है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र और नोखेलाल। चंडीगढ़ से सतीश जनेजा और बिमला अनेजा का संदेश मिला। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें लिखा है जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल प्रियल दिव्यांशी। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं कार्यक्रम में। एमडी सब्बीर परवाना, एमडी साजिद अली, साजिद अली जाहिद शाहिद, मधुबनी बिहार से। कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका, पुनावले, पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका और विशाखा। मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीर बेगम अंसारी, मोहम्मद आयान और मोहम्मद उस्मान गंज डुंडवारा से लिख रहे हैं संदेश। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, इंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पू भाटिया का संदेश मिला। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से हमें संदेश लिखा है पवन कुमार, प्रभा देवी, लक्की बिक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सैन ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं आप सभी की फरमाइश का कार्यक्रम का ये पहला गीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, फिल्म का नाम है दुश्मन। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और इस गीत को धुन से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, इस गीत को सुनना चाहा था पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता की श्रुताशु अर्णव और सत्यमानंद ने। बोड़ा काशी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत ने भी इसी गीत को सुनना चाहा था। इसी गीत की हमसे फरमाइश लिख भेजी थी कशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश भारती जानवी वैष्णवी ने। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें लिख भेजा है सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू, तरुण श्रीनिका श्रीनिजा, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। आप हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित खुशी राजस्थान से। अगले संदेश करता है बनस्थीपुरम हैदराबाद से दोरनाला बालाजी, रेणुका बद्री, हरिडी लोकेश साई कृपा। आप हैं दादा बाबू रोड गिरीडीह झारखंड से, मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन बाबू, अहद मिक्फ्रा, बेबी चाहत। अगला संदेश हमें लिख भेजा है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से, जुनेद मुजावर, सबिया मिखाइल और जैनब मुजावर का संदेश मिला। बुलडाणा महाराष्ट्र से वासुदेव बोधबड़े, अनिता और रमेश राव। आप हैं जगदीश रंजूबाई, युवराज सेवांगी, एमपी रतलाम से। कार्यक्रम में अगला संदेश कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर और विजय लक्ष्मी सावनकर का संदेश। गणेशपुर गंजडंडवारा एटा यूपी से एम फारूक शेख, शेख शमा, परवीन, साइना, सरफराज, गुलफराज और बेबी मुस्कान। कोटवा नारायणपुर बाबा बट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित, हैप्पी दुविहा, नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल का संदेश मिला। आराधना रेडियो श्रोता संघ मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइडे, वसंतराज पीएस नापकर, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। दादरी गेट भिवानी से हमें संदेश लिख भेजा है कृष्ण मेहरा, किरण कपिल, कुणाल मेहरा ने। अगले संदेश करता है उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल, अजीत, आयुष, नंदिनी, धामदा ग्राम सुखरी कला से। कोहा बिलाई से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, आशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल। बंडू लोहार पॉपलेट।

माया चंद्रकला देवीदास पोपलट महाराष्ट्र से। अगले संदेश करता है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इपलाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकमल और प्रवीण। कारी राय कारी वीना कारी पुंजराज आरती आकर्षक जयश्री हमें लिख रहे हैं बिहार से। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम है बलमा। शब्द रचना समीर की है और इस गीत को धुन से बनाया है नदीम श्रवण ने।

इस गीत की फरमाइश करता है हिंगोली महाराष्ट्र से सहाजी बोड़खे नंदा और हनुमान बोकड़े। जजर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत मयंक भाटिया का भी फरमाइश मिली है इस गीत के लिए। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी कल्पित, बेबी गर्वी। अगले संदेश करता है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश मैंडी, सौरभ साइना और निवान शर्मा।

बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिवेंद्र भूषण संस्कृति पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी कुलदीप कंवल, नवीन सिंह ज्योति सिंह श्वेता स्वाति सुशांत चुलबुल कामेश्वर प्रदीप राजबहादुर शंभू डुग्गू हमें लिख रहे हैं राजनगर बिहार से, धनौली वाला से संदेश लिखा है निसार सलमानी नौशाद बेबी आलिया और आयन बाबू ने। कार्यक्रम में अगला संदेश मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश गौरव सरिमा हर्ष आहूजा।

कार्यक्रम में अगला संदेश हमें लिख भेजा है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन्डिस गैट्रो रोजी डिकेस्ट्रो पर्ल और विसिल का। बक्सर बिहार से हमें संदेश लिख रहे हैं शरफरुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी और डॉक्टर सोनम अधीवा। आप हैं कोयते वस्ती पुनावले से अजय सोनवने करिश्मा अबिका और साइशा। श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार अबिका सानू कुमार और अर्चना कुमार का संदेश मिला। राजकोट से जैमिनी जैन हेतल कृष्णा और राकेश जैन। बंडिंगखेड़ा पंजाब से हमें संदेश लिख भेजा है मिट्टू टॉमस पिंकी लवली और आरिता आरती अरुणा ने। मधुबनी बिहार से एक और श्रोता जुड़ चुके हैं राजकुमार गुप्ता विनीता रवि गौरव और एवं इनके मित्रगण। सीतामढ़ी महावीर स्थान से प्रभात अरविंद कुमार और मंटू निक्की का संदेश मिला। पप्पू राजा खुशदिल संगीता रानी पप्पू अनीता आरजू हसमुख लाल शक्ति बुलबुल संजीव बंटी और इनका पूरा खुशदिल परिवार हमें लिख रहा है सामना शहर पंजाब से। बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति प्रहलाद राजेंद्र उमेश प्रमिला का संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ से। एक और श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगला बेन राजेंद्र जी पद्मा टॉकीज नेपानगर एमपी से। पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा सुनीता शमी अनद और पोत्रा गुरशवत का संदेश मिला। नादेड़ से प्रकाश जैन लातुर से संगीता जैन सूरज जैन और पी आर जैन। कार्यक्रम में अगले संदेश करता है सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेबाड़ और चंद्रकला रेबाड़। गोलू कांगड़ा सागर सीताराम आंशिका तमन्ना हमें लिख रही हैं गांव खरकड़ा चौबीसी से। अगले संदेश करता भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा कपिल ईसान और पूजा परिहार। आप हैं बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव सार्थक शौर्य और समर्थ। श्री गुणवंत श्रीवास छत्तीसगढ़ से अगले संदेश करता है नादेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़ ओमकार गायकवाड़ और साईं का संदेश मिला। समस्तीपुर बिहार से हमें संदेश लिखा है मीरा सिंह ज्योति रोहतास सोनम और अनामिका ने। आप हैं महाराष्ट्र से लक्ष्मण कल्पना ताई शैलेश प्रतीक्षा स्वप्निल रक्षिता रियांश और पूरा लोखंडे परिवार। करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानू गुला गोपाल माहेश्वरी प्रवालिका विष्णुवर्धन और विघ्नेश। प्रशांत शिंदे सुनीता यशराज ऋषि कृष्णा घोड़के पंडरपुर सिटी से। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत कुमार सानू और अलका याग्निक माफ कीजिएगा मोहम्मद रफी और सावन कल्याणपुर की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी शब्द रचना हसरत जयपुरी की है और इस गीत को धुन से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

इस गीत को सुनना चाहा था कोल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज शाहिन सोनू निप्पी अफजल मल्लिक ने। कार्यक्रम में इसी गीत की फरमाइश हमसे लिख भेजी थी गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना आशीष चैतन्य मेघा पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु रिधान। अगले संदेश करता है आदारनाथ घाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा चांदनी भूपेश और दीपेश। आप हैं, आपने अपना ना नाम भेजा है, बस हमें उद्घोषिका महोदय जी नमस्कार करके भेज दिया है। चलिए कोई बात नहीं। यवतमाल से जयराम सिंघड़कर दिशांत और अर्पिता का संदेश मिला। जाफराबाद से हमें संदेश लिख रहे हैं सुधाकर प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत, संचित प्रथमेश प्रणाली, सर्वत सानवी और कल्पना। गमरिया जमशेदपुर से रोहन आर जायसवाल, बबुरी बाजार चंदौली से विजय सरोज, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू देवंती और चकिया बाजार से सुंदर सुमन। आप हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौसीर नौरीन आसना मोहम्मद कैफ। अगले संदेश करता है राजेश सैन सुरेखा शुभम अक्षय खंडवा से। राधेश्याम शर्मा इंदिरा सार्थक हमें लिख रही हैं जिला सिरसा हांडीखेड़ा से। अगला संदेश हमें मिला है गांधीनगर गुजरात से सुरेश मंजुला विशाल और निशा का। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा लक्ष्य लाड़ो, नानक चंद्र शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोयल और डुग्गू भाविका का संदेश। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी अर्चना हरविंदर सिंह चावला बानी लोकेश पायल बेबी वैदेही जोशी बेबी हसन और अंकित जोशी।

अजीज भाई, मतीम भाई, शेख चांद फारूक, फूल वाले, मोसा करीम, सैयद खलील हमें लिख रहे हैं तेलंगाना से। गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, बिमला अमरा अमरजीत, सुंदर योगेश दीपक और कुमारी पूजा। डेर पाटन गुजरात से धीरव बीरवारी का संदेश मिला। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहपकर, निर्मला विशाल, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान और आशीष। एक और श्रोता हमसे जुड़ गए हैं, शेरवानी स्कूल गंज डंडवारा यूपी से आफताब अंसारी, रियाज मोहम्मद अनवर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा परिधि मायरा वासिम महाराष्ट्र से। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं आप सभी की फरमाइश का कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, फिल्म का नाम है मन मौजी। इस गीत को लिखा है राजेंद्र किशन ने और इस गीत को संगीत से संवारा है मदन मोहन ने।

मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि वकील निनाजी और स्वप्निल। गंज डुंडवारा से शमशुल कुमार राही, शारीन फातिमा, अदनान फैजान, अन्नू उस्मान और कलीमन।

नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा, असद अरहाम और समस्त हाशमी परिवार।

कृष्ण कुमार, भूपत कुमार, राधा तंवर, विक्रम अर्चना और साक्षी रवि हमें संदेश लिख रहे हैं राजस्थान से।

महाराष्ट्र से सचुतन धाणे, वाल्मीकि, नीना जी और स्वप्निल धाणे। 21 के साथ कार्यक्रम गीत बात और SMS कार्यक्रम को संपन्न करने की हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना। किसान भाइयों, इस मंगलवार दिनांक 14 जुलाई 2026 को शाम 6:15 से 30 मिनट अवधि के हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में इस बार आज का विषय है बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग, बचाव और उपचार। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर शंकर कुमार सिंह, विषय विशेषज्ञ वेटनरी कॉलेज मथुरा।

किसान भाइयों, यदि आप बरसात के मौसम में पशुओं से होने वाले रोग जैसे गलघोंटू, खुरपका, मुंहपका, अफरा जैसे रोगों के कारण एवं निवारण की जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर शंकर कुमार सिंह, विषय विशेषज्ञ, वेटनरी कॉलेज मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके या हमारे मोबाइल नंबर 9412-2555-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं। कार्यक्रम का समय होगा मंगलवार शाम 6:15 से शाम 6:45 तक। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है ब्रजलोक गीत कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं पूनम।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से?
5: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
6: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
6: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
5: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
7: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
5: अरे
3: काट दिया।
7: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
7: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
8: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र FM 102.2 MHz पर। इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोक गीतों का। आज की कलाकार है पूनम, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला ब्रज लोक गीत पूनम के ही स्वर में।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ. भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है.
1: आराम से मैडम.
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है. नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
3: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं. इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं.

0: मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोक गीतों का। आज की कलाकार हैं पूनम, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला ब्रज लोक गीत पूनम के ही स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे ब्रज लोकगीत कार्यक्रम। आज की कलाकार थी पूनम। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 1 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आया है। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60

0: 8000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% एमएसएमई आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
1: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के तीन पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। वियतनाम के फोकवोक द्वीप के पास हुई स्पीडबोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कुनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े दो टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी ही देर में यानी अपराह्न 1:15 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा कुपोषण मुक्त परिवार बनाने में महिलाओं की भूमिका पर। इसके अलावा चर्चा होगी गर्भवती महिलाओं में एनीमिया विषय पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे आशियाना क्रम में वार्ता इको फ्रेंडली होम। वार्ताकार होंगी अल्पना प्रधान। इसी कार्यक्रम में महिलाएं जानेंगी कुछ घरेलू टिप्स और आनंद ले सकेंगी फिल्म संगीत का। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी अंतिम गौतम। NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे अपराह्न 2:30 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी आप सुन सकेंगे संध्या 5:30 पर। आज के इस कार्यक्रम में आज की बात होगी AI के दौर में युवाओं के लिए

0: ये नए अवसर विषय पर। इसके अलावा आज की बात आप सुन सकेंगे, करियर चुनने में पहले किन बातों का रखें ध्यान पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे युवा वार्ता, समाज सेवा की भावना और युवा मानसिकता। वार्ताकार होंगी वीना शर्मा। फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी का समय रहेगा संध्या 6:15 पर। आज का हेलो किसान वाणी कार्यक्रम होगा बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग बचाव एवं उपचार पर आधारित। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर शंकर कुमार सिंह। कार्यक्रम संध्या वंदन का समय रहेगा संध्या 6:45 पर। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भक्त कथा, भक्त कौमुदी देवी। कथाकार होंगी नीरू अग्रवाल। समय रहेगा संध्या 7:05 पर। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी सुना जा सकेगा संध्या 7:31 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:00 और कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुन सकेंगे रात्रि 8:30 पर। कार्यक्रम न्यूज एट 9 का समय रहेगा रात्रि 9:00। चित्रपट संगीत सुहाने तराने का आनंद श्रोता लेंगे रात्रि 9:15 पर। कार्यक्रम मनी टॉक आप सुन सकेंगे रात्रि 9:30 पर और कार्यक्रम मंथन का समय रहेगा रात्रि 9:45 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण का समय रहेगा रात्रि 10:00। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रुद्रवाणी वीणा वादन आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। कलाकार होंगे श्री गजाधर पाठक, राग होगा जोग। अभी तक आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना। किसान भाइयों, इस मंगलवार यानी आज दिनांक 14 जुलाई 2026 को शाम 6:15 से 30 मिनट अवधि के हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में इस बार का विषय है बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग बचाव और उपचार। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर शंकर कुमार सिंह, विषय विशेषज्ञ वेटनरी कॉलेज मथुरा। किसान भाइयों, यदि आप बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग जैसे गलघोंटू, खुरपका, मुंहपका, अफरा जैसे रोगों के कारण एवं निवारण की जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर शंकर कुमार सिंह, विषय विशेषज्ञ वेटनरी कॉलेज मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके या हमारे मोबाइल नंबर 9412-2555-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं। कार्यक्रम का समय होगा मंगलवार शाम 6:15 से शाम 6:45 तक। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। मिलते हैं एक व्यावसायिक अंतराल के बाद।
4: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है समवेत स्वरों में देशभक्ति परक रचना।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशभक्ति परक रचना। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं अंतिम गौतम।

वंदलोक कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, किसी ने क्या खूब कहा है, एक महिला पूर्ण चक्र है जिसके भीतर सृजन, पोषण और परिवर्तन करने की शक्ति है। बहनों, निसंदेह महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं, नारी समाज की निर्माती शक्ति हैं, वह समाज का धारण पोषण व संवर्धन करती हैं। नारी अपने विभिन्न रूपों में सदैव मानव जाति के लिए त्याग, बलिदान, स्नेह, श्रद्धा और धैर्य, सहिष्णुता का जीवन बिताती हैं। एक सुंदर व खुशहाल परिवार का निर्माण करने में महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण और केंद्र बिंदु होती है।

महिलाएं न केवल परिवार की प्रत्येक जिम्मेदारी निभाती हैं, बल्कि परिवार की मुख्य आहार योजनाकार भी होती हैं। बल्कि वे बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी पोषण का ख्याल रखती हैं। उनका परिवार के प्रति समर्पण, सभी के स्वास्थ्य, परिवार को स्थायी रूप से कुपोषण मुक्त बनाता है। बहनों, कुपोषण मुक्त परिवार बनाने के लिए महिलाएं खुद इस प्रकार योगदान देती हैं। सबसे पहले बहनों, जब एक महिला गर्भवती होती है तो वह स्वयं अपना ख्याल रखकर पौष्टिक भोजन लेकर उसके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, चाहे उसे वह चीज़ अच्छी लगे या न लगे, फिर भी अपने बच्चे का पोषण का ख्याल रखते हुए वह पौष्टिक भोजन लेती है, जिसकी वजह से उसका जो बच्चा होता है वह स्वस्थ होता है। साथ ही साथ आहार पोषण प्रबंधन करके बहनों, महिलाएं जो होती हैं अपने घर की प्रबंधक होती हैं, खास करके रसोई की। महिलाएं घर की रसोई की कमान संभालती हैं। वे आसानी से उपलब्ध और स्थानीय पौष्टिक अनाजों, मौसमी सब्जियों व फलों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके एक संतुलित आहार योजना बनाती हैं। साथ ही साथ बहनों, बच्चों को, शिशुओं को स्तनपान करा के, बहनों स्तनपान के द्वारा भी, यहाँ तक कि जन्म से 2 साल तक बच्चे को स्तनपान कराना अति आवश्यक होता है। तो इस परिस्थिति में जब बहना स्तनपान कराती हैं तो बच्चों को पोषण मिलता है, अर्थात बच्चे भी कुपोषण से दूर रहते हैं। साथ ही साथ बहनों, भोजन का और पोषण का ध्यान रखते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साफ सफाई व स्वच्छता का ख्याल रखना। सिर्फ पौष्टिक भोजन से ही नहीं, बल्कि स्वच्छ वातावरण भी जरूरी होता है। महिलाओं द्वारा रसोई की साफ सफाई, स्वच्छ हाथों से भोजन का निर्माण करना, पीने के योग्य जो पानी है उसकी स्वच्छता का ख्याल रखना, स्वच्छता को बनाए रखना, इससे भी हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं और एक स्वस्थ व पोषण जीवन, पोषण युक्त अर्थात कुपोषण से बच सकते हैं। तो बहनों, इस चीज़ का आप सभी ख्याल रखती हैं, निसंदेह सभी को पता भी होता ही है। तो बहनों, लीजिए सुनवाते हैं अब आप सभी महिलाओं के लिए समर्पित ये प्यारा सा गीत।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ. भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है.
1: आराम से मैडम.
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है. नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
3: ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है. जी हाँ बहनों, हम सभी का एक सपना होता है कि हमारा प्यारा सा घर हो और इस घर को अधिक हसीन व सुंदर बनाने के लिए ज़रूरत होती है कि हम उसे अच्छे से डेकोरेट करें, अच्छे से सजाएं. जितना अच्छा हमारा घर सजा होगा, साफ़ सुथरा होगा, उतना ही हमें सुकून मिलेगा, उतना ही हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी. तो उसको सजाने के लिए हम प्राकृतिक तौर पर हम उसे सजा सकते हैं, जैसे कि सुंदर सुंदर फूलों को लगाकर. और सुंदर फूलों में हम लगा सकते हैं बहुत ही सुगंध वाले फूल, जिसमें कि गुलाब का है, बेला का है, जिससे आपका घर महकेगा तो सही, साथ ही साथ पर्यावरण की दृष्टि से भी वह बहुत ही लाभदायक होगा. तो ऐसे हम अपने घर को सजा सकते हैं फूलों के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा. इसकी और अधिक जानकारी के लिए हम आपके लिए आशियाना क्रम के अंतर्गत लेकर आए हैं ये वार्ता, इको फ्रेंडली होम. वार्ताकार हैं अल्पना प्रधान.
4: आशियाने का अर्थ है अपना घर, जिसमें हम रहते हैं. हर मनुष्य का सपना होता है कि वह अपने जीवन

काल में अपने सपनों का सुंदर से आशियाने का निर्माण करना चाहते हैं। आशियाने में रहने की सभी की इच्छा होती है, परंतु वह इस भागती हुई जिंदगी के दौर में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना आशियाना पर्यावरण के अनुकूल ही बनवाना चाहिए। आप यह जानते ही हैं कि आजकल विज्ञान दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा है, परंतु वह तरक्की पर्यावरण के लिए अभिशाप बनकर सीमित रह गई है। एक हरे भरे आशियाने में वृक्ष अत्यधिक उपयोगी साबित होते हैं। वृक्ष न सिर्फ हमारे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, बल्कि जीवन के लिए उपयोगी प्राणवायु भी उपलब्ध कराते हैं। परंतु आजकल यह देखने में आ रहा है कि आशियानों का निर्माण करने हेतु बड़े बड़े ठेकेदार व बिल्डर्स वनों का दोहन करते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मात्र 5.9% भूभाग ही बचे हैं। वृक्षों के दिन प्रतिदिन कम होने से वायुमंडल में जहरीली गैसों का उपसर्जन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो कि मनुष्य के लिए अत्यधिक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसलिए आज हम इस वार्ता के माध्यम से एक इको फ्रेंडली होम के निर्माण आदि के बारे में चर्चा करेंगे। इको फ्रेंडली होम में यह कहना अतिशोक्ति ही नहीं है, पेड़ पौधे और वनस्पतियों के कारण हम जीवित हैं। इसी वजह से इको फ्रेंडली होम में अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर अपने आशियानों को हरा भरा व सुंदर बनाया जा सकता है। इको फ्रेंडली घर का निर्माण करने के लिए काफ़ी बातों को मद्देनजर रखा जाता है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। फोटोवोल्टिक पीवी या सोलर एनर्जी, यह प्रणाली आजकल के घरों में ऊर्जा पैदा करने के काम आती है। जैसे घरों में सौर ऊर्जा से रेफ्रिजरेटर, सौर वाटर हीटर, सौर कुकर आदि का उपयोग किया जा रहा है। सौर ऊर्जा प्रणाली की तरह पवन ऊर्जा भी इसी में शामिल की जाती है। पवन ऊर्जा घरेलू इस्तेमाल के लिए उपयोग की जाती है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये दोनों ही प्रणाली हमारे पर्यावरण के लिए हितकारी साबित होती है। इसके बाद हम बात करते हैं पानी की, जो कि आजकल एक अत्यंत गंभीर समस्या बनती जा रही है। पानी की किल्लत तो भारत में हमेशा से रही है, परंतु अब भूगर्भ में दिन प्रतिदिन जल स्तर में कमी देखी जा रही है। इको फ्रेंडली होम में पानी की हर बूंद बचाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय सुनिश्चित किए जाते हैं, जैसे अंडरग्राउंड टैंक, वर्षा जल संग्रहण। इसका तात्पर्य यह है कि वर्षा के दिनों में जो पानी घरों की छतों पर इकट्ठा हो जाता है, वह पानी छत पर बनी नालियों में से अंडरग्राउंड टैंक में एकत्रित हो जाता है। उस पानी को हम पेड़ पौधों में डालने के लिए, साफ सफाई के लिए आधी कपड़े धोने हेतु उपयोग किया जाता है। एक ग्रीन हाउस में आम तौर पर यह देखा गया है कि उन घरों में कम से कम पानी का उपयोग किया जाता है, पानी को व्यर्थ में नहीं बहाया जाता है और पानी की रिसाइकलिंग कर उसे पुनः उपयोग में लाया जाता है। पर्याप्त पानी का उपयोग करने से हमारे आने वाले पीढ़ियों को पानी की किल्लत महसूस नहीं होगी। एक हरे भरे और स्मार्ट घर का पुनः नवीनीकरण तब होता है जब घरों में इंसुलेशन की जांच करें। एक उपयुक्त रूप से पृथक की छत और दीवारों को भी धधकते सूर्य के तहत अपने घर को शांत रख सकते हैं। ग्रीन हाउस घरों में पेंट्स का उपयोग ही हीट इंसुलेशन के लिए छतों पर करवाए जाते हैं। जैसे कम VOC वाले लेटेक्स पेंट का उपयोग अक्सर ग्रीन हाउस में देखा जाता है। इको फ्रेंडली घरों की दीवारों में इंसुलेशन करवाया जाता है, जो कि मौसम के हिसाब से हमें वायु प्रदान करवाता है, जैसे गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाता है। इस प्रकार से हम काफ़ी मात्रा में ऊर्जा
की बचत कर सकते हैं, वैसे ऊर्जा जो गर्मी के 9 महीनों के दौरान व्यर्थ में बर्बाद हो जाती है,

इससे हम बिजली का उपयोग कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से दो फायदे होंगे। ऊर्जा भी बचेगी, साथ ही साथ काफी मात्रा में हमारा धन भी बचेगा। इससे देश का भी विकास होगा, क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि शहरों में अथवा गांव में बिजली की कटौती कई घंटों तक प्रशासन को करवानी पड़ती है, क्योंकि बिजली इतनी उपयुक्त मात्रा में शहरों में या गांव में नहीं दी जा सकती है, क्योंकि काफ़ी भारी मात्रा में बिजली भारतीय रेल के लिए पहले से ही सुनिश्चित कर दी जाती है। और इसका अन्य कारण यह है कि आयात ज़्यादा और निर्यात कम। भारत की जनसंख्या ज़्यादा होने की बिजली की खपत ज़्यादा होने की वजह से सरकार को कीमतें भी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि यह सारी बिजली कोयले के द्वारा राष्ट्रीय थर्मल पावर स्टेशनों में बनाई जाती है। हमारे देश में 70% बिजली इन्हीं NTPCs में बनाई जाती है, जिसमें सरकार का काफ़ी धन खर्च हो जाता है। इसी खर्च को कम करने हेतु वैकल्पिक परियोजनाएं घरों में शामिल करनी चाहिए, जैसे घरों में अधिक से अधिक खिड़कियां बनवानी चाहिए, जिससे दिन में बिजली बचाई जा सके। घर के आसपास पेड़ पौधों की छाया होनी चाहिए, जिससे आपका घर शीतल बना रहे और आपको कम से कम डेजर्ट कूलर AC जैसे उपकरणों का उपयोग कम किया जा सके। कमरों में स्काई लाइट्स यानी प्रकृति से मिलने वाला प्रकाश भी दिन के दौरान बिजली का उपयोग कम करने में फायदेमंद है। आपसे ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको पता है कि ये सारी बिजली कोयले के उपयोग द्वारा विकसित की जाती है, जो हमारे पर्यावरण में बहुत प्रदूषण फैलाती है। हमारे पर्यावरण में कार्बन की मात्रा में वृद्धि होने से हमारी पर्यावरण की ओजोन लेयर नष्ट होती जा रही है। आप जानते हैं ओजोन लेयर हमारे पर्यावरण में कितना महत्व रखती है। जिस प्रकार तपती हुई धूप में घर के बाहर जाने से पहले अपने संग छाता लेकर जाते हैं, क्योंकि वह छाता हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रकोप से बचाता है। यदि सोचिए, अगर वह छाता आपके सिर पर से हट जाए तो आप कितनी गर्मी का एहसास होगा। इसी प्रकार से हमारे पर्यावरण में ओजोन लेयर भी एक छाते का काम करती है, जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रकोप को छलनी करके हमारे पर्यावरण में भेजती है। परंतु कई वर्षों से साइंटिस्ट द्वारा यह देखा गया है कि ग्रीन हाउस गैस का तात्पर्य उत्सर्जन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इस ओजोन लेयर में एक छेद भी हो गया है। इसकी वजह से अब सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे पर्यावरण में बिना किसी गतिरोध के सीधा धरती पर पड़ती है। आजकल आप देख तो रहे ही हैं, पारा दिन प्रतिदिन रिकॉर्ड तोड़ बनता जा रहा है, जो कि एक आम आदमी के लिए बड़ी समस्या का कारण बन गया है। इसलिए भाई बहनों, मैं इस वार्ता के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए यह उपाय बता रही हूँ। वह इस प्रकार हैं। पहला उपाय, कम से कम पानी की खपत करना, जिसकी वजह से भूगर्भ में जल स्तर में बढ़ोतरी होगी, पानी की किल्लत भी महसूस नहीं होगी। दूसरा उपाय, धरती की कोख को पानी पिलाओ। इसका तात्पर्य है गार्डनिंग से है। आप जानते हैं, गार्डनिंग करने से ना ही घर हरा भरा रहता है, उससे पर्यावरण को भी लाभ मिलता है। लाभ से मतलब यह है कि वर्षा के दौरान जो पानी हमारे घर के लॉन या गार्डन में गिरता है, वह पानी धरती में परपुलेट हो जाता है। बहन, परपुलेट से मतलब यह है कि यह सारा पानी धरती की गर्भ में सीधा रिस कर धरती की कोख में पहुंच जाता है, जो कि जल स्तर में बढ़ोतरी लाता है। तीसरा उपाय, बिजली और पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले संसाधनों का कम से कम उपयोग में लाएं। प्रयास यह करें कि आप सभी को साइकिलिंग करने की सलाह दें।

0: बहन, आप जानती हैं कि चीन आज इतनी तरक्की क्यों कर रहा है? क्योंकि वह सारे ही इको फ्रेंडली मेथड्स यानी तरीके अपना रहा है। आपको पता है वहाँ पर 15 किलोमीटर की रेंज में अपने घर से आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो उन व्यक्ति को साइकिल से जाना अनिवार्य है। यह चीन के संविधान में है, जो कि चीनी व्यक्तियों के लिए अब यह कानून है जिससे वह नहीं तोड़ सकते हैं। चाहे बहन चीन में किसी के पति ऑफिस भी जा रहे हैं तो उन्हें भी साइकिल से जाना अनिवार्य है, परंतु भारत में ऐसा करना एक निंदनीय कार्य समझा जाता है। भारतीय लोगों को लगता है साइकिल चलाने से हमारा अपमान हो रहा है, परंतु इस बात से अनजान है कि ये जितने भी पेट्रोलियम संसाधन हैं ये 20 से 25 साल बाद लुप्त हो जाएंगे। सखी, आप चाहती हैं कि आपके बच्चे कभी भी मोटर गाड़ी नहीं चला पाए? अगर बच्चे कभी भी मोटर गाड़ी नहीं चला पाए, अगर नहीं चाहती तो आज ही अपने पति को प्रेम पूर्वक इस वार्ता के बारे में अवश्य बताएं। अपने अड़ोस पड़ोस में भी जागरूकता फैलाएं। सेव फ्यूल सेव मनी एंड प्रिजर्व फॉर नेक्स्ट जेनरेशन जैसे स्लोगनों नारों से जागरूकता बढ़ाएं, इको फ्रेंडली जिंदगी अपनाएं।
1: अभी बहनें सुन रही थी ये वार्ता इको फ्रेंडली होम, वार्ताकार थी अल्पना प्रधान। जी हाँ बहनों, हमारा जो घर है वह सुंदर हो, सजा धजा हो और आपसी प्रेम न हो तो सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आपसी प्रेम और सामंजस्य परिवार के सदस्यों के बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब सामंजस्य प्रेम नहीं होता तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी अंतिम गौतम। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना। किसान भाइयों, इस मंगलवार दिनांक 14/7/2026 यानी आज शाम को 6:15 से 30 मिनट अवधि के हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में इस बार आज का विषय है बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग, बचाव एवं उपचार। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर शंकर कुमार सिंह, विषय विशेषज्ञ डॉक्टरी कॉलेज मथुरा। किसान भाइयों, यदि आप बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग जैसे गलघोंटू, खुरपका, मुंहपका, अफरा जैसे रोगों के कारण एवं निवारण की जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर शंकर कुमार सिंह, विषय विशेषज्ञ वेटनरी कॉलेज मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके या हमारे मोबाइल नंबर 9412-2555-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं। कार्यक्रम का समय होगा मंगलवार आज शाम 6:15 से शाम 6:45 तक। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और कुमार सानू को। फिल्म का नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और इस गीत को धुन से संवारा था जतिन ललित ने। और आइए अब आपको सुनवा

और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। विशाल ददलानी की आवाज़ है, फिल्म का नाम है दोस्ताना।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरो मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरो मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
0: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरु मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और

0: बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम ज़ुल्फ़ाग़री ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और IT आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से

0: बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए, अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए, और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
2: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
3: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। यह आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में NIA द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के 2 दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के

0: साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YayarNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर।
3: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियां अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्य।

0: रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानने की यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
1: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
0: जी।
1: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
0: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
1: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
0: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओं, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
1: जी हाँ श्रोताओं, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
0: जी।
1: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
0: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
1: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
0: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
1: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
0: जी,
1: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
0: जी जी जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे
1: जी।
0: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
1: जी जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर
0: जी।
1: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी।
0: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियाँ हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
1: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
0: जी,
1: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
0: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
1: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
0: जी,
1: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
0: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
1: आज का प्रश्न है, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है।
1: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने

0: आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
0: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
3: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
1: यस मैम।
3: वाह, क्या बात है
4: मैम।
3: हाँ बेटी,
4: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
3: बिल्कुल कहा।
4: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं। क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
3: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
4: जी, पहाड़ी।
0: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
3: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
1: यस मैम।
3: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
1: अच्छा।
3: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
1: अच्छा।
3: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
1: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
5: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
3: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
6: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
3: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे। तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
3: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
3: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
6: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
3: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
3: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही है।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
3: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: जी मैम।
4: यस मैम।
3: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से

0: रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान, दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
1: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
2: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
3: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
3: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
4: जी मैम।
3: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
4: बहुत अच्छी लगी।
3: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
1: धन्यवाद मैम।
5: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
3: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
5: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के

0: साथी
1: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
0: जंगल के साथी
2: दादी माँ आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
3: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो, कान लगा कर सुनो सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
2: शाबाश,
0: लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।

0: घूमते घूमते थके जोश के पांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता।

0: उधर उछलता इधर कूदता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको हमारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर
2: अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: खरगोश,

0: हिरन और मोर।
1: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
1: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
0: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम दत्ता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में हमारे युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी।

0: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आप सुन रहे कार्यक्रम युववाणी। साथियों, आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का दौर है। इस दौर में भारतीय युवाओं के लिए रोजगार और करियर के अनगिनत अवसर पैदा हो रहे हैं। तकनीक से लेकर गैर तकनीकी क्षेत्रों जैसे मेडिकल, लॉ, फाइनेंस और मार्केटिंग में एआई कौशल की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसमें कुछ ऐसे करियर के बिंदु हैं जिन पर अगर युवा काम करें तो वो आने वाले समय में अच्छी नौकरी या व्यवसाय कर सकते हैं, जैसे मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग। ये ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो कंप्यूटर को डेटा से सीखने और निर्णय लेने योग्य बनाते हैं। इस समय सबसे तेजी से बढ़ने वाले और आकर्षक वेतन वाले क्षेत्रों में से एक है डेटा साइंटिस्ट। इनका काम बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करके कंपनियों को सही निर्णय लेने में मदद करना है। प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, एआई चैट बॉक्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड से सही तक सटीक जानकारी निकालने के लिए प्रॉम्प्ट लिखना एक नया और अत्यधिक मांग वाला कौशल बन गया है। इसमें महारत रखने वाले युवाओं को प्रॉम्प्ट इंजीनियर कहा जाता है। एआई एथिक्स और रिस्क मैनेजमेंट, जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है वैसे वैसे डेटा सुरक्षा और निष्पक्षता से जुड़े जोखिम भी बढ़ रहे हैं। एआई रिस्क मैनेजर यह सुनिश्चित करते हैं कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एआई टूल्स सुरक्षित और नियम व कानूनों के दायरे में हों। नॉन टेक और क्रिएटिव क्षेत्र जैसे डिजिटल मार्केट और कंटेंट क्रिएशन, कैनवा और एडोब फायर लाइव्स जैसे एआई टूल्स की मदद से क्रिएटिव डिजाइनिंग और मार्केटिंग करना आसान हो गया है। एआई ऑटोमेशन, कंपनियों को रोजमर्रा के दोहराव वाले कामों जैसे ईमेल का जवाब देना या रिपोर्ट बनाना एआई के जरिए ऑटोमेट करने की भारी मांग है। भारत सरकार युवाओं को एआई के लिए तैयार करने हेतु कार्यक्रम चला रही है। युवा एआई फॉर ऑल जैसे फाउंडेशन कोर्सेज के माध्यम से आप एआई की बुनियादी समझ और व्यवहारिक उपयोग को आसानी से सीख सकते हैं।
1: बम चिक चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: और युवा साथियों, अब आपको सुनवाते हैं एक वार्ता जिसका विषय है समाज सेवा की भावना और युवा मानसिकता। वार्ताकार है वीना शर्मा।
5: मानव का कार्यक्षेत्र यही समाज है, जिसमें रहकर वह अपने कर्मानुसार अगले जीवन की पृष्ठभूमि तैयार करता है। 84 लाख योनियों में से किसी एक में पढ़ने का मूल वह यही स्थापित करता है और भारतीय धर्म साधना में वर्णित अमृतत्व के सिद्धांत को अपने श्रेष्ठ कर्मों से प्रमाणित करता है। लाखों करोड़ों लोगों में से मरणोपरांत केवल वही व्यक्ति समाज में अपना नाम स्थायी बना पाता है जो जीवन में ही अपने को दूसरों के लिए अर्पित कर चुका है। वास्तव में दूसरों की सेवा की भावना से ही समाज स्थापित है और इस तत्व से समाज के नैतिक आदर्शों की प्रतिष्ठा होती है। दूसरों के लिए किए गए कार्यों से जहां अपना स्वार्थ सिद्ध होता है, वहां समाज में प्रधानता भी प्राप्त होती है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा लोकप्रियता प्रदान करती है। इससे मानव का अपना कल्याण भी होता है, क्योंकि लोक की प्रवृत्ति है यदि आप दूसरों के काम आएंगे, समय पड़ने पर दूसरे भी आपका साथ देंगे। जो व्यक्ति दूसरों के लिए आत्मबलिदान करता है, समाज उसे अमर बना देता है और यह यश उपार्जित करता है। कीर्ति अस्य सजीविति, गुरु गोविंद के अमृतत्व का यही आधार है। ईसा ने कहा है, जो तुम में सबसे बड़ा होगा वह तुम्हारा सेवक होगा। प्रकृति का भी ऐसा ही व्यवहार है, वह कभी भी अपने साधन अपने लिए प्रयुक्त नहीं करती है। वृक्ष कवहू नहीं फल भके, नदी न सवेक नीर, परमानंद के कारणे साधु धरा शरीर। मानव जीवन में समाज सेवा, सहानुभूति और दयालुता प्राय रोग, दरिद्रता, महामारी, उपद्रवों आदि में संभव हो सकती है। इनमें राजा सिवी, ददीची और गांधी जैसे बलिदान की आवश्यकता नहीं है। दयालुता के छोटे छोटे कार्यों, मृदुलता का व्यवहार, दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाना, दूसरों की दुर्बलताओं के प्रति उदार होना आदि में सहानुभूति के चिन्ह विद्यमान है। भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि में मानव मात्र की कल्याण भावना निहित है। यहाँ जो कोई भी कार्य होते हैं, वे सदा बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की दृष्टि से होते हैं। यही संस्कृति भारतवर्ष की आदर्श संस्कृति है। आज के युवाओं की मानसिकता में कई दृष्टिकोणों से अंतर आया है, लेकिन उनमें समाज सेवा की भावना का रूप यथावत बना हुआ है। समाज सेवा का गुण हर युवा में होना ही चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों का हित चाहते हैं और उनकी सेवा करते हैं, प्रभु उनसे सदा प्रसन्न रहते हैं। इससे उनका अपना चरित्र महान बनता है। लोग उसी को चाहते हैं जिसके हृदय के कपाट उनके लिए सदा खुले रहते हैं। मानवता का उद्देश्य और मानव जीवन की सार्थकता केवल इसी से है कि वह अपने कल्याण के साथ साथ समाज कल्याण में भी रुचि दिखाए। युवाओं का कर्तव्य बनता है कि वे अपनी सोच में अंतर लाएं और वे स्वयं उठें और दूसरों को भी उठाएं। दीन की करुणामयी पुकार से, बड़ी बड़ी आंखों में झलकते हुए आंसुओं से, असक्त और असहाय की याचना पूर्ण करना दृष्टि से,

हृदय द्रवीभूत ना हुआ, तप्ती और भूखों को अपने भूखे पेट पर हाथ फिराते हुए देखकर जिसने अपने सामने रखा हुआ भोजन नहीं दे दिया, अपने पड़ोसी के घर में लगती हुई आग को देखकर जो उसकी रक्षा के लिए एकदम कूदना पड़ा, वह मनुष्य नहीं पशु है। त्याग और बलिदान ही हमारी संस्कृति के मूल भाव हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आज यह समस्या बड़ी जटिल हो गई है कि युवा वर्ग किस विचारधारा को अपनाएं तथा समाज सेवा के कार्यों में किस प्रकार योगदान करें। बहुत से लोग अपने अपने ढंग से आज समाज सेवा की भावना को सामने रख रहे हैं। सरकार चलाने वाले नेता अपनी योजना लाद रहे हैं तथा निरीह समाज को अपनी चिंतन धारा पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि कहने वाले अधिक हैं तथा सुनने वाले कम। कई बार युवा वर्ग भावावेश में आकर अनेक ऐसे कार्य कर बैठता है और अपना तथा समाज का अहित कर बैठता है। अतः आज युवाओं को अपनी मानसिकता का परिवर्तन करना होगा और युवाओं को चाहिए कि वे अपने मन में अच्छा और बुरा समझने की क्षमता उत्पन्न करें और अपनी विवेक बुद्धि से ऐसे सेवा के कार्य करें जो समाज व देश के कल्याणकारी हों। युवाओं को गांव में जाकर वहां की समस्याओं को समझना होगा और उनके निदान का प्रयत्न करना होगा। उन्हें स्वयं कार्य करना चाहिए तथा दूसरों के लिए आदर्श उपस्थित करना हो चाहिए। इससे ग्रामीण जनता में उनकी लोकप्रियता बढ़े तथा विभिन्न प्रकार की प्रगतियों से भी परिचित होते जाएंगे। उन्हें अपने पास पड़ोस में सहयोग तथा सद्भाव का वातावरण प्रदान करना चाहिए जिससे विरोध मिटे तथा सहकारी भावना का विकास हो। मानव में दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, एक स्वार्थ साधना की तथा परमार्थ की। युवाओं की मानसिकता स्वार्थ परक के साथ साथ जब परमार्थ की हो जाती है तब वह समाज सेवा की भावना कहलाती है। अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, मनुष्य केवल अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी जीते हैं। कहा भी जाता है यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्राचीन ग्रंथों में भी समाज की भावना के अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। उदाहरण के लिए वृत्तासुर राक्षस का वध करने के लिए महर्षि दधीचि ने कल्याण के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए। ईसा मसीह ने समाज सेवा हेतु सूली पर चढ़ना स्वीकार किया। सुकरात ने समाज सेवा के कारण जहर पिया। महात्मा गांधी ने अपना सारा जीवन समाज व देश की सेवा के लिए लगा दिया। अब्राहम लिंकन ने आजीवन समाज की सेवा की। मदर टेरेसा ने अपना जीवन समाज हित में लगा दिया। वर्तमान में युवाओं के मन में भी समाज सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वे आज समाज सेवा के विविध क्षेत्रों के कार्य कर रहे हैं, यथा धर्मशालाओं का निर्माण, औषधालय की स्थापना, जलाशय व पाठशाला बनवा रहे हैं। इन क्षेत्रों में आज का युवा वर्ग बड़े जोश के साथ काम कर रहा है। दीन दुखियों की सेवा करना, विकलांगों की सहायता करना, गरीबों को विद्या प्रदान करना आदि क्षेत्रों में युवा वर्ग बढ़ चढ़कर कार्य कर रहा है तथा समाज सेवा कर अपने जीवन को सफल बना रहा है। समाज सेवा की भावना का महत्व भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भावते। समाज सेवा करने वाला संसार में पूज्य माना जाता है। यद्यपि आज चारों ओर स्वार्थ का बोलबाला है तथापि समाज सेवा करने वाले युवाओं की कमी नहीं है। आज के युवा को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि वे जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें अपने मन को दृढ़ बनाना है। इसलिए कवि ने कहा भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। प्रत्येक युवा का कर्तव्य है कि वह अपना सब कुछ अर्पित कर भी समाज की सेवा के कार्यों में संलग्न रहे तथा समाज व देश की रक्षा, सेवा व विकास में सहयोग दे। हम समाज में कहीं भी रहें, किसी भी रूप में रहें, ईमान

0: एवं देश हित को सर्वोपरि मानकर कार्य करें। आज जब हमारा देश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से जूझ रहा है, ऐसे समय में प्रत्येक युवा का कर्तव्य है कि वे अपने व्यक्तिगत सुखों को त्याग कर समाज तथा देश के सम्मान तथा विकास के लिए तन मन धन से अपने को अर्पित करें तथा पूर्ण रूपेण समाज व देश की सेवा में जुट जाए।
1: अभी आपने सुनी ये वार्ता समाज सेवा की भावना और युवा मानसिकता। वार्ताकार थी बीना शर्मा। और साथियों, कार्यक्रम में आवाज़ लेते हैं फिल्म संगीत का।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ. नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस. हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ. शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. बुक योर टिकट्स नाउ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान.
1: और साथियों, इसी के साथ ही आज का युवा वाणी कार्यक्रम यही संपन्न होता है. हमें अनुमति दें. नमस्कार.

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है। अब वक्त है हिंदी समाचारों का। कृपया कुछ पल समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन और व्यापार जारी रखने का आह्वान किया है।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: आज नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया और जो कुछ हुआ है उसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है और कई भारतीय गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
1: जो दो जहाज जिसपे कल रात हमला हुई है, आज सवेरे हमला हुआ, तो इन दोनों जहाज में 30 हमारे भारतीय नाविक थे। एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे उसमें एक नाविक की मौत हुई है, और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक या नाविक थे उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से 2 काफी गंभीर रूप से घायल भी है। तो ये था ब्यौरा जो कल का या आज सवेरे का जब भी समय में जब हमला हुआ। इसके अलावा कई एक जाने हमारे लोग गई है, और मैं कह सकता हूं कि जितने भी देश हैं दुनिया में उसे सबसे ज्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पे जो भी हमला हुआ है, वो सबसे ज्यादा नाविकों की, हमारे देश की लोगों की जान गई है।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। अमरीका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युवाओं के कौशल को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन में उन्होंने सरकार की अनेक सामाजिक सुरक्षा पहलों पर बल दिया और स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उन्हें कर्नाटक में भाजपा का एक मजबूत स्तंभ बताया। उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं की कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 32वें ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मनी टॉक।

सुनेंगे कार्यक्रम मनी टॉक। 9:45 पर होगा कार्यक्रम मंथन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

शाम 7:20 पर होंगे प्रादेशिक समाचार और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

अब से कुछ ही देर बाद संध्या 6:15 पर आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। यह हमारा फोन इन कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का संचालन करेंगे नीलमणि शर्मा और रूप किशोर शर्मा। इस कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग, बचाव एवं उपचार। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर शंकर कुमार सिंह। श्रोताओ, यदि आप भी बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग, बचाव और उपचार के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें सीधे टेलीफोन कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ से अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता और मोबाइल से डायल करने वाले श्रोता टेलीफोन नंबर से पहले मथुरा का एसटीडी कोड 0565 अवश्य लगाएं। इस प्रकार संपूर्ण नंबर हो जाएगा 0565 25 30 135। याद रखिएगा कार्यक्रम का समय संध्या 6:15 से लेकर 6:45 के मध्य है।

संध्या 7:05 पर होगा ब्रज साहित्य कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे भक्त कथा, भक्त कौमुदी देवी, कथाकार होंगी नीरू अग्रवाल। संध्या 7:31 पर आप सुनेंगे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 8 बजे से लेकर 8:20 तक। रात 8:20 पर देशगान प्रसारित किए जाएंगे। एक ही फिल्म से यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर। आज की फिल्म होगी रंग।

रात 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे रुद्र वीणा वादन। इसमें आज आप सुनेंगे रुद्र वीणा पर बजाया राग जोग। वादक कलाकार होंगे श्री गजाधर पाठक। रात 11:00 होंगे समाचार हिंदी में। 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी आज की इस दूसरी सभा का। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आरंभ हुई है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी।

0: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
1: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है।
0: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
1: और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी
3: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नीलमणि बहन, आपको भी हमारी राम राम।
4: और कार्यक्रम सुनने वाले अपने सब बहन भैया को
3: राम राम।
4: वीरेंद्र भैया, देखो बरसात का मौसम चल रहे है और ऐसे में अपने अपन तो हैं ही परेशान, अपने पशु भी परेशान रहे हमें। और जैसे कि हम सभी जाने कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पशुपालन किसानन की आजीविका को महत्वपूर्ण आधार है। गैया, भैंस, बकरी और दूसरे पालतू पशु दूध, खाद और कृषि कार्यन में महत्वपूर्ण योगदान दे में है
3: जी,
4: है ना। बरसात को मौसम जहाँ हरियाली और चारे की प्रचुरता लेके आवे हैं, वहीं जे पशुन में अनेक संक्रामक रोगन के फैलवे को कारण बने हैं। और जब मौसम में नमी है, कीचड़ है, गंदगी है, मच्छर मक्खी की अधिकता के कारण पशुन के बीमार है भी क्यों संभावना बढ़ जाए है
3: बहुत जोर से,
4: है ना। अब बात आवे बिन में कई तरह के रोग है माए, है ना। जैसे कि वर्षा ऋतु में पशुन में गलघोंटू है, लंगड़ा बुखार है, खुरपका मोहपका है, थनेला है, कृमि संक्रमण और त्वचा संबंधी कई सारे रोग देखने को मिले हैं।
3: कहवे को आशा जी है कि बरसात आई और बीमारू पशुओं में शुरू
4: फैली है ना। तो जाके लिए बहुत जरूरी है कि जो बचाव है वो अपने किसान भैया जो है पशुपालक भैया है उनको रखने के लिए पशु उनको साफ सुखो और हवादार माहौल रखे, उनके लिए पानी को जमाव ना होने दें, कई सारी चीजें उपचार है। यानी कहवे को अर्थ ये है कि बरसात का जो मौसम है पशु उनके लिए जितना लाभदायक है उतना ही सावधानी की जरूरत होवे है। अगर किसान स्वच्छता बनाए रखें, समय पर टीकाकरण करें, संतुलित आहार दे में और काई भी बीमारी के लक्षण दिखाई देवे पर तुरंत उनका उपचार करा में तो पशु उनका स्वास्थ्य जो है बनो रहेगा और स्वस्थ पशु ही अधिक उत्पादन देन में है और किसानन के आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करे हैं। यानी आज की जो हमारी चर्चा है, बातें किसान भैया बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे जो हमारा विषय है इनके अपने कार्यक्रम हेलो किसानवाणी को। जी हाँ भैया, आपको मालूम ही है कि बरसात के मौसम में पशु में बहुत सारे रोग है जाए हैं, तो जाय विषय पर आधारित हमारा आज को ये कार्यक्रम बरसात के मौसम में पशु में है बीमारे रोग और बचाव और उपचार। आपकी जो भी समस्या है आप अपने पशु को लेके जाओगे वहाँ तक पहुँचोगे वेटनरी तक, तो घर बैठे ही आज के फ़ोन के माध्यम से आपकी समस्याओं को समाधान है जाए हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपको मालूम ही है 25 30 135 और मथुरा तिहार के श्रोता 0565 कोड जरूर लगा लें हमें। तो आज हमारे बीच हैं डॉक्टर शंकर कुमार सिंह भैया, हमारी फ़ोन लाइन खुल चुकी हैं आपके अपने कार्यक्रम हेलो किसानवाणी की। जो भी समस्या है अपने पशुओं ते है वाले रोगन पर बारिश में जो है तुरंत तो डायल करो और पाओ समस्याओं को समाधान।
3: डॉक्टर साहब, आज के इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
5: धन्यवाद जी।
3: और सभी सुनने वाले हमारे जो किसान भैया हैं उनको भी हमारी राम राम। भैया, जैसो कि आप जानो ही हो बरसात का मौसम

0: है और बरसात के मौसम में अनेकों प्रकार की बीमारी पशुओं में फैलती हैं और उनके रख रखाव, उनके खान पान और उन फैलने वाली बीमारियों से किस प्रकार से समाधान, इन सब बातों के ऊपर आधारित आज का जो हमारा सजीव कार्यक्रम है हेलो किसान वाणी, जिसमें आप हमें फोन के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान हमारे विशेषज्ञ को बता सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमारा जो फोन नंबर है 25 30 135 और हमारे जो बाहर के श्रोता हैं वो 0565 STD कोड लगा के हमें फोन कर सकते हैं और अपनी समस्या को हमारे विशेषज्ञ को बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में हमारे पशुओं में कौन कौन से रोग पैदा होते हैं और उन रोगों की पहचान क्या क्या होती है?
1: जी, बरसात आते ही जो मॉइस्चर का कंटेंट है हमारे वातावरण में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मॉइस्चर जब ज़्यादा रहता है तो उसमें जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनको प्रजनन करने के लिए या उनके बढ़ावे के लिए बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट मिलता है। इसमें फंगस भी होता है, इसमें बैक्टीरिया का भी होता है, जो वायरल बीमारियां हैं जो खास करके वेक्टर्स के चलते होती हैं, जो मॉस्किटो जिसे कहते हैं या मक्खी मच्छर के चलते होने वाली बीमारियां हैं, उनका भी प्रकोप बढ़ जाता है। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, फंगस में क्या होता है, जब मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो फंगस चारे में ग्रो करता है। जो भी चीज़ पड़ी रहती है, जैसे भूसा है, उसमें अगर पानी में वो गीला हो जाता है तो कुछ ही दिनों के अंदर उसमें फंगस ग्रोथ कर जाता है, और फंगल फिर टॉक्सिन अपना जहर बनाता है, और उस जहर के चलते पशु के स्वास्थ्य पे तो नुकसान होता ही होता है। कई तरह के ऐसे भी जहर होते हैं फंगस के द्वारा बनाए हुए, जिनके चलते जो गाभिन पशु हैं वो बच्चा डाल जाते हैं या उनके लीवर खराब हो जाता है, वो खाना पीना छोड़ देते हैं। अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो बरसात के समय में तीन बैक्टीरियल बीमारियां, एक बैक्टीरिया से होने वाली गलघोंटू बीमारी, दूसरी लंगड़ी बुखार जो बैक्टीरिया से होती है जिसे ब्लैक क्वार्टर कहा जाता है, जिसमें मांस में सड़न आ जाती है, और तीसरी जो सबसे विकट समस्या अभी की है, थनैला, जिसमें बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं, हर बैक्टीरिया अलग अलग तरह का थनैला करता है, उसकी समस्या बहुत ज़्यादा बरसात के दिनों में देखने को मिलती है। एक्चुअली होता भी है, जो दुधारू पशु हैं वो कीचड़ में अगर बैठ जाते हैं या जहाँ गंदगी है, जहाँ सूख नहीं रहा है, वहाँ बैठते हैं तो उनके थन के अंदर बैक्टीरिया आराम से चले जाते हैं। खास करके दूध निकालने के आधे घंटे के अंदर अगर वो पशु बैठ जाता है और नीचे गंदगी है तो उसके जो दूध निकालने वाला रास्ता है वो लगभग आधे घंटे तक सील्ड नहीं होता है, खुला ही होता है, तो उस समय में सबसे ज़्यादा समस्या होने की संभावना रहती है।
0: डॉक्टर साहब, जो थनेला रोग है, देखो एक हमारे किसान भाई फोन से जुड़ रहे हैं। हेलो,
2: कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई रूप किशोर जी और बहन नीलमणि को मेरी राम राम।
0: जी राम राम साहब।
2: आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर साहब को भी राम राम।
1: राम राम जी।
2: जी, मैं आकाशवाणी का नियमित श्रोता चौधरी महेंद्र सिंह, ग्राम नगला राणा, सिहोरा से।
0: जी
2: डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक ही बात जानना चाहूंगा अपने पशुपालक भाइयों के लिए।
1: जी
2: हमने देखा है कि बरसात के दिनों में अक्सर एक बीमारी पनपती है, गलाघोंटू यानी मुंह पका।
1: हाँ, गलाघोंटू ज्यादा होती है
2: और खुरपका भी होता है सर।
1: खुरपका मुंह पका जब बरसात बीतता है, नवंबर जब आता है तब, और फरवरी में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन बारिश होने के बाद गलघोंटू बीमारी बड़ी तेज़ी के साथ खास करके भैंसों में बहुत ज़्यादा होती है। गायों में आपको कम देखने को मिलेगी, लेकिन भैंसों में ये बैक्टीरिया जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है, उमस ज़्यादा होता है, तो ये बैक्टीरिया जनरली उनके गले में ही रहता है, और जिन पशुओं को टीकाकरण नहीं हुआ है या जिन जानवरों की इम्यूनिटी डाउन है उनमें ये विकराल रूप करता है। और ये इस लेवल में भी होता है कि
3: कि अभी आपका पशु चारा खा रहा है, 1-2 घंटे के अंदर

0: गुम होता है और गिर करके मर जाता है, उसमें गले में सूजन भी नहीं आता है। लेकिन दूसरा जो इसका फॉर्म होता है जिसमें गले में सूजन आता है, सांस लेने में परेशानी होती है, वो एक देख करके गांव के किसानों को भी समझ में आ जाता है, किसान भाइयों को, कि हमारे पशु को गलघोंटू बीमारी है। फिर उसमें तमाम तरह के इलाज करने पड़ते हैं, तब जाके जल्दी से जल्दी अगर सही इलाज किया जाए तो उसकी जान बचाई जाती है।
1: डॉक्टर साहब, ऐसा है कि हमारे पशुपालक भाई क्या क्या सावधानी बरतते हैं पहले से, इस विषय में थोड़ा विस्तार से आप उन्हें समझाएं। धन्यवाद।
0: अगर सावधानी के लिए कहा जाए तो गला घोटू के लिए अपने देश में टीका है।
2: सबसे अच्छा तरीका
0: सबसे अच्छा तरीका है कि अपने पशुओं को गला घोटू के लिए टीकाकरण जरूर करा लें,
2: जी
0: खास करके बरसात से पहले।
2: जी
0: और टीकाकरण आपने नहीं कराया है और बरसात आ गया है, गलती से आपका टीकाकरण नहीं हुआ है,
2: जी
0: और किसी को भी सांस की परेशानी हो रही है, तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि पशुपालक उस कमरे को बंद कर देते हैं चारों तरफ से,
2: जी
0: उसमें हवा तक नहीं जाती है। साथ ही साथ वो क्या करते हैं कि वहाँ पे धुआं या आग जलाते हैं, जिसके चलते सांसों की और समस्या होती है।
2: पशु को
0: तो
2: सांस
0: जब
2: की समस्या हो जाती
0: और
2: है।
0: ज़्यादा समस्या होती है, अगर
2: जी
0: चारों तरफ से बाड़ा बंद है और उसमें कहीं से भी वेंटिलेशन नहीं है, तो अगर जो पशु गलघोंटू से ग्रसित है उसमें आपको अच्छे से वेंटिलेटेड एरिया, जहाँ पे हवादार जगह हो, वहाँ पे उसको रखना चाहिए, और वहाँ धुआं वगैरह का जला करके
2: नहीं
0: नहीं करना चाहिए, ताकि वो आराम से सांस ले सके। ठीक।
2: डॉक्टर साहब, एक श्रोता और जुड़ रहे हैं। हेलो,
1: हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
1: मैं सतवीर बोल रहा हूँ, जरीपुरा हाथरस से।
2: जी बोलें, आप अपनी
1: हाँ
2: समस्या बताएं।
1: हाँ सर, हमारी समस्या थोड़ी सी, दो बातें, दो प्रश्न मेरे।
2: जी
1: तो एक एक तो हमारी पैलोन पड़ गया है,
0: हाँ
1: तो उसे 1 महीने पहले वो गैवन कराई, तो फिर उसमें से उसने मतलब कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो वो लाल सा और सफेद सा उसने बहुत छटाया सा किया है।
0: जी
1: हाँ, अब वो उसमें दवा फवा भी डॉक्टर से डलवा दी, फिर भी वो समस्या बरकरार है। तो आज थोड़ा वैसा है, आज लाले मन पे नहीं है, लेकिन वो पीला पीला सा थोड़ा सा छांटा है उसने,
2: मतलब छटाव कर रही है आपकी
0: छटाव कर
2: पड़िया।
1: रही है। हाँ, छटाव कर
0: तो
1: रही है।
0: आपने उसको AI कराया था, मतलब कि सीमेंट डलवाया था या सांड से?
1: सीमेंट डलवाया था उससे,
0: ओके, तो सीमेन
1: डॉक्टर
0: के
1: साहब
0: समय
1: से।
0: में इसका मतलब ये है कि अगर साफ सफाई हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाए
2: जी
0: तो गंध से भी जो उनके पेशाब का रास्ता होता है उसमें बैक्टीरिया रहते हैं, वो कभी
1: जी
0: अंदर तक पहुंच जाते हैं। तो पहली पड़िया थी, पहले बार वो हीट में आई थी, उस समय हो सकता है कि साफ सफाई, उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको सफाई ना करके डायरेक्ट गंध डाला गया होगा,
2: जी
0: उसके चलते उसके यूट्रस में इन्फेक्शन चला गया होगा। तो इस तरह से छटाव करती हैं। तो अगर आपने उसमें दवा डलवाया है तो अच्छी बात है, अगर वो दवा दवा डलवाने के बाद भी अगर इन्फेक्शन है तो अगले उसकी गर्मी का इंतज़ार करें, और गर्मी में जब पशु आता है उस समय उसका जो बच्चेदानी का मुंह है
2: जी
0: वो खुला रहता है, और उस समय जब दवा डलवाई जाती है तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो उस अगले वाले इसमें फिर से एक बार आप डलवाएं, आप चाहें तो इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं उसी टाइम पे
1: जी जी
0: जब।
1: सर, जैसे जैसे सर ये अभी उसने छटा किया है, तो बच्चादानी का मुंह नहीं खुला होगा अब।
0: नहीं, ये बाहर भी इन्फेक्शन हो सकता है और उसके यूट्रस में तो नहीं होगा, मुझे लगता है जो यूट्रस की बॉडी होती है पीछे की तरफ जो होती है सर्विक्स जिसे हम लोग कहते हैं,
2: जी
0: और
1: हाँ
0: वल्वा के अंदर जो वजाइना होता है उसके अंदर का इन्फेक्शन होगा, काफ़ी अंदर का इन्फेक्शन नहीं होगा वो, अगर पहली बार की बच्चिया है पड़िया है तो। अगर जो एक दो बार ब्याह जाती हैं उनके यूट्रस के अंदर भी इन्फेक्शन रहता है। तो अगर ये बाहर से ही आ रहा है छटाव, इसका मतलब नहीं है कि उसका मुंह पूरी तरह से खुला हुआ है। तो अगर वो गर्मी में आए उस समय दवा कराएंगे तो कारगर ज़्यादा होगा, और एक बार कम से कम उसके अगली बार 21 दिन के बाद फिर गर्मी में आए तो उस
2: जी
0: समय छोड़ दें, उस
2: 21 दिन बाद दोबारा जब गर्मी में आए तो पशु को नहीं कराएं,
0: नहीं कराएं, उसके अगले बार कराएं।
2: उसके अगली बार।
0: हाँ, तो रुकने की संभावना ज़्यादा रहेगी।
2: जी डॉक्टर साहब, हमारी आपकी जो बात चल रही थी थनैला पर,
0: जी
2: तो एक बात ये जानना चाह रहे हैं हम कि जो थनैला रोग होता है, वो थनैला रोग जब दुधारू पशु होता है तभी होता है कि जब पशु दूध ना दे तभी हो जाएगा?
0: देखिए, थन में बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करना है
2: जी
0: तो उसको कुछ न्यूट्रिशन चाहिए,
2: जी
0: तो दूध को न्यूट्रिशन की तरह करता है और उसके शरीर के टिश्यू में भी मल्टी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो दूध में सिर्फ

0: ग्रोथ करते हैं, कुछ उसके शरीर के अंग में भी करते हैं।
1: जी
0: तो जो पशु दूध नहीं दे रहा होगा उसमें बैक्टीरिया जाएगा ही नहीं, क्योंकि रास्ता बंद रहता है जब दूध नहीं दे रहा। लेकिन जब हम लोग दूध छोड़ते हैं, जो ब्याने वाली रहती हैं उनको 45 दिन या 30 दिन पहले जब हम उनका दूध छोड़ते हैं, उस समय उसमें दूध पड़ा रहता है और उस दूध में बैक्टीरिया ग्रो करके बीमारी कर
1: पनप
0: सक
1: जाती है।
0: पनप जाता है। रेयर केसेस में ब्याने से पहले भी थनैला हो सकता है, जब
1: जी
0: थन बढ़ रहा होता है, थन में दूध भरना शुरू होता है, उसमें किसी तरह से बैक्टीरिया चला गया,
1: जी
0: उसका सील खुल गया। जबकि ब्याने से पहले जो दूध का रास्ता है वो सील्ड रहता है, जब हम
1: जी
0: लोग उसको खींच को निकालते हैं
1: ब्याने के बाद।
0: हाँ तो उसको साफ करना पड़ता है। लेकिन कुछ जो खास करके क्रॉस विदेशी नस्ल की गायें हैं उनमें दूध अपने आप गिरने लगता है, तो सीलिंग जो है वो खत्म हो जाती है, तो ब्याने के पहले भी थनैला हो सकता
1: डॉक्टर
0: है।
1: साहब एक श्रोता और जुड़ रहे हैं हमसे। हेलो हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी राम राम साहब,
2: राम राम, बेतन कुमार बोल
1: कौन से गांव थे
2: रहा हूँ।
1: जी, बताएं अपनी समस्या बताएं।
2: हम ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे एक भैंस एक बार जाती है तो इसे दोबारा का उदाहरण कब करवाएं, कैसे करवाएं।
0: एक भैंस ब्याह चुकी है तो दोबारा उसे गाभिन कब कराएं?
1: लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है।
0: हाँ, एक्चुअली मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये
1: जी
0: कह रहे हैं कि कब हम लोगों को उसको गाभिन कराना चाहिए। गायों को कहा जाता है कि साल में एक बच्चा होना चाहिए।
1: जी
0: अगर आपको प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग करनी है या सही में उससे, क्योंकि ज़्यादा दिन तक ड्राई आप रखेंगे या दूध में रखेंगे तो उसको आपको खाने पे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा और जो दूध आएगा वो बहुत ज़्यादा दिन तक
1: नहीं आएगा।
0: नहीं आएगा। तो बेहतर ये होता है कि कम से कम 2 महीने के काविंग के 2 महीने के बाद उसको गाभन करा देना चाहिए।
1: जी
0: 45 दिन से पहले कभी नहीं कराया जाता है। 2 और 3 महीने के बीच में अगर वो गर्मी में आए तो उसको AI होना चाहिए और वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अगर 2 महीने के अंदर होगा तो 9 महीने का फिर आगे जोड़ लीजिए। 9 महीने 9 दिन गायों को लगता है, भैंसों में 10 महीना 10 दिन,
1: दस महीना
0: दस
1: दस
0: दिन लगता है।
1: जी
0: तो गायों के लिए तो ये है कि साल में एक बच्चा होना चाहिए। तो 2 महीने के बाद गायों में आप AI करा सकते हैं, जब गर्मी में अगर वो आती है।
1: एक श्रोता और जुड़ रहे हैं हमसे। हेलो
2: डॉक्टर साहब,
0: राधे राधे।
2: अरे डॉक्टर साहब ये बताना, जो जो गाय और भैंसी हमारी जो डेयरी है वैसे तो चल रही है, अगर इसमें लोन वगैरह अभी कोई सुविधा है।
0: हाँ, अभी सरकार ने लोन की सुविधा कर रखी है,
1: पशुपालकों के
0: पशु
1: लिए
0: पालकों के लिए कर रखी है, और योगी सरकार ने काफ़ी अच्छी सुविधाएं की है,
1: जी
0: और इसमें आपको 25 लाख तक की भी सुविधा है
1: जी
0: जिसको आपको कोई भी ब्याज नहीं देना है। अगर आप पशुपालक हैं, पहले से ही आप पशुपालन में जुड़े हुए हैं तो उस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
1: तो इसके
0: और
1: लिए फिर हमारे किसान भाई कहाँ संपर्क करें?
0: ये ऑनलाइन पोर्टल्स हैं,
1: जी
0: उनमें आप देख सकते हैं, उसमें ये आपको सर्टिफाई करना होता है कि आपने जो भी प्रधान वगैरह हैं कि आप पशुपालन कर सकते हैं, और वहाँ के इनके जो भी ब्लॉक में डॉक्टर्स हैं, जो
1: जी
0: वेटनरी डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क करेंगे तो पूरी योजना का विस्तार में बताएंगे। मतलब करोड़ों रुपए तक का भी है,
1: जी
0: वो डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल में क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं। फिर आपको लगभग, मुझे जहाँ तक ज्ञान है कि 5 साल तक आपको ब्याज नहीं देना है। पैसा
1: जी
0: जो मिलेगा उससे आप अपना व्यवसाय कीजिए, अपने व्यवसाय को बढ़ाइए, दूध पालन को बढ़ाइए, और फिर 5 साल के अंदर आपको, 5 साल के बाद आपको उसको पैसे को लौटाना उतना ही होता है। इसमें 50% सरकार देती है
1: जी
0: और 50% अपना लगाना पड़ता है, जितनी की भी डेयरी लेनी होगी।
1: तो डॉक्टर साहब हमारी जो बात चल रही थी कि एक समस्या आती है हमारे पशुपालक भाइयों के सामने, पेट के कीड़े की,
0: पटेर होगी।
1: पटेरों की, वो छोटे बच्चों में देखी जाती है और बड़े पशु भी इस बरसात के मौसम में उनको भी पतले दस्त हो जाते हैं।
0: बिल्कुल होते हैं।
1: तो उस समस्या का समाधान हमारे भाई कैसे करें?
0: देखिए, कई तरह के पटेरे हैं।
1: जी
0: अभी जो इसे बरसात है तो इसमें घोंघे ज़्यादा होंगे,
1: जी
0: तो घोंघों से कुछ फैलाए जाते हैं जो पटेरे होते हैं, उनको हम लोग फ्लूक

0: कहते हैं।
1: जी
0: तो दो तरह के तो फ्लूक होते हैं, एक होता है लीवर में
1: जी
0: और दूसरा होता है उसके रुमन में।
1: डॉक्टर साहब, एक किसान भाई और जुड़ रहे हैं हमसे।
0: जी
1: हेलो हेलो
2: हेलो आकाशवाणी,
1: हेलो, आकाशवाणी कहाँ से
2: मैं
1: बोल रहे हैं
2: नासिर
1: साहब?
2: खान बोल रहा हूँ, नासिर खान बोल रहा हूँ, पहचाना क्या?
1: हाँ बोलें
2: नासिर खान बोल रहा हूँ, आप मंडियाला तहसील कामा
1: जी,
2: जिला
1: बताएं
2: से?
1: अपनी समस्या बताएं खान साहब।
2: जी सर, मेरे भैया के पास में एक भैंस है
1: जी,
2: और वो थोड़ा दूध देती है, सुस्त रहती है, कोई उपचार बताएं? है
1: थोड़ा दूध देती है और सुस्त रहती
0: कितने
1: है
0: दिन उसको बच्चा दिए हुए हो गया?
2: जी,
0: उसको गाभिन का बच्चा दे करके कितना दिन हो गया?
2: हाँ जी, ब्याह
1: ब्याए कितने दिन आए गए भाई? भैंसे ब्याए कितने दिन आए गए?
2: तो आए कम से कम 4-5 महीने हो गए।
1: अच्छा
0: 4-5 महीने हो गए, तभी बरसात है, तो एक तो पटेरों की आप दवाई खिला दीजिए उसे, अगर उसका
2: अच्छा
0: दूध दूध का प्रोडक्शन कम है सही
1: जी,
0: मा, क्योंकि होता क्या है, जब पटेरे ज़्यादा रहेंगे पेट में तो वो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो जब शरीर में जो खाने में आप दे रहे हैं उसके शरीर दूध बनाने के लिए नहीं होगा, वो पटेरे यूज कर लेते हैं,
1: जी
0: तो दूध का प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाता है। तो पटेरों जैसे हम लोग बात कर रहे थे,
1: जी
0: तो
1: जी
0: पटेरे सिर्फ समस्या उसके कुछ हैं जो खून चूसते हैं, कुछ उसके न्यूट्रिशन को लेते हैं, कुछ
1: जी
0: लीवर में चले जाते हैं और लीवर ख़राब कर देते हैं, तो कई तरह के पटेरे होते हैं, कुछ फेफड़े में चले जाते हैं फिर वहाँ समस्या करते हैं, तो अलग अलग तरह के पटेरे होते हैं, उनके अनुसार से उसमें लक्षण आते हैं। तो जो ज़्यादातर कॉमन जिनको हम लोग कहते हैं, अगर प्रोडक्शन कम है तो एक बार साल में कम से कम 2 बार तो डिवर्मिंग करनी चाहिए, पटेरों की दवाई देनी चाहिए। तो अगर पटेरे की दवाई दे दें साथ में ये दाना अच्छे से दें और कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएं, तो इनका दूध का प्रोडक्शन जो है बढ़ सकता
1: तो पटेरे की दवा छोटे पशु और जो हमारे बड़े पशु हैं या दुधारू पशु हैं
0: है।
1: उनको भी साल में 2 बार दे देनी चाहिए,
0: 2 बार तो दे देनी चाहिए, बरसात से पहले तो एक बार देनी ही देनी चाहिए।
1: और फिर दूसरी खुराक कब दें?
0: दूसरी खुराक 6 महीने के बाद आप जनवरी के लगभग में दे सकते हैं।
1: जी, अब जो बात चल रही थी हमारी कि बरसात के मौसम में जो हमारे पशु हैं, डॉक्टर साहब एक श्रोता और जुड़ रहे हैं हमसे। हेलो हेलो,
2: हेलो, हाँ डॉक्टर साहब,
1: हाँ जी
2: मेरा एक प्रश्न हो रहेगा सर। मैं ये जैसे मेरी एक पड़िया है, वो 8 महीने की 51 हो चुकी है, 2 महीने बाद ब्याएगी, तो मैं थोड़ी सी कुछ सावधानियाँ और क्या कैसे पहलवान ब्याएगी, तो थोड़ी सी उसके सावधानी और डॉक्टर साहब का फोन नंबर, ये दो दो बातें हैं मेरी।
1: जी
0: जी जो सावधानी सबसे बड़ी है, अभी बरसात में 8 से 9 महीने की जो गाभन होती हैं उनमें बच्चा डालने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। अभी हम लोग बात कर
1: जी
0: रहे थे कि हम लोग सोचते हैं कि जो गाभन है उसको कुछ भी खिलाओ, दूध तो
1: जी
0: दे नहीं रही है,
1: जी जी
0: तो सड़ा गला उसको दे देते हैं, जो दूध देने वाली होती है उसको सूखा बढ़िया सा खिलाते हैं।
1: और एक भ्रांति और रहती है हमारे किसान भाइयों के मस्तिष्क में कि हम इसको जितना ज्यादा खिलाएंगे उतना ही ब्याने पे दूध
0: दूध
1: देगी।
0: देगी हाँ। तो भूसा अगर बारिश में भीग गया है या
1: जी
0: कोई भी चीज़ चरी है 4 दिन से बारिश में पड़ी हुई है, उसको गलती से भी गाभिन पशु को नहीं खिलाना चाहिए,
1: जी
0: क्योंकि उसमें फंगस लग जाता है। आप देखेंगे उसको छू के भूसे को, तो एकदम गर्म होगा, फफूंदी लगी होगी उस पर, ब्राउन ब्राउन कलर की फफूंदी, जैसे हम लोग कोई भी खाना भी अगर बाहर रख दीजिए बरसात में, तो उसमें फफूंदी, इवन दीवारों में भी फंगस लग जाता है,
1: जी
0: वो फंगस जहर बनाते हैं और उस जहर के चलते सबसे ज़्यादा एवर्सन बरसात में होता है।
1: जी
0: तो जो प्रेग्नेंट है वो बच्चा न डाले, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो कोई भी सड़ी गली चीज़ या जिसमें फंगस लगा है, इसको गलती से भी गाभिन पशु को हमें नहीं खिलाना चाहिए। जब भी आप भूसा खिला रहे हैं एक बार जरूर चेक कर लें कि इसमें फंगस का ग्रोथ है कि नहीं, एक बार मुट्ठी बांध करके देख लें, उसमें गोले बने हों,
1: जी
0: अगर गुठेले से बन गए हैं इसका मतलब उसमें फंगस है, उस वाले भूसा को गलती से भी न खिलाएं, या जो चारा लगातार कई दिनों से बाहर पड़ा है और उसमें फंगस ग्रो कर गया है उसको इसको नहीं खिलाना होगा, तब वो बच्चा आराम से अपने पेट के अंदर धारण करके रहेगी।
1: और सामान्य बात पे तो ये है कि जो फंगस वाला जो चरी है या
0: जी
1: भूसा है, जो भी पशु का चारा है,
0: किसी को भी
1: किसी को न
0: ना
1: खिलाएं।
0: खिलाएं। एक्चुअली हम लोग क्या लगता है ना, सच्चाई ये है कि
1: जी
0: हमें लगता है कि जो हमारे खाने योग्य नहीं है वो पशुओं के लिए है,
1: जी जी जी
0: जो बहुत बड़ी गलती है, जो हमारे खाने योग्य नहीं है वो पशु के भी खाने योग्य नहीं है।
1: जी
0: सच्चाई ये है कि हमारा शरीर छोटा है, हम थोड़ा खाते हैं पेट खराब हो जाता है, लीवर खराब हो

0: जाता है और हम उल्टी होने लग जाती है,
1: जी
0: हम में दिख जाता है, लेकिन उनका शरीर बड़ा है तो थोड़ा मोड़ा खाते हैं तो उनके शरीर में दुष्प्रभाव तो होता ही है, लेकिन वो दिखता नहीं है हमें, उसका दूध कम हो जाएगा, वो थोड़ी जैसे कह रहे थे कि सुस्त रह लेगी,
1: जी
0: उसका गोबर थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, लेकिन समस्या तो उसके साथ भी होती है, लेकिन वो पता हमें नहीं चल पाता है, तो हम लोगों को लगता है जो सड़ा गला है वो पशुओं को खिलाओ, जो बढ़िया है वो खुद खा लो। हेलो, हाँ राम राम साहब,
2: राम राम साहब, मैं तोस से बोल रहा हूँ, जीव राम सिंह।
1: हाँ जी बताएं अपनी समस्या बताएं।
2: समस्या, मेरे पास एक गाय है
1: जी
2: तो उसकी कलीली खत्म नहीं होती है, क्या करें, बड़े परेशान हैं हम कलीलीन से।
1: डॉक्टर साहब, ये भी एक विकराल समस्या है कलीलियों
0: बहुत
1: की।
0: बड़ी समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है
1: जी जी जी
0: और हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व इससे परेशान है।
1: जी
0: कलीलियों के लिए जितनी भी दवाएं हम लोग बनाते हैं
1: जी
0: उसको अगर आप यूज करते हैं, तो अभी 1 महीने तक की ही, जानवर बड़े जानवरों के लिए, कुत्तों के लिए तो 3 महीने 6 महीने के लिए कलीलियों का जुगाड़ है
1: जी
0: कि उनको ना हो, लेकिन बड़े जानवरों के लिए मैक्सिमम 1 महीने तक की दवाएं आई हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग गलती क्या करते हैं कि शरीर पे तो हम दवाई, एक दवाई आती है जो उसके रीढ़ की हड्डी
1: रीढ़
0: पे
1: के हड्डी
0: डाल,
1: पे लगाई जाती है।
0: उसको
1: जी
0: पोरॉन कहते हैं, तो वो 1 महीने तक लगभग कलीली नहीं होने देती है। दूसरे कुछ इंजेक्शन आते हैं जो 7 दिन काम करते हैं, और कुछ साबुन वाबुन आते हैं तो 2 दिन के बाद भी उनमें कलीली आ जाती है,
1: जी
0: तो उनको तो साबुन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा नहीं है। इंजेक्शन में भी कुछ हैं, इंजेक्शन ऐसे हैं जो कि हाई कंसंट्रेशन में होते हैं, आइवरमेक्टिन का जो प्लेटिनम वगैरह करके आता है, या जो इसमें परसेंटेज ज़्यादा रहता है,
1: जी
0: वो 1 महीना तक प्रोटेक्ट करता है। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग खाली शरीर पे ध्यान देते हैं, शरीर पे जो कलीली हमें दिख रही है
1: जी
0: उसी को हम मारना चाहते हैं। सही जड़ जो है कलीलियों का, जैसे गर्मियाँ आती हैं तो इनका प्रकोप बढ़ता है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तभी ये प्रजनन करते हैं,
1: जी
0: और एक कलीली 2,500 से 3,000 अंडे देती है,
1: एक कलीली 2,500 से 3,000।
0: 3,000 अंडे देती है,
1: जी
0: और ये कलीली शरीर पे अंडे देती नहीं है, ये देती है दरारों में,
1: जो
0: जो बाड़ा
1: पशुशाला,
0: है,
1: जो बाड़ा होती
0: पशुशाला
1: है।
0: है
1: जी
0: उसके दरारों में, जिसमें ईंटें लगी हैं उनकी दरारों में,
1: फर्श की दरार
0: फर्श की
1: में।
0: दरार में, गोबर में
1: जी
0: जा करके, तो 1,000 3,000 देगी।
1: जी
0: तो आपने शरीर पे जो 100 200 500 1,000 दिख रहे हैं उनको तो मार दिया, उनको जैसे वो खून चूस लेती है
1: जी
0: जब फुल अंडा देने लायक हो जाती है तो शरीर से अपने आप गिर जाती है, गिर के जाके दरारों में अंडे देती है।
1: जी
0: अब एक दवा आपने लगाई तो शरीर की तो खत्म हो गई, फिर दूसरी मान लीजिए कि वो उसकी असर 1 महीने तक है, तो वो आएगी उसको खाएगी तो उसको भी मार देगा 1 महीने तक जिस दवाई का असर है। अगर आपने दरारों का उपाय नहीं किया,
1: जी
0: दरारों से कलीलियां नहीं हटाई, तो एक समय ऐसा आएगा कि उस दवाई के लिए वो उस कलीली पर असर ही नहीं होगा।
1: जी
0: होता क्या है कि वो नहीं मरेगी जिसको उस दवाई से बचने की क्षमता है, जैसे 3,000 उसने दिया है
1: जी
0: तो 2-4 उसमें ऐसी होंगी जिस पे उस दवा का असर नहीं होगा, तो अगला जो उनका प्रजनन होगा
1: जी
0: वो वही वाला आएगा जो जिस पे दवाई का असर नहीं होता है। तो आप कहते हो कि पिछले बार लगाया था तो काम करता था, अब काम ही नहीं कर रहा है, तो उस तरह की कलीलियाँ भी बन जाती हैं। तो दरारों की साफ सफाई, खास करके उन्हें तो फ्लेम से जला देना चाहिए दरारों को,
1: जी
0: या बेहतर हो कि जो बाड़ा है उसमें दरारें रहे ही नहीं, एकदम चिकना होना चाहिए, और वहाँ जो गोबर है कभी भी बाड़े में गोबर नहीं पड़ा होना चाहिए, उसको दूर रखें, और अगर हो सके तो चूने का छिड़काव करें, और उन जो दवाएं छिड़कने वाली आती हैं कलीलियों की, वो शरीर पे डालने के साथ साथ अपने बाड़े में भी छिड़काव करेंगे, तब जाके कहीं राहत मिल
1: बात
0: सकती
1: यह
0: है।
1: कि दवाई के साथ साथ सफाई का भी हमें विशेष ध्यान
0: विशेष
1: रखना
0: ध्यान
1: है।
0: देना है, जहां पे उनका घर है उसको भी खत्म करना है।
1: जी तो ये जो चर्चा चल रही थी परजीवियों में कलीली,
0: जी,
1: और कलीली के अलावा जूं भी हमारे
0: जुएं
1: पशुओं
0: भी
1: में होती हैं।
0: हैं, खासकर भैंसों में जुएं ज़्यादा होती हैं,
1: जी
0: और मक्खियाँ भी होती हैं जो काटती रहती हैं भैंसों में, आप देखेंगे तो छोटी छोटी मक्खियाँ होती हैं जो उनके पेट के नीचे काट काट के घाव तक बना देती हैं, तो
1: जी
0: उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जुएं भैंसों में बहुत ज़्यादा होती हैं, गायों में जुएं आपको कम देखने को मिलती हैं,
1: गायों में
0: एकदम
1: कम मिलेंगे।
0: गायों में जुएं ना के बराबर होती हैं, क्योंकि इनके बाल जो होते हैं वो पूरे घने होते हैं, उन घनों में जैसे मैं कह रहा था ना, कलीलियाँ जो हैं दरारों में देती हैं, लेकिन जुओं के जो नीड्स होते हैं बालों में ही चिपके रहते हैं, तो जिसे लीक कहते हैं
1: जी
0: वो उनके अंडे होते हैं, तो जुएं बॉडी के ऊपर ही

0: देती हैं, वो शरीर से बाहर नहीं जाती हैं।
1: रुक किशोर भैया, देखो समस्या अपने भगवान की बहुत है,
2: जी
1: पर क्योंकि लगातार फोन भी आ रहे हैं, पर हमें समय को भी ध्यान रखना है,
2: समय को ध्यान रखो, जरूरी
1: तो
2: है।
1: आज को हेलो किसान वाणी कार्यक्रम जो है वो आधारित हो बरसात के मौसम में पशु में है बीमारी रोग बचाव और उपचार पे,
2: और आज के जो विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर कुमार सिंह
1: तो समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को दे विराम,
2: और सब
1: सब
2: भैयान
1: भैयन
2: को
1: को
2: करें राम
1: राम
2: राम।
1: राम।

अभी श्रोता सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

ये थे लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और साथी। फिल्म थी कृष्ण कन्हैया। और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के साथ पंडित राजन साजन मिश्र को। फिल्म है सुर संगम।

0: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: ब्रज साहित्य कार्यक्रम या कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा में भक्त कथा, भक्त कौमुदी देवी। कथाकार हैं नीरू अग्रवाल।
5: भक्त रंग नायकी या कौमुदू देवी जा तरीका ते हमारे उत्तर भारत में भगवान श्री कृष्ण की महान भक्त मीराबाई को स्थान कृष्ण भक्तन में सर्वोपरि हते। वैसे ही दक्षिण भारत में भगवान विष्णु की अनन्य भक्त रंग नायकी को नाम सर्वोत्तम शिखर पे है। कावेरी नदी के तट पर स्थित एक गांव में विष्णु दर्शन नामक एक परम वैष्णव भक्त रहो करतो। वो बड़े ही आस्तिक एवं धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हते। भगवत भजन हरि सेवा ही उनको काम हतो। उनको एक बात सुंदर तुलसी को उपवन हतो, जामे विभिन्न प्रकार के फूल इत्यादि के पौधा तो हते ही, लेकिन तुलसी के पौधों की संख्या सर्वाधिक हती। वे नित्य प्रातः तुलसी के पौधों में मटकों से जल भरकर उन पौधों को सींचते हते। फिर तुलसी दल की परम मनोहर माला बनाकर प्रभु को श्रृंगार कियो करते। एक दिना जब विष्णु दर्शन अपने बगीचा में पानी दे रहे हते, वही समय उनको एक परम मनोहर नवजात कन्या दिखाई पड़ी। उनने वह कन्या को बड़े ही प्यार से उठाकर भगवान नारायण की मूर्ति के सामने रख दियो और बोले, प्रभु यह आपकी संपत्ति है जो आपकी सेवा के लिए मोको प्राप्त है गई, आप जाकू अपने चरणों में स्थान दो। वही समय आकाशवाणी भई कि हे विष्णु दर्शन, इस कन्या को अपने पास रखो और इसका अपनी पुत्री की तरह लालन पोषण करो। ये कन्या तुम्हारे और तुम्हारे कुल को उद्धार का कारण बनेगी। जो उन सुनके विष्णु दर्शन परम प्रसन्न भई और उन्होंने बाकू घर लाके अपनी पत्नी की गोदी में डाल दियो। बोले, हे भागिनी कन्या, ये तुम्हारी मोकू स्वयं भगवान ने दई है और कहा है कि आगे चलकर ये हमारे वंश को उद्धार करेगी। पत्नी अपने स्वामी की बात सुनके बहुत प्रसन्न भई और बाकू खुशी खुशी लालन पालन करवे लगी। भगवान को प्रसाद समझ के तो वो बाको विशेष ख्याल रखवे लगी। यथा समय वह दंपत्ति ने कन्या के आशीर्वाद जातकवादी करा दिए। जब कन्या ने बोलना शुरू किया तो बाके मुंह ते सर्वप्रथम विष्णु शब्द निकलो, बाके अतिरिक्त बाके मुख ते को अन्य शब्द नाय निकरतो। कन्या को उन्होंने नाम कौमुदी रखो। धीरे धीरे कन्या जब सयानी है गई लगी तो वो भगवान के गीत गावे लगी। जब पिता मंदिर चले जाते तब वो उपवन की देखभाल करती और फूलन को चुन चुन के उनकी माला बनायो करती। वह समय भी वो भगवान के भजन ही गायो करती। कौमुदी की बनाई भई माला को वो विष्णु दर्शन ब्राह्मण मंदिर में ले जाए के पुजारी को देतो और पुजारी उनको मालन को प्रभु की मूर्ति को पहना दियो करतो। जब कौमुदी कछु बड़ी भई तो वो भगवान रंगनाथ को अपने पति के रूप में देखवे लगी और अपनी बनाई माला को स्वयं पहनकर फिर अपने पिता को दे देती। एक दिना पुजारी ने वह माला में स्त्री को एक बाल लगो भयो देख लियो। वो विष्णु दर्शन ते बोलो, ये माला अपवित्र है गई हते, अब जाकू मूर्ति पे ना पहनाइयो जा सके। ये सुनके

विष्णु दर्शन को बहुत दुख भयो। कछु दिना बाद फिर दोबारा ऐसी ही घटना पुनः भई। अब विष्णु दर्शन ने अपने घर पे आके देखो कि बाकू पुत्री अपने बनाए हुए हारन को खुद पहनकर स्वयं दर्पण के सामने खड़े है के मोहित है रही है और कह रही है कि क्या मेरा सौंदर्य मेरे पति रंगनाथ को मोहित कर पायो। वे दौड़ के अपनी पुत्री के पास गए और बोले, ये तू का कर रही है बेटी? भगवान को अर्पित करवे बारे हारन को खुद पहन के उनको दूषित कर रही हते। पहले तो जे देख के कौमुदी शर्मा गई, फिर बोली, पिताजी ये हार तो मेरे पति के लिए हते। उनको मैं खुद पहन के देखनो चाहूँ कि अगर जे मोकु सुंदर लगेंगे तभी तो मेरे पति रंगनाथ जी को भी सुंदर लगेंगे। विष्णु दर्शन बाकी बातन को सुन के सोचने लगे कि मेरी पुत्री पागल है गई हते। वो मंदिर में जाके प्रभु रंगनाथ की मूर्ति के सामने क्षमा मांगवे लगे। तभी फिर आकाशवाणी भई, हे विष्णु दर्शन, मोकू कौमुदी के बनाए हुए हारों को और मालाओं को पहनायो, वो मोकू रुचिकर लगे। काऊ और दूसरे के बनाए भय हारन व मालन में तो बात नाए, मैं पुजारी को भी समझा दूंगो। इधर स्वप्न में मंदिर के पुजारी को भगवान ने दर्शन दिए कि तुम विष्णु दर्शन के द्वारा लाए गए हारन की माला मोकू पहनाए करो। कौमुदी हमेशा प्रभु रंगनाथ के प्रेम में मत वाली रहो करती। एक दिना वाने अपने धर्म पिता श्री विष्णु दर्शन ते बड़े ही अनुमय विनय के साथ दिव्य धामों तथा तीर्थ स्थलों के विषय में पूछो। धर्मनिष्ठ विष्णु दर्शन तो खुद भगवान के चरणों का अनुरागी था, सो बाने बात ही बहुत ही श्रद्धा और तथा प्रेम भरे शब्दों में अपनी बेटी को भगवान के बैकुंठ धाम आदि दिव्य धामों के नाम बताए और अंत में कहा कि दक्षिण में कावेरी नदी के तट पे भगवान श्री रंगनाथ को पास हते। भगवान श्री रंगनाथ को नाम सुनते ही कौमुदी के शरीर में रोमांच उत्पन्न है गयो और उनकी आँखों ते प्रेमाश्रु गिरवे लगे। अपने इष्ट देव के बारे में जानने की बाकी मन में तीव्र इच्छा उत्पन्न हैवे लगी। बोली, पिताजी आप श्री रंगनाथ जी के बारे में मोको विस्तार ते बताओ। विष्णु दर्शन बोले, बेटी ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं भगवान विष्णु यहाँ प्रकट भये। भगवान श्री राम भी आप कुल देवता हैं, आपको रंगनाथ कहो जावे। भगवान श्री रंगनाथ को वर्णन सुनके तो कौमुद की उत्कष्टा और तीव्र है गई। वो उनसे मिलवे को व्याकुल सी रहवे लगी। बाके प्राण दिन रात अपने प्रियतम की श्री रंगनाथ से मिलवे को तरसवे लगे। वो उन्हीं को नाम जपती, उन्हीं का कीर्तन करती और उन्हीं की धुन में डूबी रहती। कौमुदू की आँखों में, हृदय में, रोम रोम में श्री रंगनाथ ही छाए रहते। वो छाती पीट पीट कर अपने प्रियतम को पुकारती और दहाड़ मार मार के रोवे लगती, हे प्रभु आप मुझे कब अपनी पत्नी बनाओगे, कब अपने पास बुलाओगे? आपके बिना मेरा ये जीवन व्यर्थ है। आपने अपनी पत्नी सीता के लिए समुद्र में पुल बनवा दियो, शिशुपाल को मार के रुक्मणी को अपना लियो, आप मुझे क्यों नहीं स्वीकारते? कौमुदी की ये दशा देख उसने धर्म पिता विष्णु दर्शन व उनकी पत्नी अत्यंत दुखी रहती। कुछ नादान ग्रामीण बाकू पागल समझ के बाकी हंसी उड़ायो करते, लेकिन कौमुद तो अपने प्रियतम श्री रंगनाथ के प्रेम में व्याकुल रहती। एक दिना जब वह अपने प्रियतम श्री भगवान श्री रंगनाथ के विरह में अत्यंत व्याकुल है गई, तब भगवान श्री रंगनाथ ने स्वप्न में मंदिर के अधिकारियों को दर्शन देकर कहा कि मेरी प्रियतमा कौमुदी को शीघ्र मेरे पास लेकर आओ। उन्होंने विष्णु दर्शन को भी आज्ञा दी कि तुम शीघ्र अपनी बेटी कौमुदी को लेकर मंदिर आओ, मैं बाके साथ ब्याह करूँगो। उन्होंने स्वप्न में कौमुदी
को भी दर्शन दिए। कौमुदी

0: ने देखा कि उनका विवाह बड़ी धूमधाम से भगवान श्री रंगनाथ के साथ हो रहा है, पाको सपना सच हो गया। दूसरे दिना ही रंगनाथ मंदिर से कौमुदी और उसके माता पिता को लेने कई पालकियां और लव लश्कर भी आए। ढोल और सहनाइयां बजवे लगीं, ब्राह्मण लोग वेद पाठ करवे लगे, शंख की ध्वनि होवे लगी, भक्तगण भगवान रंगनाथ और कौमुदी की जय जयकार करवे लगे। कौमुदी ने प्रेम में मतवाली होकर मंदिर में प्रवेश किया और सीधे भगवान रंगनाथ की शेष सैया पे चढ़ गईं। इतने ही नहीं, वहां उपस्थित सभी लोग ने देखा कि दिव्य प्रकाश चारों ओर छा गया। प्रकाश में देवी कौमुदी बिजली की सी चमक के साथ भगवान श्री रंगनाथ में विलीन है गईं। दक्षिण के वैष्णव मंदिरों में आज भी कौमुदी का विवाह उत्सव प्रतिवर्ष सर्वत्र मनाया जावे। विष्णु दर्शन ने भी अपना शेष जीवन भगवान श्री रंगनाथ और उनकी प्रियतमा कौमुदी की उपासना में व्यतीत कर वैकुंठ धाम प्राप्त कियो। दक्षिण में कौमुदी देवी को रंगनाथ भी कहमे है। धन्यवाद।
1: अभी आपने जी भक्त कथा सुनी, भक्त कौमुदी देवी, कथाकार ही नीरू अग्रवाल। और अब ये के संग आज को ब्रज साहित्य कार्यक्रम संपन्न हुए है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आज लखनऊ में एक निजी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2017 से अब तक 9 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन के कारण देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। आज प्रदेश गन्ना, चीनी और एथेनॉल उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इन 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की।
1: हमने 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, वीमेन वर्क फोर्स को प्रदेश के अंदर 3 गुना से अधिक उनकी उपस्थिति देश के अंदर शासकीय सेवा हो या फिर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो कार्रवाई हुई है उनमें उनकी उपस्थिति वहां हुई है। ये आंकड़े वह है जिसने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान के उस संकट से उभारने में मदद की।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छी व्यवस्था होगी जो समय, पैसों और संसाधनों की बचत करेगी। बैठक में ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच और राष्ट्रहित में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय है जिसे शीघ्र लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी और विकसित भारत के संकल्प को गति मिलेगी। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराना देश हित में है, इससे बार बार चुनाव पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव कम होगा और जनता को भी सुविधा होगी।
2: 1952 से लेकर के 1967 तक देश के सभी पार्लियामेंट्री चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। एक साथ चुनाव होने के नाते समय की बहुत बड़ी बचत हुई और आर्थिक रूप से भी जो आज भारी दबाव पड़ रहा है बार बार के चुनाव से, उससे उस समय राहत थी हमारे देश के भीतर। वन नेशन वन इलेक्शन का, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव भी साथ साथ हों तो देश की विकास की गति तेजी से बढ़ेगी और आर्थिक गति भी उससे बढ़ सकती है।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 30वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस समारोह में 279 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गईं। इस दौरान उत्कृष्ट शिक्षकों, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों और विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों और स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया गया। नेफ्रोलॉजी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ नारायण प्रसाद को गवर्नर गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि लोगों का स्वास्थ्य केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजनाएं चला रही है जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने R3 भाषा मूल्यांकन का फ्रेमवर्क जारी किया है जिसके तहत तीसरी भाषा यानी R3 का मूल्यांकन केवल स्कूल स्तर की आंतरिक परीक्षाओं के जरिए किया जाएगा। इस साल R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि जो छात्र R3 पास नहीं कर पाते हैं उन्हें भी 10वीं कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन 10वीं कक्षा में रहते हुए उनके लिए इसे पास करना आवश्यक होगा। CBSE ने स्पष्ट किया कि 8वीं कक्षा वाला 3 भाषाओं का कॉम्बिनेशन 9वीं कक्षा में भी जारी रहेगा और इनमें किसी एक को R3 के तौर पर चुना जाएगा। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में एंटी करप्शन कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार आरोपी रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली है। पुलिस की टीम कल सुबह इनकी कस्टडी लेकर पूछताछ करेगी। वहीं आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर आज अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अंतिम नोटिस चिपका दिया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण में OSD महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 3 जुलाई को जारी नोटिस के बावजूद लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा की ओर से कोई पत्रावली या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। अब ADA ने उन्हें 15 जुलाई तक मानचित्र और अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि निर्धारित समय तक जवाब या वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
3: इनकी पत्नी सुप्रिया जी हैं, उनके द्वारा एक निर्माण किया गया है और उस निर्माण का नक्शा हमारे यहाँ से स्वीकृत नहीं है, इसीलिए जब चालानी कार्रवाई प्रस्तुत की गई JEE के द्वारा तो उसके खिलाफ नोटिस जारी गई। पहली नोटिस पे वो उपस्थित नहीं हुई इसलिए दूसरी नोटिस जारी की गई जिसमें 15 तारीख नियत। अब ये प्रोसीडिंग है जो नगर नियोजन अधिनियम 1973 है उसकी प्रोसीडिंग अगली कार्रवाई की जाएगी।
0: सुप्रीम कोर्ट की पहल पर वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण को आपसी

0: सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने के उद्देश्य से आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दोनों पक्षों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं के साथ संबंधित पक्षकार भी मौजूद रहे। हालांकि दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत के बाद भी किसी प्रकार की सहमति नहीं बन सकी और वार्ता बेनतीजा रही। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने स्पष्ट किया कि ज्ञानवापी विवाद का अंतिम समाधान न्यायालय के निर्णय से ही संभव है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। चित्रकूट में आज आषाढ़ मास के अमावस्या मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में स्नान कर कामदगिरी की परिक्रमा की। पेश एक रिपोर्ट।
1: आषाढ़ मास की अमावस्या के अवसर पर आज सुबह से ही चित्रकूट में श्रद्धालुओं ने स्नान किया और भगवान मदगजेंद्रनाथ और कामतानाथ मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों और मठों में जाकर देवी देवताओं के दर्शन किए। कामदगिर पर्वत की परिक्रमा का सिलसिला भी पूरे दिन जारी रहा। भक्तों की भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र और आसपास के इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरों की मदद से की जा रही है। रामघाट निर्मोही अखाड़ा टेम्पो स्टैंड यूपीटी तिराहा चित्रा गोकुलपुर परिक्रमा मार्ग तथा मेला क्षेत्र के अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस ने लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। अजय प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्रकूट।
0: प्रदेश सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे नीति 2025 में हितधारकों को सुविधाएं देने के लिए इसके प्राविधानों में संशोधन किए हैं। पेश एक रिपोर्ट।
2: SOP संशोधन के अनुसार अब होम स्टे प्रतिष्ठान में कम से कम एक और अधिकतम 8 कमरे पंजीकृत कराए जा सकते हैं। 9 कमरों से अधिक भवन वाली इकाइयां इस नीति के अंतर्गत पंजीकरण के पात्र नहीं होंगे। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 16 बिस्तरों वाली डॉर्मेट्री भी इस श्रेणी के अंतर्गत पात्र इकाई मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑटो रिन्यूअल पंजीकरण समाप्ति की तिथि से 3 माह पहले पोर्टल पर कराया जा सकेगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल ने सभी प्राधिकरण और विभागों को EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए उपयुक्त जमीनें चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। आज इस संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री E-ड्राइव योजना उत्तर प्रदेश में स्वच्छ, हरित और सतत परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों और प्राधिकरणों के साझा प्रयासों से प्रदेश में आधुनिक सार्वजनिक EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास किया जाए। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। इस दौरान उमस भरी गर्मी की स्थितियां बने रहने का भी अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बीते 9 वर्षों में 3 गुना हुई प्रदेश के आम नागरिक की आय, 9 लाख लोगों को मिला रोजगार। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर संयुक्त संसदीय समिति ने लखनऊ में राजनीतिक दलों से किया संवाद। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा, विकसित भारत के संकल्प को गति देगा वन नेशन वन इलेक्शन। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण के आरोपियों रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर। लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लगाया नोटिस। और आषाढ़ मास की अमावस्या पर चित्रकूट में उमड़ी भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में स्नान कर की कामदगिरी की परिक्रमा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।

102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं आपके संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। हमें जो संदेश मिले उनके नाम हैं भोईवाड़ा पैठड़ से शेख चांद, शेख अदनान, शेख नुमान, शेख फुरकान, शेख गुफरान, जाकिया बाजी और उनके परिवारीजन। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। नेहरू चौक पैठड़ से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल सिया। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता ओम, सुभाष चंदन, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा। ये संदेश भेजने वाले श्रोता हैं पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता। गांव गोपी की नगरिया से मिट्ठन लाल सारस्वत, नेहा नीरज, निकेता और इनके माता पिता। गांव नगलापोला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, अनुराधा, रामानुज, पीहू, कृष्णा, राधिका, पवन, करण, नमन और इनके परिवार के सभी सदस्य। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी, ओम कुमार और उनके परिवारीजन। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम, अदीब और उनके परिवारीजन। गांव नौघरा से कोमल मास्टर, यशोदा, सूरज। गांव कुमोदवन से रमेश, सुरेश, सुनील, रचना और उनके साथी। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से सोनिया, अजीत, शिवांश, चुन्ना और इनके माता पिता। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ और शौर्य नामदेव। डोगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का, तन्मय गजभिये। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फरिया, ताहिरा और उनके परिवारीजन। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया। गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। जेल रोड रायगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू निषाद, तरुण, श्रीनिका और श्रीनिजा। पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से अलन मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। बांडीवाला फलजिलिका पंजाब से क्रियांश बगड़िया, योगेश, ओम, गर्मा, रजत और मनीष चौधरी। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नगमा बेगम नास और सरिता गौतम। साहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी मनवर और प्रियांशी। राहड कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय, रुद्रा रामेकर और रामेकर परिवार के सभी सदस्य। सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देवी करानी, गजेंद्र कुमार और हियांश कुमार चंदन। गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजल खान, अन्नू खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। आप हैं कल्याण मुंबई से किशोर हिबराले, सुजाता और प्रतीक हिबराले। नेवासा खुपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघट, माया, शिवांश, चंद्रकला और देवीदास पोपलघट। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर और प्रदीप यमेकर। बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अलकबीर। ग्राम बठेना पाटन छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, काजल पूर्वी, रेशमा साहू और राजेश साहू। जैन मंदिर वाली गली कोरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी।

राजनगर कांतिनिकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रुद्र गुप्ता, साक्षी नेहा, आफरीन, दीप्ति रानी और उनके परिवारीजन और मित्रगण। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविन्द्र रौनक सेन और उनके परिवारीजन। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चेतन मस्कीन, मेघा मस्कीन। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशुरीधान खुराना। आइए सुनते हैं आप सबके लिए आनंद बख्शी की शब्द रचना, संगीत निर्देशक शिव हरी, गायक स्वर उदित नारायण, के फिल्म का नाम डर।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में आशा फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीतानंद बख्शी का था, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हमें जो संदेश मिले उनके नाम हैं नाज मंजिल महसूल सीतामणि से, अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। समता नगर काष्टी से लक्ष्मण जगताप, श्रेया शिंदे, मानसी शिंदे, निशांत जगताप। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल और कुणाल मेहरा। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका सिक्का और उनके परिवारीजन। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर और विजय लक्ष्मी सावनकर। और आइए अब सुनते हैं आप सबके लिए अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों को फिल्म है राजा हिंदुस्तानी। गीत समीर का, संगीत निर्देशक नदीम श्रवण। पसंद भेजने वाले श्रोता जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से किशोर वानखेड़े, उषा, विशाल वानखेड़े। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्रव्या रामटेके। गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलुत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशबद। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहुद्दीन, मोहम्मद फजान, मोहम्मद फरहान, साई मीरा, अजमीन गुड़िया। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। राजनगर मधुबनी बिहार से राजू कुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, रविराज, गौरव कुमार और उनके मित्रगण। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया।

थे कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति, फिल्म थी माशूक। हमें जो संदेश मिले उनके नाम है गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और उनके परिवारीजन। ये संदेश भेजने वाले श्रोता हैं लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर, मीनाक्षी काना, श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हैं मन भावन नैना सत्यनारायण कपिल शोभा हुनिधि भाई बागरी और उनके परिवारीजन। मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। वीरगांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला, भावेश, सन्नी भावसार और उनके परिवारीजन। गटके नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मणराव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता, रियांश और उनके परिवारीजन। श्रीगंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भरत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति पौरुष और उनके परिवारीजन। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कमल। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और उनके परिवारीजन। और अब इसी के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये थे मोहम्मद अजीज़ और अलका याग्निक, फिल्म थी अग्नि। गीतानंद बख्शी का था, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और अब सुनते हैं आनंद बख्शी की शब्द रचना, संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गायक स्वर मना रोदास और अनुराध कौडवाल के हैं। फिल्म है आग और शोला।

0: ऐसे क्या देख रहे हो?
1: सपना, बहुत दिनों बाद तुम्हें।
0: बहुत दिनों बाद क्या?
1: बहुत दिनों बाद तुम्हें इतना सचते सवरते देखा है।
0: तुम्हारा जन्मदिन जो है, हैप्पी बर्थडे, आई लव यू।
1: फिर कहो।
0: आई लव यू।
1: जोर से कहो।
0: आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।

ये थे सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक, फिल्म थी दीवाने। गीत समीर का था, संगीत निर्देशक थे संजीव दर्शन। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं देश गान।

अभी आपने सुनी कुछ देशभक्ति परक रचनाएं। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म का नाम है रंग। पहले सुनिए इस फिल्म में अलका याग्निक और कुमार सानू को।

कुमार सानू के गाए इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की फिल्म थी रंग। इस फिल्म के गीतकार थे समीर, संगीत निर्देशक थे नदीम श्रवण। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचार संध्या की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है।

0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंकलॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों लेकिन लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंकलॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौते के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।

0: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
2: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
1: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
3: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16%

0: से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
1: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline, and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint, and institutional.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96 रुपए और 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani, and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says, ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. France to clash with Spain in first semi-final of FIFA World Cup in Texas tonight. And in men's cricket, India chase a target of 259 runs set by hosts England in first ODI at Birmingham. And now the news in detail. New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and the

यदि कुमार सानू फिल्म थी आशिकी, गीत समीर का था, संगीत निर्देशक थे नदीम श्रवण। और अब सुनते हैं शब्बीर अहमद की रचना, संगीत निर्देशक और गायक हिमेश रेशमिया, फिल्म का नाम है खिलाड़ी 786।

ये थे मीका सिंह और पंकज कपूर और साथी। फिल्म थी मौसम, गीत इरशद कामिल का था, संगीत निर्देशक थे प्रीतम। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 होने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की

0: erfahren kann. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए रेल परिवहन व्यवस्था को अत्याधुनिक, सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेल में हो रहे सुधारों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: अरुणेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: अरुणेंद्र जी। सबसे पहले तो हम इस पर आते हैं कि रेलवे में लगातार सुधार जारी हैं, कई बड़े बड़े सुधार किए जा रहे हैं और अब जो इन नए सुधारों की घोषणा हुई है, इनका उद्देश्य रेलवे को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और लोगों के अनुकूल बनाना है। तो आपके हिसाब से ये सुधार भारतीय रेलवे की कार्यशैली और देश की जो लॉजिस्टिक व्यवस्था है उसमें किस प्रकार से बदलाव लेकर आएंगे?
2: देखिए, सुधार तो रेलवे में एक लगातार प्रक्रिया है, लेकिन जो अभी सुधार देखे जा रहे हैं वो बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। मतलब जो बिल्कुल आधारभूत ढांचा है उसको बदलाव कर रहे हैं, जिससे कि प्रगति में जो बाधाएं अभी तक महसूस हुई हैं उनको बदला जा सके। और एक एक सेक्टर को लेकर आगे बात चल रही है, चाहे फ्लाई ऐश ले लें, सीमेंट ले लें, या कॉन्ट्रैक्टर्स की क्वालिफिकेशन ले लें, उनके जो स्टाफ है उनके स्किलिंग को लेके देखें, तो ये सब चीजों पे ध्यान देके एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। और पुराने कदम जो लिए गए उनको परखा गया है कि उसमें कुछ कमी रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जाए। तो ये एक नीतिगत ढांचा परिवर्तन है जो कि मूलभूत रेलवे की मानसिकता को दिखाता है कि इतने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, तो फिर बाकी बाधाएं जो अभी तक बाधाएं बनी हुई थी उनको हटा दिया जाए।
1: अरुणेंद्र जी, भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है और रेल भूमि वेब पोर्टल शुरू किया जा रहा है, जिससे कि मुआवजा बांटने की बात हो, कानूनी समय सीमा या फिर दस्तावेजों की रियल टाइम निगरानी संभव करने की बात हो, तो ये पोर्टल पारदर्शिता और विवादों में कमी और परियोजनाओं की समयबद्धता सुनिश्चित करने में किस प्रकार प्रभावी सिद्ध होगा?
2: देखिए, इसका मैं एक उदाहरण

0: देता हूँ। एक तो स्टेशन मॉडर्नाइजेशन की बात उठती थी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स को बताया गया कि ये स्टेशन है, इसमें ये मॉडर्नाइजेशन होगा, इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो पहला सवाल ये उठा कि भाई आपके पास रेलवे के पास जमीन कौन सी है, क्योंकि कई जगह अतिक्रमण हो रहा है,
1: जी
0: कई जगह और चीजें बन गई हैं। अब जब तक कोई डिजिटल रिकॉर्ड ना मिले तो वह जाके देख ना सके कि भाई रेलवे की जमीन है या रेलवे पर जमीन नहीं है, तो
1: बिल्कुल
0: आगे बात बने। अभी तक पेपर में ही कंफ्यूजन रहता था, इसके बाद किसकी जमीन है, किसको पैसा मिलना है। अगर ये सब डिजिटल रिकॉर्ड हो जाएंगे तो ये सब जो तकलीफें हैं जो हर प्रोजेक्ट को डिले करती है, बिकॉज भूमि अधिग्रहण ही सबसे बड़ी समस्या है शुरुआत होने में। एक बार प्रोजेक्ट चालू हो जाता है फिर आगे गति पकड़ लेती है। ये अगर रेल भूमि पोर्टल पे सबके लिए हो जाएगा, जिसकी जमीन है, जिसको काम करना है, जिसको पैसा मिलना है, जिसको पैसा देना है और कब पैसा दिया, सब चीज वहां पे लिखी हुई है, क्यों देरी हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, फंड की कमी है या ओनरशिप रिकॉर्ड की कमी है, तो ये सब चीजें आपको रेल भूमि पोर्टल से साफ साफ दिखेंगी। जैसे टिकट रिजर्वेशन में आपको पीनार बर्थ नंबर सब दिखता है, ऐसे ऐसे में इसमें भी दिखेगा।
1: अरुणेंद्र जी, फ्लाई ऐश की अगर हम बात करें तो हर वर्ष लगभग 96 मिलियन टन फ्लाई ऐश का उपयोग निर्माण कार्यों में होता है और इसके खुले पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या रहती है। तो अब विशेष कंटेनरों में इन्हें भेजने का निर्णय लिया गया है, तो ये जो नई व्यवस्था है इससे पर्यावरण संरक्षण और रेलवे की माल ढुलाई क्षमता और औद्योगिक जगत को किस प्रकार लाभ होगा, खासतौर पर जब हम इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि रेलवे की आमदनी जो है वो भी बढ़ानी है।
0: लेकिन सबसे बड़ा जरूरी बात यह है कि इस चीज का जो इस्तेमाल करने वाले हैं, जो इंडस्ट्री है, उनसे तालमेल करके ये डिसीजन लिया गया है कि इसको कंटेनराइज किया जाए। और जहां से शुरू होती है कहानी, वो खुले वैगन्स में हो या किसी और तरीके से हो, उसको हटा के कंटेनर में डाल के और नियत स्थान तक भेजा जाए, और जहां उतरे वहां भी ये समस्या पैदा ना करे। पहले तो रेलवे अपना वैगन लेके चली जाती थी और वहां पड़ा रहता था खुले में, तो वहां तकलीफ पैदा होती थी। अब जहां उतरेगा वहां तभी खुलेगा जब उसको इस्तेमाल करना हो, जरूरत हो, और फिर खुलने के तरीके, वैगन के डिजाइन, सब कुछ जो है उसी तरीके से बनाए गए हैं, तो ये पर्यावरण में बहुत फर्क पड़ेगा। रेलवे की माल अगर आपको 95 मिलियन टन सीमेंट में भेजना है फ्लाई ऐश, तो एक बहुत बड़ा मटेरियल है जो कि लोडिंग
1: जी
0: के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ साथ पर्यावरण की तो बहुत बड़ी समस्या है, जब फ्लाई ऐश के जहाज बनती है उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही तकलीफ है, जो खत्म होने की आसार दिखते हैं।
1: जहां तक विशेष कंटेनरों की हम बात कर रहे हैं, और तो लॉजिस्टिक्स एक बड़ा मुद्दा आता है कंटेनर के संदर्भ में, और रेल मंत्रालय फ्लाई ऐश के साथ साथ उर्वरक भी भेजता है, अनाज भी है, अन्य वस्तुओं का परिवहन भी किया जाता है, तो इन कंटेनरों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो बदलाव है ये भारत की मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नीति और माल परिवहन प्रणाली को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगा, साथ ही जो हम आधुनिक रेलवे को बनाने की बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा?
0: कंटेनराइजेशन जहां जहां आया है वहां पे सफलता मिली है, और ये एक बड़ी उपलब्धि है रेलवे की। रेलवे ने अपनी सोच को थोड़ा बदला है, और इसमें फर्टिलाइजर, फ्लाई ऐश, सीमेंट या सब ऐसी चीजों को लेकर आ रहे हैं जो कंटेनर में जाके जाए और आगे बढ़ के जिसको जरूरत हो, किसी को पूरी जरूरत होती है, किसी को कम रेक की जरूरत होती है, तो कंटेनर तो एक बहुत ही छोटा एक रेक 100 × 1/40 1/45 का होता है,
1: जी
0: तो उसके लिए आसानी रहेगी, उसके लिए अनलोडिंग जब चाहे तब कर सकता है, मूविंग वेयर हाउस ऑल्सो। तो जब भी आप देखेंगे कंटेनर आया है तो कंटेनर मूवमेंट आसान है, लोडिंग अनलोडिंग की फैसिलिटी में तकलीफ नहीं है। कंटेनर आप जो यार्ड जाके देखेंगे वो बहुत रोड अप्रोचेबिलिटी उनमें बड़ी अच्छी होती है। ये जो नीति परिवर्तन हुआ है कि कंटेनराइजेशन को लेके आएंगे, कंटेनराइजेशन और एफिशियंट और अच्छा बनाएंगे, इससे पर्यावरण, जिससे ग्रीन क्रेडिट्स, कार्बन क्रेडिट्स, सब में आपको फायदा दिखेगा।
1: इसी से जुड़ा एक और मेरा सवाल आपसे है कि रेलवे कंटेनर संचालन के लिए यूनिफाइड लाइसेंस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, जिसमें इसे 20 वर्षों तक स्थिर रखने की बात कही है, तो ये जो नई नीति इस तरह से आ रही है इसमें निजी निवेश बढ़ने की संभावना आपको नजर आती है, और लॉजिस्टिक का जो काम है उसमें नए प्लेयर्स को भी काफी मौका मिलेगा?
0: सबसे पहले देखिए 2007-08 में शुरू हुआ था जब CTOs आए थे, इंटरनल प्लेयर्स। अभी दूसरा जबरदस्त तरीका अपनाया गया है लोगों को लाने का, जिसमें कि प्रोसीजर तकलीफ है, जो सरकार से जो भी डील करता है उसको लगता है बहुत ज्यादा नियम है और एक नियम खत्म होते ही दूसरा नियम शुरू हो जाता है, ये सब चीज उन्होंने हटा दी है और कहा है कि आप एक बार एक मुश्त राशि दीजिए, रिन्यूअल में कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ना चाहे 20 साल के लिए है, तो वो सब चीजें आपको एक बार, वंस यू आर इन, आप हमेशा ही अंदर ही रहने वाले हैं।
1: जी
0: तो आप कंटेनर प्लेयर जो सीरियस प्लेयर है, तो आप
1: बिल्कुल
0: वाकई आना चाहते हैं, वाकई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा माध्यम खुल गया है।
1: अरुणेंद्र जी, जब हम उर्वरक की बात करते हैं तो किसानों और उर्वरक कंपनियों या फिर रेलवे की जो माल परिवहन व्यवस्था है इसमें इनका बड़ा रोल होता है। अब 50 अलग अलग माल भाड़ा स्लैब समाप्त कर प्रति टन प्रति किलोमीटर की पारदर्शी व्यवस्था लागू की जा रही है, ये जो बदलाव है इसका कितना इम्पैक्ट आपको लगता है कि जब ये होगा तो इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा, कंपनियों को भी लाभ मिलेगा और रेलवे भी इससे मुनाफे में होगा?
0: देखिए रेलवे मुनाफा तो एक चीज है, बट जो इस्तेमाल करता है, अगर उसे कहा जाए कि आपके पास 50 फेयर है,

0: आप चेयर कार में जाए तो आप चेयर कार 50 तरह की है, तो आपका
1: जी
0: बिल्कुल दिमाग जो है खत्म हो जाएगा। इस तरफ ध्यान नहीं गया था कि भाई जो इस्तेमाल करते हैं उनको कितने तरह के फेयर देने पड़ेंगे। तो 50 तो एक ऐसी जबरदस्त फिगर है कि आने के पहले ही लोग आप भाग जाएंगे, और जब तक आप उसको अच्छी तरह बिल्कुल तो जानते ना हो। लेकिन अब जब बात हटा दी गई तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपने ट्रक से इतने में लगता है पैसा, टेम्पो से इतना लगता है, रेल इतना लेती है, इतने समय पहुंचाती है, तो एक बहुत बड़ी पारदर्शिता आ जाएगी और ये रेट समझ में आ जाएंगे कि भाई कितना खर्चा आएगा मेरे को, और तुरंत पता चल जाएगा। और ज्यादा आपको इसमें तकनीकी और या प्रोसीजर जानकारी की जरूरत नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेन रिजर्वेशन के माध्यम से 3 AC का किराया कितना है आप
1: जी
0: देख लीजिए, एक टैक्सी का किराया कितना है आप कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, कोई
1: जी
0: तकलीफ की बात नहीं है।
1: जी
0: इसमें ये प्रोसीजरल चेंजेस हो रहे हैं, अगर फेयर स्ट्रक्चर में फेयर स्लैब्स को खत्म करके एक स्लैब बनाने की योजना, ये तो एक क्रांतिकारी कदम है रेलवे की प्रगति के लिए, और सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए जो इसको इस्तेमाल करेंगे।
1: अरुणेंद्र जी, जब हम अनाज की ढुलाई की बात करते हैं तो पारंपरिक परिवहन के दौरान लगभग 4 से 5% अनाज या फिर दालों या फिर जो भी इस तरह की चीजें होती हैं उनके नुकसान की बात कही जाती है। अब इन्हें भी कंटेनरों में ले जाने की मंजूरी दे दी गई है, तो ये जो व्यवस्था की जा रही है खाद्य सुरक्षा, भंडारण दक्षता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भी महत्वपूर्ण, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इस बदलाव को आप एक आम जनमानस के लाभ के हिसाब से कैसे देखते हैं?
0: देखिए, अगर आप नुकसान की भरपाई की बात करें तो नुकसान तो होता ही, भरपाई बाद में होती, लेकिन नुकसान हो ही ना, ये चीज कंटेनर की एक देन है। क्योंकि कंटेनर सील करे जा सकते हैं, लॉक तो बहुत ही आम बात है, कंटेनर का डिजाइन ऐसे किया जा सकता है कि कोई उसको बाहर से तोड़ा ना सके, वैगन में दोबारा सेल लगा लेते हैं और फिर कंटेनर का ध्यान दिया जाएगा कितने कंटेनर है, कहाँ उतरे, फिर उसको वापस लाना है। तो इस तरह से आपको जो रास्ते में जो चोरी की बात उठती है वो कंटेनर से तो बहुत ही कम हो गई है, जो कि हम कंटेनर ट्रैफिक में अभी भी देखते हैं कि जो कंटेनर से सामान जाता है उसके चांसेस लीकेज के, थेफ्ट के बहुत ही कम है, और ऑनलाइन उसको देखा भी जा सकता है
1: जी
0: कंटेनर कहाँ है आपका। एक वैगन देखना इतना आसान है नहीं है जितना एक कंटेनर देखना आसान है अभी ट्रेन के पोर्टल पे।
1: यानी कि ये बहुत ही आसान बनाया जा रहा ताकि सारी जो सूचना है पूरी तरह से पारदर्शी होकर पहुंचे।
0: जी हाँ बिल्कुल, मतलब जो रेलवे का आगे बढ़ना है तो कस्टमर ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: और कस्टमर ओरिएंटेशन में प्रोसीजर की कमी हो, पारदर्शिता की हो, और साथ साथ एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े, और फिर दोनों लोग को सहूलियत हो,
1: जी
0: और सहूलियत सब चीजें तभी होती हो जबकि आपको जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसे जो लागत है उसकी कमी हो, और साथ साथ रेलवे को नुकसान ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी सोच, जो पावन रिफॉर्म की बात हो रही है और आज जो 11 नंबर 17 नंबर पर रिफॉर्म जारी किए गए हैं,
1: जी
0: ये
1: जी
0: आप देखेंगे धीरे धीरे करके इतना दबाव हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे हुआ क्या रेलवे को साल भर के अंदर।
1: जी अरुणेंद्र जी, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार रेलवे को आधुनिक बनाने की बात करते हैं। अभी उन्होंने स्किल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क की बात कही है, तो रेल परियोजनाओं में जो काम करते हैं खासतौर पर प्लंबर है, वेल्डर है, फिटर है, राजमिस्त्री या अन्य जो कर्मचारी हैं, इनके लिए कौशल प्रमाणन व्यवस्था लागू की जा रही है, तो इस पहल से आपको लगता है कि निर्माण की गुणवत्ता बेहतर होगी, सुरक्षा मानक जो है हमारे उनमें काम बेहतर होगा, और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की जो बात है उसमें काफी सुधार आएगा?
0: ये कदम ऐसा है जो उसको अगर आप मापदंड के रूप में देखें, अब आपको पहले ट्रेन करना पड़ेगा वेल्डर कैसा है, ठीक है नहीं है, उसकी अब कोई जरूरत नहीं। जैसे आप समझते हैं कार के ड्राइवर का लाइसेंस होता है, उसको मालूम
1: जी
0: है लाइसेंस है तो आप गाड़ी चला सकते हैं, अगर आप वेल्डर लाइसेंस है, प्लम्बिंग लाइसेंस है, लाइसेंस में किस किस तरह के आप काम कर सकते हैं, आपका स्वागत है। इससे क्या होगा कि जो कंपनियां हैं आप देख रही हैं लोगों को जिनको भर्ती करना चाहती है उसके लिए बहुत बड़ा फायदा होने को दिखता है, जो कंपनियां हैं उनके लिए अच्छा है, और मेरे पास अगर सर्टिफिकेट है तो मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं जाके काम कर सकूं, उनके पास मेरे पास लाइसेंस है, और एक ऑथराइज्ड जो संस्था ने मुझे सर्टिफिकेट दिया जिसमें इन्होंने काफी ट्रेनिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद प्रमाण पत्र जारी करते हैं, जो रिकॉग्नाइज करने की व्यवस्था है उसको एक ढांचा नीतिगत दे दिया गया है, और ये मजबूर किया गया है कि अपने को ऐसे ही लोगों को इस्तेमाल करें जैसे कि काम आगे बढ़ने में गति हो, कभी काम खराबी ना हो, गलत काम ना हो, और सीधी दिशा में सही तरीके से काम हो।
1: वैसे रेल मंत्रालय का लक्ष्य है कि अगले 24 महीने में इन प्रणालियों को, इन सभी परियोजनाओं को लागू किया जाए, तो आपको लगता है कि भविष्य में ये मॉडल अन्य बुनियादी ढांचा परियोजना और सरकारी निर्माण कार्यों में भी काफी मददगार साबित हो सकता है?
0: अभी देखिए शुरुआत हुई है और आप सुना होगा आपने स्पीच में कि 3 महीने में काफी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हुए हैं, तो ये आगे बढ़ता जाएगा। रिफॉर्म तो बात कही जा रही है, रिफॉर्म तो जैसे आगे बढ़ेंगे जो रिफॉर्म्स को भी आगे रिफॉर्म करना पड़ेगा, तो इसलिए ये रेलवे की सोच की बहुत बड़ी चीज है। ये चीज जो है रेल के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि नीतिगत सोच को बदली करना एक बहुत तकलीफ है, और ऐसी संस्था जो इतनी पुरानी संस्था है,
1: जी
0: एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा कदम है जो हमारे सामने खुलता हुआ नजर

0: बिल्कुल अरुणेंद्र जी, बिल्कुल अंत में कार्यक्रम के पहुंच चुके हैं। विजन 2047 की बात करें तो रेल मंत्रालय आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण, निजी भागीदारी, हरित परिवहन और तकनीकी नवाचार पर लगातार जोर दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 10-20 वर्षों में भारतीय रेलवे को विश्व की जो अग्रणी रेल प्रणालियां हैं उनमें शामिल करने के लिए किस तरह की प्राथमिकताएं ली जा रही हैं, किस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं?
1: देखिए, 2047 से पहले रेलवे काफी कुछ कर लेगी। सबसे ज्यादा जरूरी है ये फ्रेट कॉरिडोर और हाई स्पीड बुलेट ट्रेन। इन दो में रेलवे की महान प्रगति आपको देखने को मिलेगी।
0: जी
1: भारतीय वर्जन बुलेट ट्रेन का आपको देखने को मिलेगा और ये जो कंटेनराइजेशन में पहल है इसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट रेलवे कम करेगी। और रिजर्वेशन ऑन रिक्वेस्ट, जिस दिन आप चाहें रिजर्वेशन आपको मिले, ये दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं और रेलवे इस दिशा में आगे काम कर रही है। तो
0: जी
1: ये कोई नहीं चाहता कि वेट लिस्ट टिकट बैठ लेके और आप आगे ट्रेवल करें टूरिज्म के बारे में मध्यम से। कन्फर्मेशन हर एक को चाहिए होता है और रेलवे इसी दिशा में नई ट्रेनें, नई लाइनें और लाइनों में ज्यादा कैपेसिटी करना, सिग्नलिंग सुधार करना, इसमें बहुत
0: जी
1: जबरदस्त काम हो रहा है, काफी पैसा भी खर्च हो रहा है। तो ये दो तीन चीजें सामने आती हैं जो कि आप देखेंगे कि जल्दी ही जल्दी इसमें लोगों को राहत और मिलती जाएगी। धन्यवाद।
0: अरुणेंद्र जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे रेल परिवहन व्यवस्था को अत्याधुनिक, सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेल में हो रहे सुधारों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: मंथन।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण।
2: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। खेल दर्पण का आज का अंक लेकर हाजिर हूं मैं मिथिलेश श्रीवास्तव। आज के अंक की प्रस्तुति है आकाशवाणी बरेली की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो विशेष खिलाड़ियों से और जानेंगे इन खिलाड़ियों का खेल, कैसे इन्होंने मैदान पर अपना परचम लहराया और भी बहुत कुछ। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
3: नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित शर्मा है
2: जी,
3: और मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से बिलोंग करता हूं और मैं बरेली सेंटर में हॉकी कोच के रूप में प्रशिक्षित हूं।
2: बचपन में जो है यही पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि पढ़ने से नवाब बनोगे और खेलने से खराब हो गए। तो आपकी लाइफ में क्या था?
3: मेरे लाइफ में भी ऐसा ही था। तो जो मेरे पिताजी थे वो मध्य प्रदेश पुलिस से अभी रिटायर हुए हैं
2: जी जी,
3: वो भी कबड्डी खेला करते थे और स्विमिंग खेला करते थे।
2: अच्छा,
3: तो उस तरीके से तो जैसे कि आजकल माहौल होता है, जो पहले क्रिकेट हम लोग, मैंने पहले सबसे पहले क्रिकेट ज्वाइन किया, फिर उसके बाद जो हमारे जो कॉलोनी था और कॉलोनी में एक दर्पण हॉकी स्टेडियम था।
2: अच्छा,
3: तो वहां पे हॉकी का काफी पुराना चलता था, फिर वहां जाके मेरे पिताजी वहां लेके गए, फिर वहां से मैं धीरे धीरे करके हॉकी खेलना स्टार्ट किया,
2: हॉकी खेलना शुरू किया। लेकिन क्रिकेट में, क्रिकेट नहीं जमा आपको?
3: नहीं, क्रिकेट नहीं जमा। क्रिकेट थोड़ा सा अच्छा गेम है।
2: हाँ,
3: पर यह है कि बस क्रिकेट के लिए थोड़ा सा, एक खिलाड़ी है वही बैटिंग आने के लिए काफी देर तक वेट करना पड़ रहा है और थोड़ा सा
2: कई बार नहीं भी आती है,
3: नहीं भी आती है।
2: तो इसलिए आपको ये लगा कि हाँ हॉकी में भाई
3: हाँ
2: हमेशा आपको एक्टिव रहना है,
3: एक्टिव रहना है।
2: अच्छा, लेकिन फुटबॉल में भी तो ऐसा होता है?
3: हाँ, फुटबॉल भी खेला है हमने।
2: अच्छा,
3: फुटबॉल जो ऐसे कभी कभी जो बारिश होती थी उसका, स्कूलों में और उसके बाद

0: जो हमारे जो पास के पार्क वगैरह होते थे उसमें हम हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी खेला करते थे।
1: अच्छा, लेकिन हॉकी को फिर आपने क्यों चुना है?
0: हॉकी को इसलिए चुना क्योंकि जब हम पहली बार वहां पे देखा, हमने वहां पे बाहर खड़े हुए कॉलोनी में खड़े हुए थे, पास में ही है कॉलोनी में हमारे, तो देखा वहां पे सर अगर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, एक अविनाश भटनागर जी थे सर हमारे कोच, आज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, एक रईस कुरैशी जी थे, वो दोनों वहां पे प्रैक्टिस करवा रहे थे, हमने उनको देखा तो ऐसे खड़े हुए थे, फिर हमारे जो सीनियर थे उन्होंने बोला हॉकी अगर खेलना है, बोला हाँ खेलना है, बोला आ जाओ, फिर वहां पे जो हॉकी प्रोवाइड करवा दी जाती थी
1: अच्छा
0: तो वहां जाके एक दो दिन खेला, उसके बाद जो हॉकी अच्छा लगा और कॉलोनी से भी काफी बच्चे जाते थे तो खेलते खेलते वो हमारा मन लगने लगा
1: मन
0: उसमें।
1: लग गया एक तरह से, कहा जाए तो फिजिबिलिटी जो
0: हाँ
1: उपलब्धता आपके आसपास थी वो
0: वो
1: हॉकी
0: हाँ
1: की
0: जो
1: तरफ से थी।
0: एनवायरनमेंट वहां पे जो हॉकी का था दर्पण में, दर्पण जो कॉलोनी है वो काफी सारा, मतलब हर तीसरे चौथे घर में से एक हॉकी खिलाड़ी है उधर।
1: अच्छा
0: हाँ काफी है।
1: बिल्कुल। तो और हॉकी की जहां तक बात की जाए, तो बचपन में आपने बताया कि पिताजी पुलिस में थे
0: हाँ
1: और स्विमिंग करते थे,
0: हाँ
1: स्विमिंग नहीं ट्राई किया आपने?
0: नहीं स्विमिंग नहीं किया, तो
1: अच्छा
0: वो स्पोर्ट्स से थे तो उनका मतलब यही था कि बच्चे को खेल पढ़ाई के साथ साथ खेल खेलना भी जरूरी होता है,
1: जरूरी है।
0: तो उनका ये कहना था कि आप पढ़ तो रहे ही हैं पर सुबह उठो कोई ना कोई एक गेम खेलो।
1: तो मतलब पिताजी का काफी एक
0: हाँ
1: सहयोग भी मिला
0: पिताजी
1: और
0: का
1: उनका
0: काफी प्रभाव
1: प्रभाव भी पड़ा,
0: भी रहा।
1: क्योंकि वो उनका नेचर भी था और
0: हाँ
1: उनका रूटीन भी था।
0: रूटीन भी था।
1: अच्छा, इसके बाद फिर जहां पढ़ाई की बात की जाए, खेल के साथ साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज किया आपने?
0: जब ऐसे मैं अभी जो असाई में कोचिंग कर रहा हूँ तो मैं जब 9th क्लास में था, 8th क्लास में था, तो एक साई का ही सेंटर टीकमगढ़ में था,
1: अच्छा
0: तो टीकमगढ़ में मेरा चयन हुआ जो ट्रायल देने गए, तो वहां हमने हॉकी खेला, हॉकी खेलने के बाद फिर मैंने भोपाल में भी एक साई का सेंटर है वहां पे भी मैंने प्रयास किया तो वहां पे भी मेरा चयन हुआ, फिर वहां मैं 3 से 4 साल वहां चौहान सर थे,
1: अच्छा
0: भाई एस चौहान सर जो अभी रिटायरमेंट हो गए हरियाणा के थे, तो उनके अंडर में मैंने 3 से 4 साल वहां पे भोपाल में 2014 तक हॉकी खेली, उसके बाद जब हम आ गए उसके ओवर एज हुए तो उसके बाद फिर देखा, उसके बाद फिर धीरे धीरे जब एक खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी जब वो पढ़ाई में जाता है तो थोड़ा सा बहुत चेंज आता है, तो फिर धीरे धीरे थोड़ी सी मेहनत की और फिर थोड़ा और मेहनत की, फिर उसके बाद जो बैचलर होती है बीपीएड वगैरह वह किया, उसके बाद एमपीएड किया, फिर थोड़ा सर्टिफिकेट हो, जो हमारे सीनियर्स थे
1: जी
0: उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि हाँ आप खेल बंद हो गया है तो थोड़ा इस लाइन में भी आप जा सकते हो, क्योंकि आजकल जो है स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो मेडल होता है मेडल वालों के ही जॉब है, तो उसके बाद अगर आपके पास काफी सारे ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं वो जो एक मनोबल टूट जाता है उनका जब खेल खेलने के बाद उनको जॉब नहीं मिलती है तो उनका मनोबल टूट जाता है, तो मैं तो उनको ये सबको यही बताना चाहूंगा अगर मनोबल मत तोड़िए, उसके बाद आपके पास काफी लाइनें हैं, अगर आप उसमें आप घुस जाएंगे तो फिजिकल एजुकेशन में जब जाएंगे हॉकी के साथ साथ और दूसरे गेम के साथ साथ तो काफी लाइन है, आप उससे टीचर भी बन सकते हो, आप कोच भी बन सकते हो, आप प्रोफेसर भी बन सकते हो, तो काफी चीजें हैं, तो मतलब वहीं आप अपना गेम को ड्रॉप मत करो। ऐसे ही मेरे साथ मेरे जो सीनियर्स थे काफी उन्होंने बताया मुझे कि हाँ अब तू बीपीएड कर, तो फिर मैंने बीपीएड किया जीवाजी यूनिवर्सिटी से, फिर उसके बाद फिर मैंने बोला अब क्या है अभी तो जॉब नहीं मिल रही है, फिर उन्होंने बोला कि तू और पढ़ाई के, फिर मैंने LNIP से सर्टिफिकेट कोर्स किया, फिर मास्टर, फिर मैंने और पढ़ाई की, फिर LNIP में मास्टर डिग्री किया, फिर मास्टर डिग्री करने के बाद फिर सोचा कि हाँ
1: ये LNIP क्या है?
0: LNIP लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है
1: अच्छा
0: जो
1: अच्छा
0: कि ये 1956 में बना हुआ था,
1: अच्छा
0: हाँ, और भारत का मक्का ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहा जाता है,
1: अच्छा
0: यहाँ से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्टर जितने भी फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स प्रोफेसर होंगे अच्छे लेवल पे वो इसी कॉलेज से पास आउट होंगे, और बेसिकली ये एशिया का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है
1: जी
0: फिजिकल एजुकेशन में, और कोचिंग में जैसे अपना NIS पटियाला माना जाता है, तो फिर वहीं से मैंने मास्टर डिग्री किया, मास्टर डिग्री के करने का जो घर ग्वालियर में ही था तो वहां से डिप्लोमा भी करवाते हैं वहां पे, तो डिप्लोमा नहीं स्पोर्ट्स कोचिंग में, तो फिर मैंने वह डिप्लोमा स्पोर्ट्स कोचिंग भी किया, जब वो डिप्लोमा मेरा कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर मैंने उसमें वैकेंसी आई हुई थी खेलो इंडिया सेंटर में वहां मैंने अप्लाई किया, तो वहीं ग्वालियर में पास में जो वुमेन्स हॉकी अकेडमी है वहीं मैंने खेलो इंडिया सेंटर में ज्वाइन किया, जब मैं 2 साल मैंने वहां पे वर्क किया उसके बाद फिर जो अपने जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है SAI उसमें वैकेंसी आई, उसमें वैकेंसी के आने के बाद फिर मैंने वहां पे फिल किया, जो मैंने हॉकी इंडिया के लेवल 1 लेवल जो हॉकी इंडिया एक कोर्सेज करवाती है जो उसमें मतलब कोचेस के लिए लेवल 1 होता है बेसिक होता है
1: अच्छा
0: वो मैंने पास किया, उसके बाद लेवल 1 होता है वह मैंने पास किया, उसके बाद फिर हॉकी इंडिया के लेवल 1 पास किया, ओके इंडिया का लेवल 2 पास किया।

0: और उसके इंटरनेशनल लेवल वन जो कोचिंग होती है उससे आप इंटरनेशनल लेवल तक भी आप कोचिंग कर सकते हो।
1: अच्छा
0: तो वो है लेवल पास किया और उसका दूसरा भी पास किया और अभी तीसरा मैं करके आया हूँ।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ तो वह गया तो उसका मुझे साई के वैकेंसी में फायदा भी मिला और जो इंटरव्यू वगैरह है वहां पे इंटरव्यू भी हुआ। उसके बाद मुझे दिल्ली में इंटरव्यू के बाद मुझे भारत सरकार के ये सेंटर में बरेली में चयन हुआ।
1: जी। तो ये जो आप लेवल्स बता रहे
0: हाँ
1: हैं इनकी क्या वेटेज होती है, कैसे क्या उसका
0: ये
1: महत्व होता है?
0: वेटेज आज के जमाने में जो अपडेट है जो फॉरेन कंट्री में क्या रहता है, जैसे फुटबॉल के पहले लेवल चलते थे तो लेवल ए लेवल बी टाइप के, जैसे ही हमारे जो FIH है फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी का, तो उनके द्वारा ये हॉकी के बेसिक लेवल स्टार्ट किए हैं। बेसिक लेवल में क्या होता है कि जो अपडेट आ रही है नई नई हॉकी जो स्टार्ट हो रही है कि कैसे आपको ग्रिप पकड़नी है।

0: सेंड हुआ।
1: जी जी तो ये जो आप लेवल्स बता रहे हैं,
0: हाँ,
1: इनकी क्या वेटेज होती है, कैसे क्या
0: ये वेटेज
1: होता
0: आज के जमाने में जो अपडेट है, जो फॉरेन कंट्री में क्या रहता है, जैसे फुटबॉल के पहले लेवल चलते थे, तो लेवल ए लेवल बी टाइप के, जैसे ही हमारे जो FIH है, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी का, तो उनके द्वारा ये हॉकी के बेसिक लेवल स्टार्ट किए हैं। बेसिक लेवल में क्या होता है कि जो अपडेट आ रही है, नई नई हॉकी जो स्टार्ट हो रही है, कि कैसे आपको ग्रिप पकड़नी है, कौन कौन सी ग्रिप है, बच्चे को किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे इजी तरीके से हम उनको सिखा सकते हैं, और कैसे प्लेयर को एनालाइज करना है, कैसे प्लेयर को आइडेंटिफाई करना है, कैसी हमारी स्ट्रेटजी होगी, क्या हम टैक्टिस होंगे जब अपोनेंट से हम हार रहे हों, जीत रहे हों, क्या हमारी साइकोलॉजी होंगी ड्यूरिंग मैच, बिटवीन द मैच और आफ्टर मैच। तो वह चीज जो फॉरेन कोचेस होते हैं, वह हमें आके इसमें 4 से 5 दिन का जो कोर्स होता है, उसमें वो हमें अपडेट कराते हैं।
1: अच्छा,
0: फिर उसके बाद फिर वो हमारा रिजल्ट तैयार करते हैं और वो हमें टास्क देते हैं, फिर देन हम उसको पास करते करते आगे बढ़ते हैं।
1: अच्छा, मतलब एक कोर्स को पास किया, फिर नेक्स्ट
0: दूसरा
1: कोर्स,
0: है, फिर
1: अच्छा
0: तीसरा
1: अच्छा
0: है, ऐसे।
1: तो अभी आप जो तीसरा कोर्स पास करके आए हैं,
0: हाँ
1: ये इसमें क्या था, क्या मतलब इस लेवल का मतलब क्या था?
0: हाँ ये जो फेडरेशन इंटरनेशनल FIS लेवल 3 कोर्स था,
1: जी जी
0: तो उसमें क्या था, ये इसमें जो हाई लेवल जो मैच चल रहा है अभी इंटरनेशनल, मतलब इसका जो कोर्सेज है वो सीधे भुवनेश्वर में होते हैं। भुवनेश्वर
1: अच्छा
0: में जैसे FIS के जो मैचेस चल रहे होंगे इंटरनेशनल मैचेस, ड्यूरिंग द मैचेस उस समय हमें बुलाया जाता है, फिर हमें उस मैच के बारे में एनालाइज करवाया जाता है, फिर वो हमें बताया जाता है कि पहले हम खुद एनालाइज करेंगे उस मैच को, हम बताएंगे कि इस मैच में क्या क्या और कर सकता है। एक एक टीम दे दी जाती है, वैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, तो मुझे इंडिया दे दी जाएगी और सामने वाले को ऑस्ट्रेलिया दी जाएगी, फिर हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, एक
1: अच्छा
0: प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ तैयार बनाएंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेस बनाने के बाद जब हम उनको प्रेजेंट करेंगे, देन हमारे जो उसमें जो गलतियां होंगी, फॉल्ट होंगी, जो फॉरेन कोचेस होंगे, जो इंडिया वाले कोचेस हैं, जो सीनियर कोचेस हैं जो FIS में है, वह उनको हमें बताएंगे कि हाँ ये आपकी थोड़ी सी गलतियां हैं, और फिर आपको कैसे उस मैच को एनालिसिस करना है, कैसे उसकी स्ट्रेंथ पकड़ना है, कैसे उसकी वीकनेस पकड़नी है।
1: अच्छा, और कौन कौन से लेवल होते हैं? 3 के बाद फिर अब क्या, 10 तक
0: हाँ
1: लेवल
0: नहीं,
1: होते हैं?
0: लेवल 4 रहते हैं,
1: 4 तक रहते
0: लेवल
1: हैं।
0: 4 रहते हैं,
1: अच्छा
0: फिर 3 के बाद जो एजुकेटर्स हो जाते हैं, उसके बाद जो बेसिक लेवल्स होते हैं ना, उनके लिए आप उस पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
1: तो क्या इसके जरिए क्या कुछ सैलरी अपग्रेडेशन भी होती है?
0: नहीं, सैलरी अपग्रेडेशन
1: अच्छा,
0: नहीं होती, इसके जगह कोच अपडेट होता है,
1: कोच अपडेट होता है,
0: कोच
1: मतलब एक
0: अपडेट
1: तरह से
0: ये
1: नॉलेज गेन का।
0: नॉलेज गेन है, ये हमारे लिए ही फायदा है।
1: अच्छा, आपने तो राष्ट्रीय स्तर पे भी खेला
0: जी
1: है, तो पहला मैच कौन सा था आपका?
0: जी हमारा था मध्य प्रदेश वर्सेस छत्तीसगढ़ का था,
1: अच्छा
0: सबसे पहले मैं वहां पे गाजियाबाद में खेला था।
1: अच्छा
0: हाँ 2006-07 की बात है जब हमने खेला था, पहली बार मैच खेला, उसका जीते भी थे, छत्तीसगढ़ से मैच जीते थे। तो ऐसे ही फिर उसके बाद फिर हम औरंगाबाद गए, फिर दिल्ली में भी हुआ, फिर ऐसे धीरे धीरे करके काफी सारे जो नेशनल लेवल टूर्नामेंट थे वो खेले।
1: कौन से पोजीशन पे खेलते थे?
0: मैं सेंटर फॉरवर्ड खेलता था।
1: सेंटर फॉरवर्ड।
0: जी
1: तो कुछ अगर यादें अगर साझा करना चाहें,
0: सेंटर
1: कोई
0: फॉरवर्ड
1: ऐसी कोई ऐसा मैच जो काफी डिफिकल्ट था या आपके लिए डिफिकल्ट था, टीम के लिए भले ना हो।
0: हाँ, काफी सारे मैच ऐसे होते हैं जब जब आप मेन मेन पोजिशन सेमीफाइनल्स होते हैं, तो ऐसे ही एक मैच था औरंगाबाद में सेमीफाइनल्स में, तो वह जो सेमीफाइनल मैच होते हैं उस समय आपके पास जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती, तो उस समय आपकी पहले क्या होती थी, 11 पोजीशन होती थी इंक्लूडिंग गोलकीपर से लेके
1: अच्छा
0: फॉरवर्ड तक, तो 5 फॉरवर्ड होते थे, 3 डिफेंडर होते थे, दो तीन हाफ, 2 डिफेंडर, एक गोलकीपर होता था। अब जो नया आ रहा है उसमें उन्होंने कर दिया कि 3 लेवल में बांट दिया उन्होंने, डिफेंडर, स्ट्राइकर और मिडफील्डर। तो उस समय जो हॉकी थी वो थोड़ी सी स्लो थी, है ना, अब जो है हॉकी थोड़ी सी फास्ट और होती जा रही है। तो उस समय पहले क्या रहता था कि जो कोचेस भी होते थे और जो साथ में, वो ये कहते थे कि आप सिर्फ अपना काम करिए, तो ऐसे जब बॉल हमारे सेंटर में आती थी तभी हमारा काम होता था स्ट्राइकरों का, फॉरवर्डों का, कि हाँ हम जाके गोल करें। अब जो हॉकी चेंजेस है उसमें क्या रहता है कि स्ट्राइकर भी पीछे आएगा और डिफेंडर भी आगे जाएगा, मतलब कि आपको टोटल हॉकी है,
1: टोटल है।
0: स्ट्राइकर भी गोल मारेगा और डिफेंडर भी गोल करवाएगा आपका। तो पहले ऐसे काफी सेमीफाइनल मैचेस होते थे, उस समय हम सिर्फ बॉल का वेट करते थे, अगर हम पीछे जाते थे तो वहां से कोचेस जो होते वो कहते थे पीछे मत आ, फिर आगे गोल कौन करेगा, तो इस चक्कर में काफी मैच हार भी जाते
1: तो
0: थे।
1: कुछ टेक्निक्स जो है अपडेट हुई हैं जिस,
0: हाँ
1: अच्छा, इसकी वजह से क्या कुछ रिजल्ट इंप्रूव हुआ है?
0: हाँ ये जो टोटल हॉकी आया है
1: जी जी
0: उसमें

0: क्या रहता है, स्ट्राइकर भी जो है गोल मारेगा, स्ट्राइकर भी मिडफील्डर है और मिडफील्डर भी स्ट्राइकर है और डिफेंडर भी स्ट्राइकर है और डिफेंडर भी मिडफील्डर है। उसमें क्या रहता है कि ऐसे कि हमारी जो इंडियन टीम के है, काफी जो डिफेंडर हैं अब वह भी आगे जाके जो मतलब काफी जो कोचेस की जो स्ट्रेटजी होती है कि हाँ आप आगे जाएंगे डिफेंडर आगे जाएगा तो मिडफील्डर जो है वो पीछे आ जाएगा, उससे वो आपके जो एक प्लेयर इंक्रीज हो जाएगा जिससे आपको गोल मारने में फायदा मिलेगा।
1: जी जी जी
0: तो आज के जमाने में जो है टोटल हॉकी है, आपको पूरा मैच खेलना है, आपको गोल भी मारना है, आपको डिफेंड भी करना है।
1: अब जैसे कि आपने बताया, आप ग्वालियर के हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, क्या अंतर पाते हैं?
0: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में काफी अंतर है, जैसे कि बताता है वह ये बताया जाता है कि यूपी उत्तर प्रदेश में काफी स्ट्राइकर्स माने जाते हैं अच्छे लेवल के, और मध्य प्रदेश में स्ट्राइकर प्लस मिडफील्डर भी होते हैं, पर जो यूपी है, यूपी की हॉकी मैंने देखा यहाँ पे आके, यूपी की हॉकी काफी अच्छी है। यूपी
1: अच्छा
0: में जो इतना मध्य प्रदेश में है लेवल है, बच्चों का लेवल है, काफी हॉकी है, पर यूपी की जो स्ट्रेंथ है काफी बड़ी है उसमें, और हॉकी भी काफी है, मतलब कि आपको एक जगह एक सिटी में काफी आपको 2 से 3 3 ग्राउंड मिलने को मिलेंगे। तो बच्चों को यहाँ पे हॉकी का क्रेज काफी ज्यादा है, इसलिए आज के जो है इंडियन टीम में कम से कम 3 से 4 जो यूपी के हैं प्लेयर वो आपको मिलेंगे।
1: मोहित जी, जो आप साई के कोच हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम शिष्य आपसे गुरु मंत्र लेकर और आपके निर्देशन में सफलता की नई ऊंचाइयां छुएं, यही उम्मीद करते हैं, यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद सर, आपको भी आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: हॉकी कोच रोहित शर्मा के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं दीपू कश्यप, इनसे बातचीत की है हमारी सहयोगी अमृता ने।
2: कार्यक्रम में दीपू कश्यप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू।
2: सबसे पहले दीपू, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास इतने सारे मेडल्स हैं, तो कैसे आपको लगा कि इसी खेल को चुनना चाहिए?
3: स्टार्टिंग से ही मैंने ये स्ट्रगल करना मुझे बहुत अच्छा लगा था,
2: जी।
3: और फिर मैं एक बार गई थी स्कूल में, तो मेरी रेस हुई थी, तो फिर मैम ने, मैं फर्स्ट आई थी, तो मैम ने बोला था कि इसी लाइन में जाओ और तुम बहुत अच्छा करोगी आगे चल के। तो फिर मैंने आगे चल के गई थी, स्टेडियम गई थी, पहले डोरीलाल स्टेडियम गई थी,
2: जी
3: तो उनने मुझे कराया और फिर मैं यहाँ तक पहुँच पाई।
2: जी मतलब आपको इंस्पिरेशन मिली आपके स्कूल से, जहां पर आप रेस में जीती। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जिससे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और एक दिन अपनी मंजिल की ओर जाते हैं। तो दीपू, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर बाधा रेस है क्या? क्या ये एक आम रेस है या ये अलग है एक सिंपल सी रेस से?
3: ये एक रेस है जिसमें हर्डल्स होते हैं,
2: जी
3: 10 हर्डल्स होते हैं इसमें, और इसे क्रॉस करना पड़ता है, तो अगर एक भी हर्डल छूट गया तो आपका फाउल हो जाएगा,
2: जी
3: तो उसको एक राउंड करके और फिर ये आपकी रेस फिनिश हो जाती है।
2: जी आपने कहा कि हर्डल्स होते हैं, क्या ये हर्डल्स सिर्फ 10 होते हैं या फिर रेस की जो दूरी होती है उसके हिसाब से अलग अलग होते हैं?
3: ये हर्डल्स 10 होते हैं और बाकी 35-35 मीटर पे लगे होते हैं।
2: जी कितने मीटर की रेस होती है अगर बात की जाए? आप कितने मीटर की रेस को खेलती हैं या दौड़ती हैं?
3: मैं 400 मीटर रेस करती हूँ बाधा दौड़।
2: जी और क्या 400 मीटर के अलावा भी होती है ये रेस की
3: हाँ,
2: दूरी?
3: 400 मीटर होती है, 800 होती है, 1500 होती है, 3 किलोमीटर होती है,
2: जी
3: और 5 किलोमीटर होती है, 10 किलोमीटर होती है,
2: तो अभी
3: ऐसे।
2: आप 400 मीटर की रेस
3: हाँ,
2: दौड़ती
3: मैं
2: हैं।
3: अभी 400 मीटर।
2: जी तो कितना समय लग जाता है 400 मीटर की रेस को पूरा करने में?
3: अभी तो मेरे को 400 मीटर फ्लैट करने में तो वन एक डाउन हो जाता है, और बाकी हर्डल्स पे एक छः आ जाती है टाइमिंग।
2: जी तो जो हर्डल्स होते हैं उनकी अगर ऊंचाई की बात की जाए और दूरी की बात की जाए, कितना डिस्टेंस होता है लगभग उनमें?
3: ऊंचाई की तो वो तो लो हर्डल होता है, एकदम लो होता है, और
2: जी
3: फिर दूरी 35-35 मीटर पे होता है, और लास्ट की जो हर्डल होता है वो 45 मिनट पे होता है, मीटर
2: जी
3: पे होता है।
2: मतलब हर्डल्स की एक सेम दूरी नहीं होती, अलग अलग होती जाती
3: हाँ
2: है।
3: हाँ अलग अलग होती है,
2: जी
3: 35-35 मीटर पे होती है, और बाकी लास्ट के होते हैं जो 45 मीटर पे होते हैं।
2: जी दीपू आप एक स्टेट लेवल प्लेयर हैं, तो जब आप ये गेम खेलती हैं तो कैसा लगता है, किस तरह की चुनौतियां आ जाती हैं कभी कभी गेम खेलने में?
3: शुरू से ही मैंने मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल कराया, और मुझे पसंद भी है स्ट्रगल करना, तो सुबह मैं उठती हूँ और फिर फ्रेश वगैरह होना, और सुबह उठ के एकदम मन भी नहीं करता कभी कभी उठने का, तो फिर एक बार सोचती हूँ कि मेरा जो कंपटीटर है वो मेरे से आगे बढ़ जाएगा,
2: जी
3: अगर मैं एक दिन की प्रैक्टिस छोड़ूंगी तो मेरे से बहुत आगे बढ़ जाएगा, इसलिए मैं डेली रहता है मेरा जाना।
2: जी, मतलब कई तरह की चुनौतियां आती हैं, चाहे मौसम हो, चाहे
3: हाँ
2: किसी भी तरह की शारीरिक थकान हो, लेकिन रुकना

0: नहीं होता है, तभी हम अपने मंजिल को पाते हैं। दीपू, अगर आपसे बात करें गेम की पूरी प्रक्रिया की, तो किस तरह से ये गेम शुरू होता है, कितने प्लेयर होते हैं और किस तरह से रेस की शुरुआत होती है, इसके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे।
1: इसमें 8 से ज्यादा लोग होते हैं तो उसमें हीट कर दी जाती है, तो हीट होती है, और अगर 15 लोग हो या 20 लोग हो तो दो दो आठ आठ करके हीट को कंप्लीट करा जाता है, फिर सेमीफाइनल होता है, फिर फाइनल होता है, ऐसे करके
0: जी
1: होता है।
0: तो जो दूरी होती है और प्लेयर्स की संख्या होती है, क्या ये हर गेम में बराबर होती है, चाहे वो 400 मीटर की रेस हो, 100 मीटर की हो या फिर इससे ज्यादा की हो?
1: हाँ, हीट तो होती है 100, 200 और 400 मीटर में हीट तो होती है, और बाकी 800 मीटर में भी हीट होती है, लेकिन ऑल इंडिया वगैरह में जाओ, वर्ल्ड वगैरह में जाओ खेलने तो होती है हीट उसमें, वरना तो 800 मीटर में स्टेट नेशनल में तो फाइनल कर दिया जाता है।
0: दीपू, आपने फाउल की बात की, फाउल किस तरह से होते हैं और कैसे वो गिना जाता है एक गेम में कि हाँ अब आपका फाउल हुआ है?
1: जब हम स्टार्ट करते हैं रेस तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पे बैठते हैं, तो फिर हम जब वो कोच बोलते हैं कि मेरा मार्क बोलते हैं, तो फिर सेट बोलते हैं, अगर उससे गन बजाने से पहले ही खिलाड़ी भाग
0: अगर दौड़ने लगता है,
1: हाँ दौड़ने लगता है तो वो फाउल हो जाता है,
0: डिस्क्वालिफाइड हो जाता है।
1: हो जाता है
0: जी,
1: हाँ।
0: इसके अलावा जो हर्डल्स होते हैं उसमें अगर पैर टकरा जाए या फिर उसको क्रॉस नहीं कर पाए तो क्या वो भी फाउल में माना
1: हाँ,
0: जाता है?
1: क्रॉस नहीं कर पाओ तो फाउल हो जाता है, और बाकी हर्डल्स गिर जाते हैं तो फाउल हो जाता है।
0: जी दीपू, एक खिलाड़ी के लिए उसकी दिनचर्या बहुत आवश्यक होती है क्योंकि उसे बहुत कुछ करना होता है, तो आपसे आपकी दिनचर्या के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसी होती है, कब आप कितने बजे उठती हैं, उसके बाद में जो आपकी प्रक्रिया रहती है पूरे दिन की वो क्या होती है?
1: और मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ, और बाकी फ्रेश वगैरह होना, और फिर एक केला वगैरह खाते हैं और फिर जाते हैं प्रैक्टिस करने, फिर वहाँ से आते हैं, उसके बाद डाइट वगैरह लेते हैं, और फिर 1 घंटे रिकवरी वगैरह करते हैं, उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई करने लगते हैं।
0: जी, और शाम की क्या आपकी जो अगर बात की जाए स्केड्यूल जो होता है वो क्या रहता है?
1: शाम को वही 4 बजे से प्रैक्टिस पे जाते हैं, और फिर वही 3-4 घंटे की प्रैक्टिस, उसके बाद 8 बजे घर आते हैं, खाना वाना खाते हैं,
0: जी,
1: थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं।
0: प्रैक्टिस में क्या क्या होता है, एक्सरसाइज होती हैं या सिर्फ गेम की आप प्रैक्टिस करती हैं?
1: हाँ, प्रैक्टिस में एक्सरसाइज होती है, और जिम स्ट्रेंथ पावर वर्कआउट के लिए जिम भी जरूरी होती है, और बाकी रोड वगैरह करना जरूरी होती है।
0: जी, आपने अभी स्ट्रेंथ की बात की, तो एक खास तौर पर एक लड़की होने के नाते स्ट्रेंथ जो होती है वो कितनी जरूरी होती है एक लड़की के लिए, और खासतौर पर एक अगर लड़की प्लेयर हो वो भी बाधा रेस की? तो
1: अगर अगले क्षेत्र में जाती है लड़की तो स्ट्रेंथ, जब तक उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो आगे नहीं बढ़ सकती।
0: जी,
1: और
0: आपने अभी स्ट्रेंथ के लिए भी बोला कि स्ट्रेंथ बहुत जरूरी होती है और कॉन्फिडेंस की आपने बात की, तो चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप में आत्मविश्वास नहीं है, तो वैसे भी आप आगे नहीं जा सकती, और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है एक प्लेयर होने के नाते भी कि आत्मविश्वास पूरा होना चाहिए। दीपू, परिवार में आपके कौन कौन है और एक खिलाड़ी होने के नाते परिवार का कितना सपोर्ट रहा आपको?
1: परिवार में मेरी 4 सिस्टर हैं और एक भाई है, मैं सबसे छोटी हूँ सिस्टर में, और मम्मी पापा हैं, तो मम्मी पापा का तो और घर वालों का तो पूरा सपोर्ट रहा है। बहन भी सपोर्ट करती है, उसको जॉब करती है तो थोड़ा बहुत कर देती है सपोर्ट, और बाकी यही है। घर वालों से कभी ये नहीं रहा कि इतना सुबह क्यों जा रही है, इतनी रात में क्यों आ रही है, कभी ये नहीं रहा, पूरा सपोर्ट रहा है घर वालों की तरफ से।
0: जी, आप शहर से बाहर भी खेलने जाती हैं, तो क्या उस टाइम पे कभी ऐसा हुआ है कि परिवार वालों ने कहा हो कि आप एक लड़की हैं और आप बाहर ना जाएं, यहीं पे रह के खेलें?
1: कभी ऐसा हुआ नहीं है, ना कभी घर वालों ने बोला है कि बाहर इतनी दूर क्यों जा रही हो, और क्यों लड़कों से बात कर रही हो, या बहुत सारी बातें होती हैं, मोहल्ले वाले बातें बनाते हैं,
0: जी,
1: तो कभी नहीं सोचा घर वालों ने, यही भरोसा करा है कि हाँ हमारी लड़की घर से बाहर निकली है तो कुछ अच्छा ही करके आएगी।
0: बिल्कुल, परिवार का सपोर्ट हर किसी के लिए बहुत आवश्यक है और खासतौर पर माता पिता का, और आप तो लकी हैं कि आपकी बहनें भी हैं जो आपको पूरी तरह से सपोर्ट भी करती हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती हैं। तो दीपू, डाइट की अगर बात करें तो एक खिलाड़ी की डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी उसमें सेहत आती है और स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है। आपकी डाइट क्या है, क्या डाइट लेती हैं आप?
1: सुबह जब हम वर्कआउट करके आते हैं तो सुबह वही ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, काजू बादाम किशमिश छुआरे ये सब लेते हैं, और उसके बाद कभी कभी दूध मिल जाता है तो दूध भी पी लेते हैं, और बाकी फिर शाम में जब जाते हैं तो एक केला वेला खा के चले जाते हैं।
0: जी, अच्छा दीपू, ये देखा जाता है कि जो आजकल के यूथ हैं, बच्चे हैं खास तौर पर, उन्हें फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है, तो एक खिलाड़ी होने के नाते आप क्या कहती हैं, फास्ट फूड खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए?
1: फास्ट फूड खाना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि लिमिट
0: लिमिटेड खाना चाहिए।
1: लिमिटेड।

0: खाना चाहिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा फास्ट फूड खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी टेस्ट के लिए आप चीट डे कर
0: कभी
1: सकते
0: कभी
1: हैं।
0: कभी मैं भी खा लेती हूँ, महीने में एक बार या दो बार।
1: जी, आप कहाँ कहाँ गई हैं अभी तक दीपू, क्योंकि आपने इतने सारे मेडल्स जीते हैं, तो जरूर आप देश में या फिर स्टेट लेवल पे खेलती हैं, तो दूसरे शहरों में तो जरूर गई होंगी।
0: लखनऊ गए थे एक बार खेलने तो, और गाजियाबाद भी गए थे, गोरखपुर गए थे, और शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, वहां से जब भी गए हैं तो मेडल लेके आए हैं।
1: जी, इतनी सारी जगहों पे आप गई हैं और आपने ढेर सारे मेडल्स भी जीते हैं, क्या कभी कोई ऐसी एक कहानी है या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो आपके जहन पे एक असर छोड़ गया हो कि मैं वहां गई थी, वहां पे ऐसा ऐसा हुआ था?
0: ऐसा तो कुछ नहीं, वैसे तो एक बार गई थी तो मेडल नहीं बढ़ पाया, तो घर आई थी, फिर घर वाले भी बोल रहे थे क्या हो गया, नर्वस क्यों हो रही है, फिर मैंने बताया कि मेडल नहीं आया, तो फिर बोले कि कोई बात नहीं, अप डाउन तो होते रहते हैं,
1: जी
0: कभी आता है कभी नहीं आता है, हार जीत तो चलती रहती है,
1: बिल्कुल,
0: तो फिर वही रहा कि होता
1: जैसा कि
0: रहता है।
1: जानते हैं
0: तो
1: और आप बाधा रेस खुद ही खेलती हैं, तो आपको पता है कि बाधाएं तो आती रहती हैं,
0: हाँ
1: निराशा
0: होता
1: आती
0: है।
1: है और कभी कभी हार का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन हार के बाद ही जीत है और
0: हाँ
1: वो दिख ही रहा है आपके इतने सारे मेडल्स से, और जरूर आगे भी भविष्य में आप ढेर सारे मेडल्स और जीतेंगी। तो दीपू, अगर आपसे बात की जाए कि प्रैक्टिस की जो बात होती है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा परेशानियां भी आती हैं प्रैक्टिस करने के टाइम पे, मान लीजिए कोई इंजरी हो गई, जो हर खिलाड़ी के जीवन में जरूर होती है कभी ना कभी, तो क्या आपको भी ऐसी कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस प्रभावित हुई हो या खेल प्रभावित हुआ हो?
0: हाँ एक बार जब हम हडल कर रहे थे तो एक बार क्रॉस कर रहे थे तो स्ट्रेच हो गई मसल,
1: जी
0: तो फिर एक दो दिन रेस्ट किया, फिर सोचा कि ये तो इंजरी तो होती रहती है खिलाड़ी की लाइफ में, ये जब तक इंजरी नहीं आएगी तो खिलाड़ी कैसे बनेगा वो, तो फिर दो तीन दिन बैठी थी मैं रेस्ट पे, उसके बाद सोचा मैंने कि अब कब तक रेस्ट करूंगी, एक ना एक दिन तो आना ही है प्रैक्टिस पे, तो फिर प्रैक्टिस तो लगातार रही मेरी।
1: जी, इतनी सारी परेशानी के बाद आप प्रैक्टिस करती रहती हैं कंटिन्यू, एक खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भले ही इंजरी हो उससे रिकवर करने के बाद कंटिन्यू प्रैक्टिस करना, क्योंकि बॉडी को भी नीड होती है। अब आपसे दीपू ये जानना चाहेंगे कि जब आप खेलने कहीं जाती हैं तो आसपास के जो लोग होते हैं उनका क्या आपके साथ बर्ताव रहता है, क्योंकि परिवार का तो सपोर्ट आपको है, लेकिन जो हमारे आसपास की सोसाइटी है, लोग हैं, वो आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं?
0: आसपास के लोग भी खुश होते हैं कि हाँ लड़की जा रही है बाहर खेलने, अच्छा नाम करके आ रही है, पहले भी गए थे तो मेडल वगैरह लेके आए थे, खुश हुए थे आसपास के लोग, कभी ऐसा नहीं कि बातें बनाई हो मोहल्ले वाले ने, कभी ऐसा नहीं,
1: जी,
0: काफी अच्छा सपोर्ट रहा है मोहल्ले वाले का
1: मतलब लोग भी
0: भी।
1: अब आपको अप्रिशिएट करते
0: हाँ
1: हैं?
0: हाँ बिल्कुल।
1: जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जरूर आपको देखकर आसपास की जो लड़कियां हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, स्पोर्ट खेलना चाहती हैं, वो जरूर आगे आएंगी, आप उनको प्रेरित करने का काम भी कर रही हैं। दीपू, आप अभी बहुत ही छोटी हैं, और कितनी आयु से आपने इस गेम को खेलना शुरू किया था?
0: मैंने 16 साल से स्टार्ट किया था खेलना, और 2022 से स्टार्ट किया था खेलना, और मुझे 3.5 साल हो गए रनिंग करते करते।
1: 3.5 साल से आप इस गेम में हैं, तो 3.5 साल में अगर आपके एक्सपीरियंस की बात की जाए तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है और शहरों के खिलाड़ियों के साथ में जब आप खेलने जाती हैं तो?
0: जब खेलने पहले जब जाती थी तो पहले तो मेडल नहीं आते थे क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी पहले, और पहले इतना एक्सपीरियंस भी नहीं
1: शुरू शुरू
0: था।
1: की बात होती है।
0: हाँ
1: जी
0: तो एक्सपीरियंस भी नहीं था इतना, फिर थोड़ी थोड़ी आगे करके प्रैक्टिस हुई और मेहनत करी, तब जाके थोड़े मेडल वगैरह आने लगे, काफी अच्छा लगा, और फिर यही हुआ।
1: अच्छा, आपके कोच का कितना सपोर्ट रहा है, या फिर आपके जो टीचर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको सिखाते हैं, उनका कितना सपोर्ट रहा है आपके गेम में?
0: कोच का भी फुल सपोर्ट रहा है, कभी डाइट वगैरह का नहीं हो पाता तो कोच करते थे, शूज वगैरह का नहीं हो पाता तो कोच का तो पूरा सपोर्ट रहा है,
1: जी
0: और कोचिंग भी फ्री कराते हैं वो।
1: जी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोच ऐसे हों तो जरूर उनके जो स्टूडेंट है वो आगे जरूर बढ़ेंगे। तो आपसे दीपू अब ये जानना चाहेंगे, आपने कहा कि शूज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, तो क्या कोई अलग सा कोड होता है ड्रेस का इस गेम को खेलने के लिए?
0: हाँ रनिंग किट होती है वो, टाइटी वगैरह पहन के करा जाता है, शॉर्ट्स वगैरह, उसमें काफी अच्छा मतलब फील होता है और रनिंग भी अच्छी होती है। शूज की बात है तो खिलाड़ी के अलग ही होते हैं, सोल वगैरह अलग होती है उसकी, और ग्रिप वगैरह अलग होती है, और शूज भी लाइट होता है
1: जी
0: तो काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है शूज से भी,
1: जी
0: डाइट वगैरह भी अगर खिलाड़ी की अच्छी रही तो काफी अच्छा कर जाएगा।
1: दीपू, आप गेम तो खेलती ही हैं और काफी अच्छा कर रही हैं अपनी उम्र और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन अगर बात की जाए पढ़ाई की, तो अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में आप क्या कर रही हैं?
0: अभी तो इंटर हो गया मेरा, बीए में एडमिशन लिया है,
1: जी
0: बीए करेंगे।

0: तो पढ़ाई करना भी आपको उतना ही पसंद है जितना गेम पसंद
1: हाँ
0: है।
1: पढ़ाई रनिंग के साथ साथ भी पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, और बाकी जितना टाइम मिलता है वो पढ़ाई को ही देते हैं फिर।
0: जी तो पढ़ाई में आपने बोला कि आप बीए कर रही हैं, तो जब आप पढ़ रहे हो साथ ही साथ आप गेम भी खेल रहे हो, तो दोनों को मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
1: जब वर्कआउट करके आते हैं तो रिकवरी वगैरह लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई भी करना बहुत जरूरी होता है, तो 1-2 घंटे पढ़ाई को देते हैं,
0: जी
1: फिर शाम में प्रैक्टिस करने जाते हैं, आते हैं तो खाना वाना खाते हैं, उसके बाद 1-2 घंटे पढ़ाई को देते हैं।
0: तो मतलब आपकी पढ़ाई और आपका गेम दोनों अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है, कहीं
1: हाँ
0: किसी
1: बढ़िया।
0: आपकी स्कूल टीचर्स का सपोर्ट रहता है आपको?
1: हाँ स्कूल टीचर का भी सपोर्ट बहुत रहा है,
0: जी
1: पहले भी रहा है और अभी अभी भी अच्छे से सपोर्ट रहा है।
0: जी चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि गेम की प्रैक्टिस भी करनी है और साथ ही साथ पढ़ाई भी करनी है। दीपू बिल्कुल, हम यही चाहेंगे कि ना केवल आपके बल्कि जो भी बच्चे इस खेल को खेलना चाहते हैं या देश के नाम कोई भी मेडल प्राप्त करना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उन सभी की जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हों, अपनी मंजिल को वो पाएं। आपने अपने विचार, अपने एक्सपीरियंस साझा किए, उसके लिए दीपू कश्यप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, ये था आज का खेल दर्पण। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको, ये हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
3: खेल दर्पण।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रुद्र वीणा वादन। आज आप सुनेंगे रुद्र वीणा पर बजाया राग जोग। वादक कलाकार हैं श्री गजाधर पाठक।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रुद्र वीणा वादन। आज आपने सुना रुद्र वीणा पर बजाया राग जोग। वादक कलाकार थे श्री गजाधर पाठक। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच

0: बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने 2 प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
2: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
1: India also expressed deep concern at the attacks on 2 vessels, MT Al-Bahyan and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi today, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey. In a major step towards expanding bilateral trade and investment engagement, the first round of negotiations for the India-Maldives Free Trade Agreement, FTA, concluded successfully. The negotiations were held in virtual mode last week. The Commerce and Industry